आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 जून सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत कर रहे हैं।

हम बोल रहे हैं विविध भारती से। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम DTH और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध है। इसके अलावा न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों के विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्बनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: यूनाइटेड किंगडम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: एंड टूगेदर बिकमिंग अ फोर्स मल्टीप्लायर।
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती।
4: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। शास्त्रों में कहा गया है, प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता है और कोशिश ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुने भक्ति रचनाएं।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारा अगला कार्यक्रम है श्री रामचरित मानस गान भाग 231। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में होगी श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वायलिन वादक SL कंडारा। प्रस्तुति मनीषा जैन की। पुराने फिल्मी गीत सुनिएगा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुबह 7 बजे से। हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम 7:30 पर। ₹8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष। 8:30 कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 8:30 पर। ₹9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार इलैया राजा पर। 10 बजे पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होगा।

स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। रंग तरंग ये कार्यक्रम दिन में 11 बजे से 12 बजे कार्यक्रम यादों की महफिल, दिन में 1 बजे कार्यक्रम होगा सुरीला सफर, इसमें हम शामिल करते हैं श्रोताओं की टिप्पणियां भी। वंदे मातरम एक जय घोष ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 2:15 पर, ये पुनर्प्रसारण होगा। दिन में 2:30 पर कार्यक्रम सदाबहार नगमे, फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली का प्रसारण होगा दिन में 3 बजे। पिटारा के अंतर्गत शाम 4 बजे गीतों भरी कहानी सुनिएगा, उन दिनों की बात है, लेखक अरुण शेखर, प्रस्तुति रमेश गोखले की। छाया गीत कार्यक्रम शाम 5 बजे ये पुनर्प्रसारण होगा। वैसे आप सुनते हैं रात 10 बजे कार्यक्रम छाया गीत, 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने, 6:35 पर कार्यक्रम संध्या रंजन का प्रसारण होगा। शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में होगी श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। फौजी साथियों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया जाएगा शाम 7 बजे से। इंद्रधनुष के अंतर्गत शाम 7:45 पर सुनिएगा प्रोग्राम गुलदस्ता। रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में सुनिएगा नाटिका बजट एक कमाओ बीवी का, लेखन मनोहर वर्मा का है, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर का। चित्रलोक कार्यक्रम रात 8:15 पर। आपके लिए ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 9 बजे से। रात 10 बजे आप सुनते हैं कार्यक्रम छाया गीत, ढलती जाए रात ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे रात 10:30 पर। झरोखा में ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरित मानस गान भाग 231। प्रसंग है अयोध्या कांड।

अयोध्या लौट जाने के लिए श्री राम के आग्रह भरे वचन सुनकर राजा जनक तथा मुनिवर वशिष्ठ को कुछ भी कह सकने में संकोच होता है। भरत गंभीर असमंजस की स्थिति में है। एक ओर हृदय में श्री राम के लिए प्रेम और आदर का सागर उमड़ रहा है तो दूसरी ओर है स्वर्गीय पिता तथा स्वयं श्री राम के वचन की मर्यादा पालन का दायित्व। अंत में धैर्यवान भरत के स्नेह जनित शोक संताप पर विवेक ने विजय पाई। हाथ जोड़कर उन्होंने बड़ों से क्षमा याचना करते हुए श्री राम से कहा, हे नाथ, आप माता पिता मित्र गुरु परम हितैषी तथा अंतर्यामी हैं। ऐसे स्वामी का मैं ऐसा द्रोही हूं जिसका कोई सानी नहीं। मोह के वशीभूत होकर मैं पिता और आप

के वचन का उल्लंघन कर यहाँ आया हूँ। आपने मेरी ढिटाई को भी स्नेह और सेवा मान लिया, मेरे दोष को गुण के रूप में स्वीकार कर लिया। आप जैसा कोई दूसरा स्वामी नहीं है।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान भाग 231, प्रसंग था अयोध्या कांड।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी।
1: सभी संगीत प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है और स्वागत है पंडित एसएल कंडारा जी का, तबला संगतकार श्री संतोष मिश्र जी का भी। पंडित जी, आज राग रागेश्री की बारी है।
2: अच्छा,
1: रागेश्री की चर्चा में इस राग के बारे में क्या हमें बताएंगे आप? इसका आरोह

0: और इसकी खूबसूरती।
1: जी, रागेश्री एक बहुत ही मधुर प्रकृति का राग है और बड़े रागों में भी इसकी गणना होती है, छोटे रागों में भी। छोटे रागों से मतलब लाइट अंग भी इसका बहुत अच्छा है।
0: जी जी,
1: जो सुगम संगीत में बहुत इसका इस्तेमाल होता है। इसके फिल्मों में भी कई गाने बने इस राग पे।
0: जी,
1: क्लासिकल म्यूजिक में राग रागेश्री के लिए मैं आपको इसके आरोह अवरोह बजा के स्पष्ट करता हूँ, फिर एक छोटी सी रचना रूपक में सुनाता हूँ।

इसमें गंधार शुद्ध, मध्यम शुद्ध, पंचम बहुत अल्प, फिर धैवत शुद्ध, निखात कोमल और फिर सात आर सप्तक का, ये आरोह हुआ इसका। अवरोह ऐसा है, तार सप्तक का सा, फिर कोमल निषाद, फिर धैवत शुद्ध, फिर अल्प पंचम लगता है कभी कभी, ज्यादा नहीं लगता, प्रोमिनेंट नहीं है, बहुत बहुत कम, और मध्यम प्रोमिनेंट है, शुद्ध मध्यम, गंधार और ऋखभ। और इसका जो मूल चलन है इसमें

0: क्या बात है पंडित जी, इस सुंदर सी बंदिश को सुनने के बाद रागी श्री राग पर आधारित गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं जो मन्नदा की आवाज में है।
1: अरे बहुत सुंदर गीत है वो
0: जी। फिल्म का नाम है देख कबीरा रोया।
1: जी जी, कौन आया
0: मेरे मन के द्वार।
1: मन के,
0: आइए सुनते हैं।

0: देख कबीरा रोया। इस फिल्म से रागेश्वरी राग पर आधारित गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं। मन्ना डे की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल और मदन मोहन का संगीत। इसी के साथ वायोलिन का विहंगम संसार श्रृंखला की ये कड़ी अब यहीं समाप्त हो रही है। श्रृंखला की अंतिम कड़ी में आपसे कल फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने, तबला संगति संतोष मिश्रा की।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा आदेश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: हसरत जयपुरी का लिखा गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म थी अनाड़ी।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: के दे दिया।
1: बाप बेटे फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बेदर्द जमाना क्या जाने, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। लिखा था इसे भरत व्यास ने, धुन बनाई थी कल्याण जी वीर जी शाह ने। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह है कार्यक्रम भूली बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के बाकी गीत छोटे से अंतराल के बाद।

0: 12 o'clock इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज में, शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

चाचा जिंदाबाद इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में, रचना थी राजेंद्र कृष्ण की, संगीतकार थे मदन मोहन। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: मैं राजी हूँ गुजरिया।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

त्रिशूल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और येसुदास की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल थे, खयाम का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमेरा ही प्यार के। इस कार्यक्रम के बाकी गाने आपको सुनवाएंगे छोटे से अंतराल के बाद।

0: अमर अकबर एंथनी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में, जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
3: 20 जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: मेरे हम सफर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। लिखा था इसे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: अब आज का हमारा ही प्यार के कार्यक्रम समाप्त होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिमी एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज जल डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
7: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काले रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
3: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
8: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है, पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई NRC की जरूरत, लोकसत्ते ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, NCERT की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक LPG आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 34वीं कड़ी।

बारिसाल जैसी घटनाएं बंगाल में बार बार घटने लगीं। वंदे मातरम का नारा लगाकर अंग्रेजों का विरोध करना आम लोगों की नजर में एक रोजमर्रा की बात बन गई। यह विरोध अब और अधिक संगठित रूप से होने लगा। बंगाल में ऐसी घटनाएं जगह जगह होने लगी। पुलिस का डर ही नहीं बचा। यह लहर मजदूर वर्ग में भी

0: 1906 में राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन के लिए भगिनी निवेदिता कार्यरत थीं। सुप्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्य भारती इस अधिवेशन में पत्रकार के रूप में उपस्थित थे। भगिनी निवेदिता के साथ हुई चर्चा के कारण सुब्रमण्य भारती के लेखन और विचारों को एक दिशा मिली। सुब्रमण्य भारती ने उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु माना था।
1: हिंदुस्तान मतलब जंजीरों से जकड़ी हुई दुखी माँ है, ऐसा भगिनी निवेदिता कहा करती थी। सुब्रमण्यम भारती पर भगिनी निवेदिता के शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ा।

0: वंदे मातरम शब्दों का उपयोग करते हुए एक ओर उन्होंने भारत के वैभव, इतिहास, संस्कृति का गौरव किया, तो दूसरी ओर जातिवाद जैसी अनिष्ट प्रथाओं पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया। उन्होंने लिखा,
1: भले हो यहाँ हजारों जातियां, पर न हो विदेशियों को यहां स्थान। एक माता के पुत्र हम चाहे लड़ें जितने, है फिर भी एक दूसरे के बंधु ही।

0: इंसान सुन, यहां आ, यहां कोई ऊंच नीच नहीं है। सुब्रमण्य भारती की ये क्रांतिकारी कविता है। इसमें वो इंसान को पुकार कर कहते हैं कि इस दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। जाति धर्म ऊंच नीच का भेदभाव गलत है।
1: भारत वंदना इस प्रसिद्ध कविता में सुब्रमण्यम भारती लिखते हैं,
2: हमारी भारतीय माताएं बचपन में विवाहित होकर अपना घर बसाती थीं। यहीं उन्हें एहसास होता था मातृत्व के आनंद का, संतान प्राप्ति के गर्व का। जगह जगह स्थापित हमारे मंदिरों ने बड़ों को आत्मा के सत्य की अनुभूति करा दी। काल प्रवाह में उनके विलीन होने पर उनकी संतानों ने वेदी की उनकी जगह ले ली। सत्य की उस स्मृति को मैं वंदन करता हूं। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
1: सुब्रमण्यम भारती ने तमिल भाषा में जो वंदे मातरम के दो अनुवाद किए वे इस प्रकार हैं।

में गाया गया। वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा, मंद मंद मलियानिल जागृत, निर्मल जीवन मधुर फलामृत, शस्य श्यामल कोमल गात्रा, वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा। श्यामल नीवे सरलवु नीवे, धरणिवि भरणिवि सर्वमु नीवे, प्राण तुलीवे जननी भारतवनी, वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा। नीवे विदयक नीवे धर्मक, नीवे हृदयक नीवे मर्मक, नीवे प्राणमु नीवे देहमु, नीवे प्रेममु नीवे श्रेयमु, वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा। वंदे मातरम, ये शब्द अब प्रत्येक भारतीय के हृदय में विराजमान हो गए थे। आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

वंदे मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 34वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। ये धुरंधर फिल्म का गाना है।

0: ओ रोमियो फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में, गुलजार की रचना थी, विशाल भारद्वाज का संगीत था।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर यह है कार्यक्रम चित्रलोक। हाईवे फिल्म का गाना है ज्योति नूरा और साथियों की आवाजें।

हाईवे फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। ज्योति नूरा और साथियों की आवाजों में इरशाद कामिल के बोल थे, ए आर रहमान का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने छोटे से ब्रेक के बाद।

0: रिवॉल्वर रानी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे रेखा भारद्वाज की आवाज में। पुनीत शर्मा के बोल थे, संजीव श्रीवास्तव का संगीत था। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। दोस्तों विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आज 26 जून है दोस्तों, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि इंसानियत को हर हाल में जिंदा रखना है। आज पूरी दुनिया यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर यानी यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की शुरुआत इसलिए की थी ताकि दुनिया भर में उन लोगों की आवाज सुनी जा सके जिन्होंने किसी न किसी रूप में मानसिक या शारीरिक यातनाएं झेली हैं। ये दिन सिर्फ दर्द को याद करने का दिन नहीं बल्कि पीड़ितों को न्याय दिलाने और उनके घावों को भरने का संकल्प लेने का दिन भी है। दोस्तों एक सभ्य समाज में किसी भी इंसान को प्रताड़ित करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए, कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कानून और इंसानियत दोनों यही कहते हैं कि हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का हक है। अगर हमारे आसपास किसी के साथ भी गलत हो रहा है, ज्यादती हो रही है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए बल्कि उनकी ताकत बनना चाहिए।

तो आइए, विविध भारती की ओर से हम आपसे ये आवाहन कर रहे हैं कि हम सब अपने से वादा करें, खुद से वादा करें कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां नफरत की जगह केवल हमदर्दी हो, सम्मान हो और हो प्यार, और अपना एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का साथ बनाए रखेंगे। सुनिए ये गाना, कहीं ये साथ की बात तो नहीं कर रहा है। फिल्म है तमाशा, अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाजें, इरशाद कामिल के बोल, ए आर रहमान का संगीत है।

तमाशा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाजों में। इरशाद कामिल के बोल थे, एआर रहमान का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने छोटे से ब्रेक के बाद।

0: सिंघम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और अजय गोगावले की आवाजों में। स्वानंद किरकिरे के बोल थे, अजय अतुल का संगीत था।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: अकेली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे गुरुशब्द सिंह और चयनिका गर्ग की आवाजों में। बोल गुरुशब्द सिंह के थे, संगीत भी इन्हीं का था।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: थप्पड़ फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। राघव चैतन्य की आवाज में शकील आजमी के बोल थे, अनुराग साइकिया का संगीत था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। दोस्तों नशा केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को खोखला कर देता है। ये एक ऐसी बेड़ी है जो व्यक्ति की उड़ान और उसके सपनों को छीन लेती है। अक्सर हम सुनते हैं कि लोग मस्ती या टेंशन दूर करने के लिए इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन ये कब एक जानलेवा लत बन जाता है पता ही नहीं चलता। आज का दिन उन लाखों परिवारों के नाम है जिन्होंने अपने को इस लत के कारण खोया है। लेकिन आज का दिन सिर्फ गम मनाने का नहीं बल्कि संकल्प लेने का भी है, खुद को बचाने का और अपने परिवार को सचेत रखने का संकल्प। जो लोग इस दलदल में फंस चुके हैं उनका हाथ थामकर उन्हें सही रास्ते पर लाने का दिन भी है। दोस्तों नशीली दवाओं की अवैध तस्करी और दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में आपकी जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको अपने आसपास कुछ भी संदिग्ध लगे या अगर आपको लगता है कि कोई अपना मदद के लिए पुकार रहा है तो खामोश न रहें, मदद के लिए आगे आएं।

नशा नाश की जड़ है और हमें मिलकर इस जड़ को काटना है। तो चलिए आज के इस दिन हम वादा करते हैं कि हम न सिर्फ नशा मुक्त भारत का सपना देखेंगे बल्कि इसे पूरा करने के लिए अपनी छोटी छोटी कोशिश भी करेंगे। जिंदगी बहुत हसीन है दोस्तों, इसे किसी नशे की भेंट न चढ़ाए, अपने हुनर को पहचाने, अपने सपनों को जिए और नशे को कहें ना। आज 26 जून है और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 दिसंबर 1987 को स्थापित किया गया था, आज के दिन नशा मुक्ति के लिए। और इसका उद्देश्य है नशा मुक्त समाज का निर्माण करना, इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना सुनिए शिल्पा राव की आवाज में। स्वानंद किरकिरे के बोल हैं, अमित त्रिवेदी का संगीत है।

0: इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना था, शिल्पा राव की आवाज, स्वानंद किरकिरे के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। यह है प्रोग्राम का आखिरी गाना।

एनिमल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। गरिमा के बोल थे श्रेयस पुराणिक का संगीत था। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे कि खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: जिंदगी को गले लगाने की ये पुकार गुलजार साहब के लिखे एक गाने की है जो फिल्म सदमा से है, लेकिन यहाँ बातें गुलजार के बारे में नहीं, यहाँ बातें फिल्म सदमा के बारे में भी नहीं, बल्कि यहाँ बातें एक संगीतकार के बारे में जिसके नाम में आता है राजा।
1: आया है राजा, लोगो रे लोगो, राजा के

0: कहता मैं आया है राजा,
1: लोगो रे लोगो,
0: राजा के संग संग
1: जुमलो जुमलो,
0: आया है राजा,
1: लोगो रे लोगो,
0: राजा के संग संग
1: जुमलो जुमलो।
2: वो सही मायने में फिल्म म्यूजिक के राजा हैं। 1000 से ज्यादा फिल्मों में संगीत,

8,000 से ज्यादा गाने और फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक लंबी कतार जो सम्मान से उनके आगे सिर झुकाते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे संगीतकार की बातें जो न केवल एक म्यूजिक कंपोजर है बल्कि एक गीतकार है, एक ऑर्केस्ट्रेटर है, एक म्यूजिक कंडक्टर है और है एक म्यूजिक मैस्ट्रो जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। आज बातें इलैया राजा की।

इलैया राजा का जन्म 3 जून 1943 को हुआ था। मदुरई तमिलनाडु में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है थेनी, इसके पन्नियापुरम नामक गांव में जन्मा था एक बालक। नाम रखा गया आर ज्ञान थेसिकन। हालांकि जब इलैया राजा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू की तो उनके पिता रामासामी ने ज्ञान थेसिकन से बदलकर उनका नाम रख दिया राजैया। ये इसलिए क्योंकि गांव भर में इलैया एक बालक के रूप में बहुत लोकप्रिय थे और पूरे गांव के लोग उन्हें रासैया कहा करते थे। 14 की उम्र में इलैया राजा अपने बड़े भाई पावलार वरदराजन की एक संगीत टोली में शामिल हो गए। ये संगीत टोली गांव गांव शहर शहर घूमती और अपनी संगीत प्रस्तुतियां करती। यही वो संगीत यात्रा थी जहां इलैया राजा ने सबसे पहले कोई धुन बनाई और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया।

जिंदगी की राहें बदली 1968 में इलैयाराजा अपने गांव से चले आए मद्रास, यानी आज का चेन्नई शहर। मकसद था संगीत सीखना। ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन के एग्जाम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। क्लासिकल गिटार का एग्जाम उन्होंने दिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। मद्रास में शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा संघर्ष इलैयाराजा को करना पड़ा। उस दौरान दोनों भाइयों ने मिलकर कभी किसी नाटक में संगीत दे दिया, कभी मंच पर परफॉर्म करने लगे, कभी चर्च में कॉयर म्यूजिक में हिस्सेदारी कर ली, तो कभी कोई अलग अलग तरह के मशहूर हस्तियों के कार्यक्रमों में फिलर के रूप में इस्तेमाल हो गए। लेकिन आंखों में थे सुनहरे ख्वाब और संघर्ष का मादा था दिल में, तो डटे रहे। और इस तरह से इलैयाराजा की जगह बन गई जी के वेंकटेश की संगीत टोली में। यहां से इलैयाराजा के सीखने की और लगातार आगे बढ़ने की यात्रा शुरू हुई।

आगे चलकर इलैया राजा ने धनराज मास्टर नामक एक संगीतकार का शागिर्द बनना कबूल किया। यहां वो उनसे संगीत की बारीकियां सीखते रहे और यही वो हस्ती थी जिन्होंने इलैया राजा के नाम में आगे राजा जोड़ा। सन 1976 में फिल्म अन्नकिली में संगीत देने का मौका आया और इत्तेफाकन इलैया राजा बन गए संगीतकार। 1976 में अन्नकिली नामक फिल्म में जब उन्होंने संगीत दिया तो इस फिल्म का संगीत अचानक इतना लोकप्रिय हुआ कि तमिल सिनेमा में जैसे तूफान आ गया। इलैया राजा ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की। सुनने वाले चकित रह गए कि ऐसे भी गाने बनाए जा सकते हैं। अचानक इलैया राजा की गिनती एक प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के रूप में होने लगी। इलैया राजा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जहां एक तरफ उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत की बारीकियों को अपने फिल्मी संगीत में अपनाया और एक अलग तरह का जादुई फ्यूजन तैयार

बहरहाल अभी उनकी कुछ फिल्मों की बातें करते हैं। सन 1978 में उनकी फिल्म आई कजू हंदई, सन 1980 में आई मुडुपानी, इसी साल आई निजलगल, 1981 में नेत्रिकन नामक फिल्म आई और इसी बरस आई निजिनथई किलंथे, 1982 में कोजू कुवुथु नामक फिल्म आई। चूंकि मेरा ताल्लुक दक्षिण भारत की भाषाओं से नहीं है, इसलिए अगर उच्चारण संबंधी कोई दोष होता है तो हम दक्षिण भारत के श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं। इलैयाराजा की जो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं उनमें शामिल है 1987 में आई फिल्म नायकन, जो उनकी 400वीं फिल्म थी, 1990 में आई फिल्म अंजलि। यहां महत्वपूर्ण ये है कि वो इलैयाराजा की 500वीं फिल्म थी। अब हिंदी फिल्मों की बात करें तो इलैयाराजा का हिंदी फिल्मों में आगमन हुआ कमल हासन के अभिनय वाली फिल्म सदमा के जरिए, जिसके निर्देशक थे बालू महेंद्र। असल में ये फिल्म बालू महेंद्र की तमिल फिल्म मुंदरम पिरई का हिंदी रीमेक थी।

0: सदमा की रिलीज के 4 बरस बाद इलियाराजा ने जिस फिल्म में संगीत दिया उसका नाम था कामाग्नि। उसके बाद राज सिप्पी की फिल्म महादेव में उन्हें संगीत देने का मौका मिला। सन 1996 में बालू महेंद्रू की फिल्म और एक प्रेम कहानी में उन्होंने संगीत दिया। वैसे आपको बता दें कि इलियाराजा ने रामगोपाल वर्मा की फिल्म शिवा के हिंदी संस्करण में भी संगीत दिया है और कमल हासन की फिल्म हे राम में भी उनका संगीत है। एक और हिंदी फिल्म है उनके संगीत से सजी हुई जिसका नाम है मुंबई एक्सप्रेस।
1: बंदर की डुगडुगी है, क्या जोर से बजी है,

साल 2007 में जब आर बाल्की ने फिल्म चीनी कम बनाई तो उसके लिए संगीतकार के तौर पर उन्होंने चुना इलैया राजा को, और यहां से आर बाल्की और इलैया राजा का एसोसिएशन शुरू होता है।

आपको बता दें कि साल 2015 में जब इलैया राजा ने अपनी 1000वीं फिल्म में संगीत दिया तो जाने माने संगीतकार एआर रहमान ने ट्विटर पर लिखा, डियर मेस्ट्रो इलैया राजा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी 1000वीं फिल्म में क्वालिटी म्यूजिक दिया है। आप इसी तरह से काम करते रहिए और हमें इसी तरह से प्रेरणा देते रहिए।

चूंकि इलियाराजा के संगीत की बातें हो रही हैं और बातें हिंदी फिल्मों की भी हो रही हैं, तो आपको बता दें कि आशा भोसले से इलियाराजा ने कुल 53 गाने गवाए विभिन्न भाषाओं में, और लता मंगेशकर से केवल 2 गाने उन्होंने गवाए।

इलैया राजा के जीवन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, और वो ये कि जब इलैया राजा अपना संगीत सीख रहे थे, तब उनके ऊपर जर्मनी के क्लासिक संगीतकार बाख की शैली का बहुत गहरा असर पड़ा था। आगे चलकर इलैया राजा ने अपना पहला फ्यूजन एल्बम बनाया, हाउ टू नेम इट। इसके बाद उनका एक और एल्बम आया है जो वेस्टर्न क्लासिकल फ्यूजन एल्बम है, और इसका नाम है नथिंग बट विंड।

यहाँ आपको इलैयाराजा के कुछ आध्यात्मिक एल्बम्स के बारे में भी बता दें। इस तरह का काम भी इलैयाराजा ने बहुत सारा किया है। गीतांजलि, राजविन, रामन्ना मलाई, इलैयाराजाविन, ये सब ऐसे एल्बम हैं जिनमें आध्यात्मिकता का रस है। इलैयाराजा का संगीत का ये सफर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों तक फैला हुआ है। जाहिर है कि दुनिया के कोने कोने में इलैयाराजा के प्रशंसक मौजूद हैं। अगर हम ये कहें कि इलैयाराजा पर सम्मानों की और पुरस्कारों की बारिश होती रही है, तो ये

गलत नहीं होगा। साल 2010 में पद्म भूषण, साल 2018 में पद्म विभूषण, 5 नेशनल अवार्ड हैं। 1984 में तेलुगु फिल्म सागर संगमम के लिए, 1986 में सिंधु भैरवी के लिए, 1989 में रुद्रवीणा के लिए, 2009 में पजसी राजा के लिए और 2016 में थरई थपतई के लिए। ये 5 नेशनल अवार्ड्स हैं। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स, केरला स्टेट अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स, एक लंबी फहरिस्त है इलैयाराजा के जीते सम्मानों और पुरस्कारों की। बल्कि अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि पुरस्कार जब इलैयाराजा को मिलते हैं तो पुरस्कार सम्मानित होते हैं।

चूंकि इलैयाराजा तमिलनाडु के एक ग्रामीण इलाके में पले बढ़े, इसलिए तमिल लोक संगीत जैसे उनकी रगों में बहता है। संगीत सीखते समय उन पर जो असर पड़ा वो पड़ा बाक, हाइडन, मोजार्ट और बीथोवेन का, इसलिए वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी उनकी रगों में बहता है और इसीलिए तमाम तरह की संगीत शैलियों को मिक्स करके जब वो संगीत बनाते हैं तो ये एक जादू सा रचता है।

इलिया राजा के निजी जीवन के बारे में आपको थोड़ी जानकारियां दे दें। इलिया राजा का विवाह जीवा से हुआ, जिनसे उनकी 3 संतानें हैं, कार्तिक राजा, भावथरिनी और युवान शंकर राजा। इलिया राजा के ये तीनों बच्चे फिल्म कंपोजर और गायक हैं। आपको बता दें कि इलिया राजा को अपने हारमोनियम से बड़ा प्यार है, और चाहे वो कॉन्सर्ट्स में हो या अपने स्टूडियो में गानों की धुनें बनाते रहें, वो इसी हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं। इलिया राजा ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब किसी भी अपने परिवार के सदस्य को, यहां तक कि अपने भाई को भी, इस हारमोनियम को छूने नहीं देते थे। इस हारमोनियम में उनकी जान बसती है। इलिया राजा का कहना है कि यह हारमोनियम जानता है कि ये उनके लिए बना है, और इस हारमोनियम से ही उनके संगीत का जादू निकलता है। इलिया राजा ने अब तक 1523 फिल्मों में 8600 गाने बनाए हैं। तकरीबन 9 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है। पूरी दुनिया में इलिया राजा 20,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट कर चुके हैं। यहां इस बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सन 1987 में आई फिल्म नायकन को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे अच्छी फिल्मों में से एक माना था। इस फिल्म का संगीत इलैयाराजा का है और इसके गानों से लोगों को बड़ा प्यार है।

अब आपको बताते हैं मणिरत्नम और इलैयाराजा के लंबे साथ के बारे में। सन 1983 में इलैयाराजा ने सबसे पहले मणिरत्नम की किसी फिल्म में संगीत दिया।

वो थी पल्लवी अनुपल्लवी। ये एक कन्नड़ फिल्म थी। ये वो दौर था जब फिल्मकार मणिरत्नम सिनेमा में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1984 में मोहनलाल के अभिनय वाली उनारू में संगीत दिया इलैयाराजा ने, निर्देशन मणिरत्नम का था और ये मणिरत्नम की दूसरी फिल्म थी। सन 1985 इलैयाराजा ने तमिल फिल्म पागल नीलावु में संगीत दिया। ये वो फिल्म है जिसके जरिए मणिरत्नम ने तमिल सिनेमा में अपना कदम रखा था। 1985 में आई इदया कोविल, 1986 में आई मौन रागम, 1987 में नायकन आई जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, 1988 में आई अग्नि नटचित्रम, 1989 में आई गीतांजलि, 1990 में अंजलि आई और इस फिल्म ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। सन 1991 में इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार में भी भेजा गया था। इलैयाराजा और मणिरत्नम का साथ। सन 1991 में आई फिल्म थलपथी जो महाभारत के एक किरदार से प्रेरित थी।

जुलाई 1993 में इलैयाराजा ने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के अपने सबसे बड़े और पहले काम को रिकॉर्ड किया था। इसे उन्होंने सिंफनी नंबर 1 का नाम दिया था और इसे रिकॉर्ड किया गया था लंदन के प्रसिद्ध रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वो भी जाने माने कंडक्टर जॉन स्कॉट की निगरानी में। आपको बता दें कि रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा दुनिया के सबसे उत्कृष्ट पश्चिमी संगीत से जुड़े ऑर्केस्ट्रा में शामिल है।

सन 2012 में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इलैयाराजा को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। सन 2010 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इलैयाराजा की उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सन 2012 के समर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में इलैयाराजा की फिल्म राम लक्ष्मण का एक गाना बजाया गया था। सही मायनों में इलैयाराजा एक लिविंग लेजेंड हैं। अपने काम के प्रति उनका जुनून, उनका समर्पण लाजवाब है। 9 भाषाओं में इतनी बड़ी तादाद में फिल्में करना और लगातार सक्रिय रहना और उत्कृष्ट काम करना उन्हें महान बनाता।

0: संगीतकार इलियाराजा का संगीत संसार लेकर आया था आज के फनकार। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: की उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम जिसमें आप श्रोता कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं और अपने विचार रखते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही विचार आप श्रोताओं के द्वारा विविध भारती को लेकर, विविध भारती के कार्यक्रमों को लेकर। तो सुनते हैं आज का हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी। नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम है जी कल्लू मनियार, चिड़ी वाला।
0: कल्लू जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: रामपुर मनियारा और जी जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश।
0: अच्छी बात है, अपने बारे में बताइए, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया, शुक्र है मालिक का, आपकी दुआएं हैं। मेरा चूड़ी का काम है, मैं चूड़ी जो है साइकिल पर ले जाता हूँ।
0: अच्छा, साइकिल पर चूड़ियाँ लगा के आप बेचने जाते हैं?
1: जी हाँ, गाँव में जो रामपुर के चारों तरफ गाँव है ना, उनमें जाता हूँ।
0: तो कैसे बांधते हैं चूड़ियों को साइकिल पे? गिरने का डर नहीं रहता है? चूड़ियाँ टूट जाएंगी तो?
1: अजी बांध के ले जाता हूँ मैं चूड़ी को बहुत अच्छी तरीके से।
0: अच्छा, फिर घर घर फेरी लगाते हैं?
1: अजी फिर मैं गांव में जाता हूँ, फिर बच्चे खुद ही बता दें कल्लू ताऊ जी आ रहे हैं, चूड़ी पहन लो। अच्छा। घर वाले बुला ले रहे हैं फिर।
0: अरे वाह, यानी आप बहुत फेमस हैं कल्लू ताऊ जी के नाम से ना?
1: जी।
0: अच्छी बात है।
1: चूड़ी बेचता हूँ कांच की।
0: कांच की चूड़ियाँ बेचते हैं, तो महिलाएं किस तरह की चूड़ियाँ ज्यादा पसंद करती, कौन सा रंग ज्यादा लेती हैं?
1: मैरून रंग ज्यादा पसंद करती हैं जी।
0: मैरून रंग पसंद करती हैं, चमकदार?
1: हाँ जी, मैरून रंग ज्यादा पसंद करती हैं, और रंग भी तो काफी हैं वैसे, बाकी ज्यादातर मैरून चलता है।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: और कांच की चूड़ी है, शुभ मानते हैं इसको, कांच को?
0: बिल्कुल, हमारे यहाँ सुहाग का प्रतीक मानते हैं चूड़ियों को, कांच की चूड़ियों को पहना जाता है।
1: जब मैं चूड़ी पहना देता हूँ तो नुचकारती है फिर चूड़ी, फेंचा नुचकारती है मेरा औरतें, ये सुहाग की चीज है ना
0: जी। तो एक चूड़ी ज्यादा देते हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल, दो देता हूँ जी मैं तो।
0: अच्छा, दो दे देते हैं आप?
1: दो जो देता हूँ, जोड़ा ही भगवान तुम्हारा बनाओ रखे, जोड़ा ही मैं दे रहा।
0: अरे वाह, चलिए कल्लू जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बताइए अपनी पसंद का गाना।
1: फिल्म का नाम है जी आपकी परछाइयाँ, और आवाज है रफी की, गाने के बोले ये है तमन्ना तेरे घर के सामने।
0: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी, मैं जीतन यादव बड़ा गांव जिला गोना मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैम,
0: स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ, दुकान पे बैठा हूँ, आपके नंबर मिला रहा था।
0: अच्छा, क्या दुकान है आपकी, किस तरह की?
1: किराने की दुकान है मैम।
0: अच्छा, सभी सामान रखते हैं?
1: जी मैम।
0: तो सुबह खुल जाती होगी कितने बजे, 8 बजे या 10 बजे?
1: 7 बजे खुल जाती है, रात के 10 बजे तक चलती है।
0: तो लंच में घर जाते होंगे या खाना साथ लेके आते हैं?
1: नहीं नहीं मैम, दुकान घर पे ही है और घर पे ही बैठा रहता हूँ, घर पे ही रेडियो है, विविध भारती का साथ है।
0: अरे वाह, फिर तो आपके मजे हैं कि जब हुआ एक बार घर के अंदर चले गए, खाना वाना खाया, पानी वानी पी, चाय वाय पी और आ गए, है ना?
1: जी जी
0: मतलब घर के अंदर ही है तो और भी आराम हो गया है। घर के अन्य लोग
1: जी
0: भी आकर दुकान को संभाल लेते होंगे।
1: जी जी और आने लोग आते हैं और विविध भारती को सुनते हैं और खासकर हेलो फरमाइश सुनते हैं, तो बहुत आनंद आता है।
0: आपकी दुकान पे आके सुनते हैं श्रोता?
1: जी
0: तो उन्हें बताइए कि मोबाइल पे न्यूज ऑन AIR ऐप जो है डाउनलोड कर लें और सुने।
1: जी मोबाइल पे सुनते हैं, पर दुकान पे ग्राहक आते हैं भी सुन के जाते हैं।
0: अच्छा लगता है हम लोगों को कि हमारे श्रोता इतनी शिद्दत के साथ हमें सुनते हैं। कैसा लगता है आप सबको हेलो फरमाइश कार्यक्रम?
1: अच्छा लगता है,
0: क्या अच्छा लगता है इसमें?
1: दूसरों को श्रोता को मौका मिल जाता है बातचीत करने का और गाने अच्छे लगते हैं सबसे बड़ी बात।
0: बिल्कुल सही कहा, बातचीत का मौका मिलता है और आपकी पसंद के गाने भी इसमें आते हैं, है ना?
1: जी।
0: तो चलिए, आज आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज मजबूर कलम का गीत सुनना चाहता हूँ, रिम झिम बरसता जी बाहर पानी अंदर जी आग लगी है, मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में गीत है।
0: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये झमाझम गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार मंदाकिनी जी।
0: नमस्कार। अरे, आपको पता है मंदाकिनी है इधर?
1: जी मैम आपकी आवाज से पहचान जाते हैं।
0: अरे, तो हमारे कार्यक्रम बहुत शिद्दत से सुनते हैं, गहराई से सुनते हैं, है ना?
1: जी मैम
0: नाम बताइए अपना।
1: मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, जिला महोबा उत्तर प्रदेश से।
0: कैसे हैं सुनील जी?
1: बहुत बढ़िया है मैम, आप
0: अच्छा,
1: कैसे हो?
0: मैं भी अच्छी हूँ। अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप सुनील जी?
1: जी मैम अभी तो हम भट्टों में काम करते थे राजस्थान में।
0: अच्छा, राजस्थान में कहाँ?
1: जी भरतपुर में करते थे मैम।
0: और अब क्या कर रहे हैं इन
1: जी
0: दिनों?
1: अभी मैम छुट्टी हुई तो अभी घर आए, 2-4 दिन हुए घर आए हुए अभी।
0: अच्छा, तो भरतपुर में कैसा लगता है आपको? कैसा माहौल है वहाँ का?
1: जी मैम बढ़िया माहौल है, अच्छा लगता है वहाँ पे रहना, काफी साल हो गए अभी जाते जाते।
0: तो आपका परिवार कहाँ रहता है, महुआ में?
1: जी मैम
0: तो आते जाते रहते होंगे ना? दिक्कत तो होती होगी अप डाउन करने
1: जी
0: से।
1: मैम दिक्कत तो होती है, अब ऐसा है कि 8 महीनों के लिए चले जाते हैं, तो 8 महीना वहाँ पे लगातार काम करना होता है भट्टों पे, तो 8 महीने। अब फिर आपके प्रोग्राम तो हम 1 बजे रात से ही सुनना चालू कर देते थे।
0: अच्छा, आपको टाइम मिल
1: जी
0: जाता
1: आप
0: था?
1: टाइम तो इतना रहता है कि अब हमको 1 बजे रात को उठना पड़ता था काम के लिए, तो आपका एक प्रोग्राम 1 बजे रात से ही चालू हो जाता, फिर सुबह 11 बजे तक, फिर यहाँ पर 4 बजे से आपका प्रोग्राम चालू रहता था, करीब 10 बजे तक रात को।
0: क्या बात है ना, प्यार है आपको विविध भारती
1: जी
0: से कि रात को 1 बजे से कार्यक्रम
1: जी
0: सुनना शुरू कर देते हैं।
1: जी मैम आपका ये सखी सहेली का टेलीकास्ट दोबारा होता है ना 3 बजे रात को, तो
0: हाँ बिल्कुल,
1: रात में सुनना बहुत अच्छा लगता है आपका सखी सहेली
0: अच्छी बात है, आप लोग कार्यक्रम सुनते हैं। लेकिन ये जो काम आप करते
1: कार्यक्रम।
0: हैं भट्टों का, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है क्या?
1: जी मैम ये तो मुश्किल काम है, इसमें मेहनत बहुत है।
0: बहुत मेहनत है इसमें तो, और आपको बिल्कुल एक तरह से अपने आप को खपाए रखना पड़ता होगा,
1: जी मैम उसमें मेहनत तो काम ज्यादा पड़ता है।
0: और उसमें से भी आप समय
1: हाँ
0: निकालकर विविध भारती सुनते हैं और खुश रहते हैं, बहुत अच्छी बात
1: नहीं वो
0: है।
1: तो वैसा है कि काम चलता रहता है, विविध भारती भी साथ में चलता रहता है, उसके बगैर तो मन ही नहीं लगता हमारा। जो सुबह हुआ कि हम सीधा विविध भारती चालू कर देते हैं, पहले सभी
0: अच्छी बात है।
1: लोग सुनते हैं, फिर हम तो ऐसा है कि रात में बिजली रहती, काम बिजली में करना होता है रात को, तो एम्पलीफायर में लगा के रखते हैं, फिर जब बिजली चली जाती तो फिर ब्लूटूथ स्पीकर में लगा के रखते हैं।
0: इतनी व्यवस्था कर रखी है आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। हमारे ऐसे जो दीवानगी वाले श्रोता हैं, दीवानगी की हद तक विविध भारती को प्रेम करते हैं, उनसे बात करके हमें अच्छा
1: जी
0: लगता
1: मैम
0: है। बताइए सुनील जी, आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: हेमराज जी के गाया हुआ गाना है, भीगा भीगा मौसम आया बरसे घटा घनघोर।
0: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश मंदाकिनी दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मंदाकिनी दीदी, मैं बोल रहा हूँ राम बाबू मालवीय, कोलार रोड भोपाल से।
0: स्वागत है आपका राम बाबू जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ दीदी, आप सुनाओ आप कैसे हो और हमारे विविध भारती की संपूर्ण टीम कैसी क्या है?
0: सब अच्छे हैं, बताइए अपने बारे में राम बाबू जी।
1: अपनी ड्राई क्लीनिंग का काम है, लॉन्ड्री का, और वो काम वाम करते हैं और अपने परिवार के साथ में जो भी है जो दाल रोटी के लिए कमाते खाते हैं और बढ़िया आनंद मंगल से जितना परमात्मा ऊपर वाले देते हैं उसी में खुश रहते हैं और विविध भारती सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी इंसान को संतुष्ट तो रहना ही होगा एक हद तक, है ना? अगर हमारी
1: जी जी जी
0: महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि हम असंतुष्ट रहेंगे तो फिर जिंदगी तो खराब ही होनी है, हमारा वर्तमान खराब ही
1: जी
0: होना
1: जी
0: है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: आज गाना सुनना चाहेंगे फिल्म।

0: फिल्म का नाम है पापा कहते हैं, उसमें गाना है उसकी आवाज में घर से निकलते ही कुछ दूर चलते
1: ही। बहुत सुंदर गाना सुनना चाहते हैं आप।
0: वैसे दीदी आपके यहाँ के प्रोग्राम जो आपने नए शुरू किए वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमने चिट्ठियाँ भी भेजी है मन चाहे गीत में।
1: अच्छा चलिए सुने आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: संदीप कुमार, मक्कड़ पींगा वाला चौक, गोरैया, पंजाब डिस्ट्रिक्ट जलंधर से आपका निमिष होता।
0: जी, स्वागत है आपका संदीप जी। कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं। आपका साथ है तो अच्छा ना हो

0: बिल्कुल काला, खुल जाएगा दिल का ताला, कहता रहेगा कहने वाला, चलता रहेगा चलने वाला, सुन दे भाई सुन दे लाला, आगे मेरे फौजी भाई, तेरे पे कुर्बान में भाई, तुम हो सबकी जान हो भाई, बैठो तुम भी चाय आई, बैठो तुम भी चाय आई। ये है मेरे गाने के बोल,
1: क्या बात
0: अस्थाई और
1: है।
0: अंतरा सुनाया।
1: अच्छा, जो
0: जी हाँ जी हाँ,
1: लिखते हैं कैसी सूफियाना कविताएं लिखते हैं?
0: सूफियाना, जैसे मैं सूफियाना भी सुनाना चाहूंगा। सब सियाने मिलदे ने, सब सियाने मिलदे ने, ते कमला कोई कोई, ओ बोलण वाले मिलदे ने चुप कोई कोई, तांदा मेला मन दा मेला, तांदा मेला मन दा मेला, ते समझे कोई कोई, ओ सब सियाने मिलदे ने ते कमला कोई कोई।
1: बहुत अच्छा लगा संदीप जी, अपने शौक को आगे बढ़ाइए, लिखते रहिए और इसी तरह गाते रहिए। अगली
0: जी
1: मुलाकात
0: हाँ
1: में
0: जी हाँ
1: फिर
0: जी हाँ
1: आपसे
0: जी
1: कोई
0: हाँ,
1: नया गीत सुनेंगे, बताइए।
0: तो मेरी 30 तारीख को मैरिज एनिवर्सरी भी है, मेरी वाइफ ज्योति है उसके लिए डेडिकेशन है, उनको सुनाना चाहूंगा। फिल्म है बीवियों तो ऐसी, गाना है फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: फ्रेंड, क्या है? नमस्कार
1: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
0: जी। मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ।
1: जी स्वागत है आपका, बहुत पहले आपसे बात हुई भी है।
0: जी जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, मैं आपका वही जाना पहचाना श्रोता हूँ।
1: अच्छा, आपका नाम है शारदा,
0: जी
1: तो आपका ये नाम किसने रखा?
0: मेरे पिताजी ने रखा है और मैं बसंत पंचमी के आसपास माँ शारदा की कृपा से प्राप्त हुआ था माता पिता को। तो मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, न छल न कपट न प्रमाद हूँ, न छल न कपट न प्रमाद हूँ, मैहर की देवी माँ शारदा का प्रसाद हूँ।
1: बिल्कुल वही हमने जानना चाहा कि ये जो नाम है महिलाओं का ज्यादा होता है शारदा, पुरुषों में बहुत कम ऐसे नाम सुनाई देते हैं, तो जानने की हमारी इच्छा हुई कि शारदा नाम क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, तो आपने बता
0: जी
1: दिया है।
0: जी मेरे बहुत लंबे लंबे बाल भी हुआ करते थे लड़कियों जैसे, और मैं कॉलेज तक मैं यूं ही लंबे बाल रखा करता था। गोरा चिट्टा रंग था मेरा और भोला सा चेहरा मासूम सा, तो बहुत से लड़के मुझे को लड़की समझ के लिए दोस्ती करते थे कि ये लड़की जरूर होगी,
1: हाँ।
0: लड़के की भेष में रहती है।
1: वाह, बहुत अच्छा लगा। देखिए एक नाम के पीछे कितनी चीजें छुपी होती हैं ना, और अब कैसा लगता है आपको, अब लोग जानते हैं कि भाई ये तो शारदा प्रसाद जी हैं, शारदा कुमारी
0: जी जी
1: नहीं
0: बिल्कुल,
1: है।
0: अब सब लोग जानने लगे हैं शारदा प्रसाद प्रजापति हैं, और अब तो दाढ़ी मूछें सब हो गई हैं तो लोग बाग जानते हैं।
1: क्या करते हैं शारदा जी?
0: मैं घर पर रहता हूँ और बच्चों के साथ में आनंद पूर्वक आकाशवाणी और विविध भारती से जुड़ा रहता हूँ। रेडियो सुनना ही मेरा शौक है, दीवानगी है, जुनून है। और जब आकाशवाणी विविध भारती में हमारा फोन लगता है, सुरीली हर दिल की धड़कन, तो बस हृदय प्रफुल्लित तो गदगद हो जाता है। इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता होती है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, बस ये तो महसूस करने वाली बातचीत होती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम भी महसूस करते हैं अपने श्रोताओं की दीवानगी को। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
0: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है विरासत है, कुमार सानू और चित्रा जी ने गीत गाया है, जावेद साहब ने लिखा है और अनु मलिक का संगीत है। गीत बोल है, पायले छुनमुन छुनमुन झांझरे रुंझुन रुंझुन, कितना मधुर है ये मिलन।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ जी दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मंदाग्नी जी बोल रही है?
0: हाँ जी, हाँ जी
1: जी जी गजराज ज्योति बात कर रहा था, रेला ही राजगढ़ द्यावरा मध्य प्रदेश से।
0: अरे स्वागत है आपका गजराज जी, कैसे हैं?
1: दीदी बहुत अच्छे हैं, मुझे आपकी जो आवाज है ना बहुत प्रिय लगती है।
0: क्या बात, ये तो आप
1: हाँ,
0: लोगों का प्यार
1: और
0: और
1: शायद मैंने
0: स्नेह।
1: दीदी आपको बीकानेर से भी सुना है।
0: बिल्कुल सुना होगा, आप लोग तो वैसे भी दीवाने हैं आकाशवाणी के, रेडियो के, और हमारे श्रोताओं की वजह से ही। तो देखिए ना, आज आकाशवाणी कितना आगे निकल गया है।
1: जी जी जी
0: बताइए गजराज जी, आप क्या करते हैं, अपने बारे में थोड़ा बताइए।
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ, और इसके अलावा जो समरसिबल रहते हैं खेतों के लिए पंप, उनकी रिपेयरिंग भी होती है हमारे यहाँ।
0: आपके पास मतलब शॉप है?
1: जी
0: अच्छा, आप करते हैं?
1: जी
0: अरे वाह, क्या बात है। तो फिर एक पन दो काज हो गया, खेत भी संभाल लिया और ये काम भी कर लिया।
1: और साथ साथ रेडियो तो हमको मिलता ही रहता है, विविध भारती तो।
0: वो तो आपकी खुराक में शामिल है ना, हो सकता है एक रोटी कम खा लेते
1: जी
0: होंगे,
1: जी
0: लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते आप श्रोता लोग।
1: नहीं भूलते हैं। जी जी जी जी
0: बहुत अच्छा लगता है हमें। तो गजराज जी, आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: सौदागर मूवी का है, इमली का बूटा बेरी का पेड़।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाकिनी जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं बढ़ापुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं
0: बोलिए, नाम बताइए।
1: नाम एम ताहिर है, यानी मोहम्मद ताहिर।
0: मोहम्मद ताहिर साहब, स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: शुक्रिया मैम, बहुत बढ़िया, आपकी दुआएं हैं।
0: देखिए, ऐसा है कि आप अच्छे हैं तो अपने अच्छे कार्यों से अच्छे हैं आप, और ईश्वर की आप पर जो है अति कृपा है, अल्लाह की है ना।
1: जी जी, सब ऊपर वाले के कर्म से सब सही है।
0: क्या करते हैं ताहिर जी आप?
1: मैडम जी, मैं एक शॉपकीपर हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है।
0: अच्छा, किस विषय पर?
1: जी मैंने बाई इकोनॉमिक्स किया था।
0: तो आपने अपनी दुकान संभाल रखी है या अपने पिता की?
1: जी, पापा बैठते थे, उसके बाद मैं बैठता हूँ, बस अब उन्होंने फिलहाल रेस्ट के लिए।
0: किस तरह की दुकान है
1: ये? लेडीज की है, आपसे ही मुतालिक सारे सामान है इसमें, जैसे गिफ्ट होते हैं, बैंगल्स होती हैं और कॉस्मेटिक्स वगैरह।
0: तो आपने एमए इकोनॉमिक्स में किया, तो आगे कुछ और एग्जाम्स वगैरह नहीं दिए? या आपका उद्देश्य यही था कि पिता के व्यवसाय को संभालना है?
1: बात ये थी कि उसके लिए कहीं जाना पड़ता और पापा जी को मुझे अकेला कहीं भेजना मंजूर नहीं था।
0: अच्छा, हाँ, ये हमारे माता पिता का जो अति मोह है संतान के प्रति ना, उसमें वैसे अच्छी बात है कि हम ताउम्र माता पिता का साथ दे पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छूट भी जाता है जिंदगी में। हालांकि कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, आप खुश हैं तो सब अच्छा है।
1: बहुत बढ़िया जी।
0: तो बताइए, गाना कौन सा सुनेंगे?
1: फिल्म कन्यादान से मेरी जिंदगी में आते, रफी साहब की आवाज।
0: क्या बात है, तो कुछ और बात होती।
1: जी जी, जी।
0: कोई खास मकसद इस गाने को सुनने का?
1: नहीं मैम, अल्फाज सही है, आवाज तो कोई कहने के दो राय है ही नहीं इसमें।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

छुपा सकता नहीं। कितनी दिलकश है मोहब्बत की जवान,

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मैम, नमस्कार
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: जी। मैं जलंधर सिटी पंजाब से सोनू बात कर रहा हूँ जी।
0: सोनू जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं जी। आप मीनाक्षी जोशी जी बात कर रहे हैं?
0: हाँ जी।
1: हाँ जी मैडम जी, प्यार से नमस्कार आपको। जी
0: सुनते हैं हमारे
1: जी
0: कार्यक्रम।
1: मैं तो रेगुलर आपसे जुड़ता रहता हूँ फेसबुक के माध्यम से। हाँ
0: क्या बात है।
1: जी, बस क्या होता है ना, कभी कभी इबारत कुछ समझ में नहीं आती, फिर आप दो क्वेश्चन भी पूछते हैं।
0: आप जवाब देते हैं उसका?
1: हाँ जी, मैं जरूर पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जवाब दूँ आपको और मेरा नाम जुड़ा रहे अपनी भारती के साथ में।
0: तो सवाल तो बिल्कुल सीधे साधे होते हैं, और एक कार्यक्रम को थोड़ा सा लाइवनेस बनाने के लिए करना पड़ता है,
1: जी
0: नहीं
1: देखिए,
0: तो कार्यक्रम बिल्कुल उबाऊ हो जाएगा।
1: और विविध भारती का प्रोग्राम, लेकिन जब से स्टार्ट हुआ है विविध भारती का, तब से मेरे ग्रैंड फादर, फादर मेरे और मैं, वो कभी भी बोझ महसूस नहीं हुई। इतने बढ़िया प्रोग्राम होते हैं विविध भारती के।
0: मतलब आपके दादा की विरासत को आपके पापा ने संभाला और अब आप संभाल रहे हैं, है ना? जैसे हम
1: हाँ जी
0: उनके
1: हाँ जी
0: कामों को संभालते हैं कि भाई हमारे
1: हाँ
0: दादा
1: जी
0: की ये बिजनेस था और उनके बाद पिता ने और पुत्र ने संभाला, तो विविध भारती सुनने की भी आप लोगों ने ये एक ले रखा है प्रण कि हमारे दादाजी की सुनने की आदत को हम भी सुनने में डाल लेंगे।
1: उन्होंने कहा था ना, चैनल वो सुना जाए जिसमें अच्छी ज्ञानवर्धक बातें हों। तो रेडियो ऐसा माध्यम है कि कभी इसमें गलत जानकारी मिलती ही नहीं, सही मिलती है हमेशा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और आप लोग इतने प्यार और ईमानदारी से सुनते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग कार्यक्रम
1: जी
0: पेश
1: जी
0: करते हैं और आप लोग इतनी संजीदगी के साथ अपनी बात कहते हैं।
1: जी मैडम जी, देखिए आप जितने भी वीडियो पोस्ट करते हैं ना फेसबुक पर, वो सभी मैं देखता रहता हूँ और सभी में लाइक भी करता हूँ। जो आपने
0: हमारे
1: 90 साल का जो जश्न मनाया, वो भी मैंने देखा।
0: चलिए तो आप बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको।
1: मैंने गाना सुना है जी दोस्ताना मूवी का, किशोर दा और आशा जी की आवाज में, बहुत खूबसूरत गीत है। दिल लगी ने दी
0: दी हवा,
1: हवा
0: थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल
1: और
0: गई।
1: आगे जल पड़ी।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं संतोष जी आड़ा बोल रहा हूँ, ग्राम चिड़ाव कंजर डेरा देवास जिले से। जी
0: स्वागत है संतोष जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, ट्यूट हो गया हमको। रेडियो
0: अरे
1: सुनते रहते हैं आपका प्रोग्राम, बचपन
0: हाँ हाँ
1: से सुन रहे हैं जी। आज 44 साल की उम्र हो गई हमारी, और रेडियो समय से सुन रहे, जो सेल वाले शुरू स्टार्ट हुए थे जी।
0: कैसा लगता है रेडियो सुनने से, जिंदगी संवर गई आपकी?
1: रेडियो दीदी, हम है ना, हमारे फार्म हाउस पे मस्त सुना करते हैं, मजदूर काम किया करते हैं, और आपकी विविध भारती पूरी टीम को हम बधाई देना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे लिए इतने सुंदर सुंदर कार्यक्रम लाते हो, फोनिंग कार्यक्रम लाते हो, और गाने पुराने सदाबहार में जो सुनाते हो, बहुत बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप इतने गहराई से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और उनके बारे में अपने विचार भी रखते हैं। वैसे आप खुद क्या करते हैं संतोष जी?
1: जी खेती गृहस्थी का काम है, खेती गृहस्थी का
0: तो अभी क्या है आपके खेत में?
1: जी। अभी खाली पड़ा है, बस वर्षा दीदी का इंतजार है, जैसे पानी गिरता है तो हम सोयाबीन लगाएंगे दीदी। दीदी
0: तो सोयाबीन की खेती में कितनी मेहनत मशक्कत हो जाती है, कितना ध्यान रखना पड़ता है?
1: जो अब जो सोयाबीन की फसल है बिल्कुल बेकार हो चुकी है, सिर्फ ये मेहनत फसल है, जैसे पानी का इंतजार रहता है,
0: हाँ
1: खेतों में चारा उगवाता है तो दवाई का इंतजार रहता है, डोरे लगाना पड़ता है, बेलों का समय रहा नहीं, ट्रैक्टरों से लगाते हैं और फिर भी चारा नहीं मरता, फिर डबल दवाई उड़ाते हैं, इल्ली की दवाई उड़ाना पड़ता, बहुत कठिन का काम है ये सोयाबीन पैदा करना। उसके बाद भी फिर मौसम सहयोग नहीं देता है तो फिर बैठक भी बहुत कम होती है हम किसानों को, सोयाबीन की फसल में तो बहुत घाटा है।
0: सही कहा आपने, बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। तो फिर सोयाबीन की फसल को बार बार फिर क्यों बोते हैं, कोई कारण है खास?
1: मेहनत का तो है, फिर भी क्या है, इसमें नुकसान चीज नहीं होती। अभी हम मक्का लगा दें तो जंगली सुअर खा जाते हैं, मूंगफली लगा दें जंगली सुअर खा जाते हैं, रतालू की फसल करें तो वो भी जंगली सुअर खा जाते हैं, उड़द दाल वगैरह पैदा करते हैं तो हिरन खा जाती, हिरन भी बहुत है हमारे इधर
0: अच्छा, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता होगा आपको, तो ये तो 24 घंटे की निगरानी हो गई।
1: जी। ये क्या है, सोयाबीन में निगरानी नहीं रखना पड़ता है, दूसरी जो फसल है इसमें बरोबर निगरानी रखना पड़ता है जी।
0: तो इसलिए आप सोयाबीन को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देते हैं ना, कि सोयाबीन की फसल लग जाए। अपने गांव
1: मध्य
0: के बारे
1: प्रदेश,
0: में बताइए थोड़ा सा, कैसा है आपका गांव?
1: हमारा गांव बहुत सुंदर है ऐसे तो, हमारे गांव के पोहे और समोसे कचौरी बड़े फेमस है।
0: क्या बात है, पोहे और समोसे,
1: यस
0: मुंह में पानी आ गया हमारे। देखिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने हमें एक नई जानकारी दी है सोयाबीन की खेती के बारे में। तो संतोष जी, आप गाना बता दीजिए।
1: गाना है वो, प्यार हमारा अमर रहेगा याद करेगा जहां,
0: फिल्म का नाम क्या है?
1: मुद्दत
0: मोहम्मद अजीज की आवाज।
1: जी।
0: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का गीत फिर।

0: हमारा आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें, ताकि हम अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर दे सकें। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222860288, दूसरा नंबर 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

रंग तरंग रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले छाया गांगुली की आवाज, जमीर काजमी के बोल है

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

विविध भारती से रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आज कुछ ऐसे गाने जिनमें हैं बारिश के छींटे। लता मंगेशकर की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत, सुमित्रा कुमारी सिन्हा के बोल हैं।

0: लता मंगेशकर की आवाज में यह गैर फिल्मी गीत आपने सुना।
1: किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। गए सावन में ये दीवारें यूं सीली नहीं थी, न जाने इस दफा क्यों इनमें सीलन आ गई है, दरारें पड़ गई हैं और सीलन इस तरह बहती है जैसे खुश्क रुखसारों पे गीले आंसू चलते हैं। हवा की सांस क्यों सहमी हुई है, मेरी वाकिफ थी जब आती थी कमरे में, मेरे सीने में भर जाती थी जैसे बादवां भरते हैं कश्ती के। ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर, यह बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर, ये घर की खिड़कियों के कांच पर उंगली से लिख जाती थी संदेशे। बिलकती रहती है बैठी हुई अब बंद रोशनदानों के पीछे। दोपहरें ऐसी लगती हैं बिना मोहरों के खाली खाने रखे हैं, न कोई खेलने वाला है बाजी और न कोई चाल चलता है, न दिन होता है अब न रात होती है, सभी कुछ रुक गया है। वो क्या मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है।
0: मौसम का झोंका गुलजार की आवाज में आपने सुना, उनका ही ये कलाम ये कब आते हो एल्बम से था। और अब भूपिंदर की आवाज़।

संभाले जलते तवे पर, जलते तवे पर झुलस गया पानी।

0: चंदनदास की आवाज में ये निदा फाजली का कलाम था। विविध भारती पर रंग तरंग।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है।

0: रंग तरंग आप सुन रहे थे कार्यक्रम रंग तरंग। हमें खेद है कि आखिरी गाना आप ठीक से नहीं सुन पाए। एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहां पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोबा कोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
2: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरिपाइये, मन ही की प्रतीत।
3: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
2: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
3: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
2: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
3: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
2: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
3: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
2: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
4: हाँ

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया

0: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
1: सब कुछ ठीक तो है ना?
0: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
1: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
0: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
0: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
1: नहीं नहीं,
0: देखिए आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
1: ओह गॉड, ओह

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुई।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। पचासी में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी।
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए, सुनिए।
5: टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड द आउटलुक फॉर द डिसेबल्ड। पीपल लाइक मी कैन नाउ मूव अराउंड इंडिपेंडेंटली एंड दे कैन कम्युनिकेट।
2: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
2: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
6: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
2: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
0: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को

0: जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
1: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
2: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
3: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
4: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
1: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
3: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
6: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम आ जाओ, आ जाओ सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली। गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड। तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
7: आग का गोला?
6: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दूं प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
8: सूरज।
6: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
7: बहुत आसान पूछते हो।
6: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं।
7: अगली बार में बहुत मुश्किल।
6: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूँ, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियाँ तुम्हारे पास होती है ना?
8: हाँ।
6: कितनी भी मुश्किल पहेली ले आ।

0: है सूरज के चक्कर काटते हैं, और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
1: हाँ,
2: जब ही तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
0: हाँ, हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर,
1: हाँ,
0: इसलिए दिन और रात हो रहे हैं, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
1: मौसी, जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
0: हाय हाय, क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं, चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं, लगता है ना।
1: वो तेज चलती है तो ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
3: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा
0: है ना।
3: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
0: हाँ, और सर्दियों में अच्छा लगता। तो बच्चों, सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना।
1: मौसी, वो बहुत बड़ा भी होता है
0: बहुत बड़ा होता है,
3: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
0: हम क्योंकि कहीं
1: वो दूर होता है इसलिए
0: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है, और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देख लें।
1: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
0: हाँ,
1: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
0: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
4: सर्दी।
0: ओह, ऐसी वाली सर्दी ना।
1: हाँ।
0: अच्छी लगती है सर्दी।
1: पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
0: हाँ, शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
3: नहीं
0: है। सूरज आग का गोला, लेकिन
4: सूरज आग का गोला लेकिन
0: फिर भी जीवन दाता है।
4: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती काटे चक्कर इसके।
4: धरती काटे चक्कर इसके।
0: लगे ये चलता जाता है।
4: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे।
4: सर्दी गर्मी बनते इससे।
0: ये दिन रात बनाता है।
4: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
4: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
0: सूरज ये
4: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है। सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
1: मौसी, कर पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
3: जल्दी आना मौसी।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
1: हमें देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई, मैं कल आऊँ कि नहीं आऊँ।
1: वो भी दस पूछेंगे।
0: दस पहेलियाँ। अच्छा चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
1: और
0: फिर डर जाती है।
1: और आपके कुल मिला के 70 हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
3: नहीं, 80 हो जाएंगे।
0: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा, बाय बाय।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में सुनिए सुरीला सफर।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम में हम एक इबारत, एक टेक्स्ट पोस्ट करते हैं और वो टेक्स्ट कार्यक्रम के काफी पहले पोस्ट कर दी जाती है, आज भी कर दी गई है। तो आज की इबारत आपको बता दें, बदरा की गागरी में ढेर सारा पानी, मन को रंगीला करे बारिश की कहानी, इन हवाओं में चलो उड़ चले कहीं, ना आसमां का पता हो ना दिखे जमी, ऐसे मौसम में जाने क्या क्या याद आए, कभी मन मुस्कुराए कभी आंख भर जाए, दिन में एक बजे जब मिलेंगे हम, गीतों का हाथ पकड़कर साथ चलेंगे हम। भाई, इस टेक्स्ट को पढ़कर बहुत सारे श्रोताओं के रिएक्शंस हमारे पास आ गए हैं और इन तमाम रिएक्शंस को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश भी करेंगे। तो एक दूसरे के साथ इस कार्यक्रम का सफर हमें आगे तय करना है। एक श्रोता है जिन्होंने कविता का जवाब कविता से दिया है। वो लिखते हैं, इबारत की ईजाद वाले स्वयं पधारे हैं, आज सफरे कारवां के भाग्य न्यारे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती के सुरीला सफर में गानों की बौछार होने लगी है, जो बारिश की बूंदों की तरह टिप टिप कानों में एक मधुर आवाज घोल रही है। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट। एक श्रोता है जिनका अंदाजा है कि आज तो गागरी वाला मशहूर गाना बजेगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि और कोई गीत हो ना हो लेकिन ये गाना जरूर होना चाहिए कि रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई किसी से वो पहली मुलाकात, तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, फिर से आई यो बदरा विदेशी और जब जब बहार आई। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज फिर बारिश की कहानी में पानी, कैसा है आपका रंग जिंदगी का शोर, बारिश के तारों पर आई बारिश, याद है वो कागज की नाव वो बारिश का पानी। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने बाकायदा प्रॉपर लिस्ट भेजी है, यानी इस इबारत में जितने शब्द हैं उन शब्दों पर गाने, और कमाल की बात यह है कि ज्यादातर गाने मैच कर रहे हैं। जो शब्द इन्होंने चुने हैं, बदरा, गागरी, पानी, मन, रंगीला, बारिश, हवा, उड़, आसमान, जमीन, ओहो हो, 20 शब्द चुन लिए हैं। क्या बात है, क्या मेहनत है, सलाम। और भी बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने अलग अलग शब्दों पर अपनी बातें कही हैं। आप सभी श्रोताओं के कमेंट शामिल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अभी इस गाने के साथ कार्यक्रम का आगाज। क्या आपका गाना हमारे गाने से मैच किया? और हां, एक और बात, आपके शहर में बादल सिर्फ छाए हैं या बरस भी रहे हैं, और जब छाते हैं बदरा आपके मन में आती हैं कौन सी बातें? जल्दी से विविध भारती के फेसबुक पोस्ट पर जाइए और कीजिए कमेंट। विविध भारती का फेसबुक पोस्ट खोजने के लिए फेसबुक पर सर्च बॉक्स में लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, फिर पहुंचिए सुरीला सफर की पोस्ट पर। देखिए बादल छा गए हैं, कचरा घुलने लगा है, घटाएं बरसने लगी हैं।

येसुदास के साथ हेमांती शुक्ला की आवाज बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात का जवाब दिया है और यह खुशी की बात है क्योंकि कम चर्चित गायिका को अगर आपने पहचान लिया इसका मतलब आप फिल्म संगीत के सही कदरदान हैं। पहला ही गीत बहुत खूबसूरत है, ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता ने ये रिपोर्ट की है कि यहाँ सिर्फ बादल छाए हैं, बारिश का इंतजार है। इसके अलावा एक और श्रोता का जवाब है कि आपका गाना क्या है, कहां से छाए बदरा, हमें मालूम है समुद्र से आए बदरा। एक और श्रोता है जो कहते हैं, कविता में कहती हैं, बादल के छोटे छोटे टुकड़े घूम रहे हैं हमारे शहर के आसमान में, जाने कब एक होकर बरसे, जाने कब प्यास बुझे सूखे अरमान की। भाई कविता करने की इन्होंने कोशिश की। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि मुझे पता था कि ये गाना बजेगा, ये मेरा पसंदीदा गाना है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं, सफेद बादल छाए हैं बिना पानी वाले, जाने कब होगी बरसात। एक और श्रोता है जिन्होंने कविता लिख भेजी है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन की एक कविता, मजा आ गया आपने कविता लिखी। फिलीपींस से एक श्रोता का मैसेज ये है कि मौसम खुशगवार है, सूरज देवता आंख मिचौली खेल रहे हैं और थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। एक और श्रोता अपने खेत पर बुवाई करते हुए सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे यहां बादल शादी में मुंह फुलाए फूफा की तरह घूम रहे हैं, नजर तो आएंगे पर किसी काम के नहीं है। क्या बात है भाई, आपकी इस बात और इसकी इस बात में जो व्यंग्य था उसमें बड़ा मजा आ गया है। एक और श्रोता है जिन्होंने रिपोर्ट किया है, तापमान 30 डिग्री, ठंडी हवा चल रही है, बादल छाए हैं। देखिए भाई, देश भर के मौसम का जो हाल है वो यहां पता चल जा रहा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जब गर्मी बढ़ती है तो बारिश 2-3 दिन बाद हो जाती है, लेकिन अब 3 दिन हो गए बारिश नहीं हुई है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि घटा छाई है, किसी भी मिनट बरस सकते हैं बादल। तो ये हैं हमारे तमाम श्रोता जो अलग अलग शहरों से अपने शहर के मौसम को रिपोर्ट भी कर रहे हैं और उसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि उनकी तमन्ना किस गाने को सुनने की है और उनका गाना और हमारा गाना मैच हो रहा है या नहीं। ये तमाम बातें यहां चल रही हैं और उसके अलावा एक और चीज चल रही है, वो है तेज हवा। और हवाओं से मुझे पतंग की याद आ गई। चलिए आज पतंगबाजी से जुड़ी हुई कुछ यादें शेयर करें। जल्दी से मोबाइल उठाइए और कमेंट कीजिए, पतंगबाजी से जुड़ी जो आपकी सबसे शानदार याद है वो लिख भेजिए। इस गाने के फौरन बाद पतंगबाजी वाले सारे कमेंट पढ़ूंगा मैं, तो शुरू हो जाइए। किसने किसकी पतंग काटी, किसने मांझा सूता, किसने पेंच लड़ाए और किसने बाजार से ताव लाकर पतंग बनाई।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में गुमराह फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना। और पतंगबाजी को लेकर कितने सारे कमेंट्स आ गए। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे पड़ोस में एक लड़का अक्सर पतंग पर एक प्रेम पत्र लिखकर अपनी प्रेमिका तक पहुंचाता था, वो अद्भुत दृश्य होता था। 90 के दशक में प्रेम पत्र का बड़ा क्रेज था। ये कमेंट। और इसके अलावा ये कमेंट कि हमारे गुजरात में पतंग मशहूर खंबात के बरोड़ा के जहां बनता है, हमारे गांव में दिवाली के बाद पतंग उड़ाने की शुरुआत हो जाती है, इन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि करीब 50 साल बाद इस संक्रांति में मेरे मुझसे 2 साल बड़ा भाई, जो बचपन में बहुत पतंग उड़ाते थे, हम दोनों ने पतंग उड़ाई, मांझा सूता और करीब 3 पतंग काटी, मजा आ गया। एक और श्रोता लिखते हैं कि पतंग से सिर्फ ये याद आता है कि रफी साहब को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। हमको उड़ानी तो नहीं आती है, पर अपने भाई की चक्री जरूर पकड़ कर रखते थे। रफी साहब को ही नहीं बल्कि मन्ना डे को भी पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पतंग बहुत बनाई लेकिन कभी किसी से पींच नहीं लड़ाया, बस ऐसे ही पतंग उड़ाने में मजा आता रहा है। एक और श्रोताएं जो लिखते हैं कि हमीरगढ़ राजस्थान से हम लिख रहे हैं और

कल ही तेज बारिश हुई है। उसके अलावा एक और श्रोता पतंग की बात पर लिखती हैं कि मेरे भाई कांच की बोतल को फोड़ कर पीस कर महीन करके उससे मांझा सूतते थे और मैं पतंग तो उड़ा नहीं पाती थी लेकिन लटाई पकड़ने का काम मेरा होता था। भाई बहुत सारे ऐसे श्रोता होंगे जिन्हें जो छोटे होंगे और उनके बड़े भाई या बड़ी बहन होंगी, जाहिर है कि पतंग उड़ाने का काम जो है वो बड़े भाई या बड़ी बहन को होता मिलता था और चक्री पकड़ने का काम छोटे भाई बहनों को मिलता था। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्हें सिर्फ चक्री पकड़ने का काम मिला और आपने कई बार ये जोर दिया कि भाई मुझे भी तो दो, मुझे भी तो जरा पतंग उड़ाने दो। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि आज की इबारत पकड़कर मैं फ्लैशबैक में जा रहा हूं, मन को रंगीला करने वाली बारिश की कहानी बताना चाहूंगा कि शादी के अगले साल मैं और पत्नी बारिश के मौसम में अजमेर से लूनावाला खंडाला गए थे। किराए पर बाइसाइकिल ली और भीगते हुए दोनों घाटों तक चले गए। ना आसमां का पता था न जमी का, बस खाइयों का नजारा था। अच्छा अच्छा, ना आसमां का पता हो ना जमी का, इस पंक्ति से उन्हें याद आ गई अपनी ये बात। एक और श्रोता लिखते हैं कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को हमारे यहां पतंगबाजी होती है। और इसके अलावा एक और श्रोता वो लिखते हैं कि जयपुर में हमारे यहां कल बहुत बरसात हुई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बारिश में कॉलेज के वो दिन याद आते हैं जब परीक्षाएं मई जून तक खिंच जाती थीं और समझ नहीं आता था कि पढ़ाई करें या बारिश के मजे लें। इसके अलावा एक और श्रोता है वो लिख रही है कि क्या बोलें, ये बारिश की कहानी आपके लिए, बादल आ भी जाए तो डिलीवरी का पता नहीं है, बड़ी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जो बारिश के इंतजार में हैं और कई श्रोताओं ने जिस तरह से पतंग की यादें बांटी हैं, हो सकता है कि कुछ और श्रोता अभी रह गए हों और उनके कमेंट्स आते ही होंगे, तो उनकी बातें भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी। तब तक जरा आगे बढ़ते हैं और अब अगले गाने की तरफ जो बहुत ही झुमा देने वाला गाना है। फिल्म का नाम प्रेम पुजारी, लता मंगेशकर की आवाज। इस गाने के गीतकार का नाम बताइएगा।

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना गीतकार नीरज ने लिखा है। बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि हमारा बेटा 1000 रुपए की पतंग लाता है संक्रांति में, दोस्तों के साथ खूब उड़ाया करता था। अब पोते छोटे हैं और वो थोड़े थोड़े मजे लेते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो सूरत गुजरात में हैं और वो भी इसी तरह पतंगबाजी को याद कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट हैं। सौराष्ट्र गुजरात के हमारे कुछ श्रोताओं के ये मैसेज हैं कि किसान वहां बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि बुवाई समय पर हो। अभी तक जमीन में बीज पड़ जाने चाहिए थे लेकिन देर हो चुकी है, बारिश नहीं आ रही है। एक और श्रोता ये लिख रहे हैं कि बचपन में पढ़ाई के दौरान मई जून में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान शाम को बहुत पतंग उड़ाई है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि ये सही बात है कि छोटा भाई मैं था तो बड़े भाई साहब पतंग उड़ाते थे और मेरा काम था चकरी पकड़ना, पर मैंने ये महसूस किया कि चकरी पकड़ना भी एक कला है। एक और श्रोता लिखते हैं कि ना तो मैंने चकरी पकड़ी ना पतंग उड़ाई, लेकिन आकाश में रंग बिरंगी पतंगों को देखने में बड़ा मजा आता था और जब पतंग कटकर आती थी छत पर तो जल्दी से उठाकर अपने बड़े भाई को दे देती थी। एक और श्रोता कहते हैं कि हमारे गाँव में यदा कदा कुछ बच्चे पतंग उड़ाते हैं और खास त्योहारों पर उड़ाते हैं। बचपन की याद ये है कि 2 पैसे में 4 पतंग लेकर आते थे और उड़ाते थे। अहमदाबाद में 2 साल पहले 2 महीने मैं वहां रहा तो आसमान पतंगों से भर गया था, जिसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि मुझे पतंग उड़ाना अच्छा नहीं लगता लेकिन जब रंग बिरंगी पतंगें आसमान में उड़ा करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि पतंग से पींच लड़ाने में मजा तो बहुत आता था लेकिन कई बार ये होता था कि दूसरे की पतंग काटने के चक्कर में अपनी ही पतंग उड़ जाती थी। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझे चक्री पकड़ा दी जाती थी जो इतनी तेजी से घूमती थी कि डर लगता था। तो ये पतंग की बातें बातों बातों में इतनी दूर तक चली आई कि अब हम चल रहे हैं आसमां के नीचे।

ये बताइए कि आज सुबह से आपके होठों पर, आपके जहन में कौन सा गाना तैर रहा है? आज सुबह से वो कौन सा गाना है जो आपके दिलो दिमाग पर हावी है?

भाई ये गाना हो गया और बहुत सारे श्रोताओं के जो कमेंट्स हैं हमने शामिल करने की लगातार कोशिश की, और अभी भी जब भी कोई गाना ख़त्म होता है तो हम कोशिश करते हैं कि आप सभी श्रोताओं के जो कमेंट इस बीच में आए हैं वो सभी शामिल कर लिए जाएं। कई श्रोता ऐसे हैं जिन्हें ये लग रहा है कि भाई हाँ, आपके गाने और हमारे गाने मैच हो रहे हैं। एक श्रोता पता नहीं लपक झपक तू आर्य बदरवा गाने का जिक्र कर रहे हैं, और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो गाने का जिक्र कर रहे हैं। ये उनके जहन में गूंज रहा है ये गाना, लपक झपक तू आर्य बदरवा। इसके अलावा एक श्रोता के जहन में गूंज रहा है सिमटी सी शर्माई सी। एक और श्रोता हैं जिनके जहन में आज रपट जाए गूंज रहा है, तो किसी के जहन में सुरमई अखियों में नन्ना मुन्ना एक सपना दी जा रही। देखिए किसने तरह के गाने हमारे अलग-अलग श्रोताओं के जहन में गूंज रहे हैं। एक श्रोता लिख रही है कि इतना समय ही कहाँ कि कोई गीत जहन में गूंजे, ऊपर से मौसम का मिजाज गर्म, हाय गर्मी उफ गर्मी यही उनकी जुबां पर है। चलिए भाई ठीक है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिनकी जुबां पर सुबह से है नैनों में बतरा छाए। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि अकोला में हम शाम को समय निकाल कर बहुत पतंग उड़ाए।

करते थे। और इसके अलावा कई और श्रोता हैं जो बारिश की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बारिश के इंतजार में हम लोग बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पतंग उड़ाने वाले कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका मांझे से हाथ ना कटा हो। अभी कुछ साल पहले एक हृदय विदारक घटना सुनी थी कि मांझे से किसी व्यक्ति के साथ कुछ हादसा हो गया था। उसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि शादी के बाद हम पहली बार मूवी देखने गए, अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी और हम दोनों के मुंह से निकला रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। आज भी ये हम दोनों का पसंदीदा गाना है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगले गाने की तरफ। आपके शहर में चाहे गर्मी हो, चाहे बादल छाए हो, चाहे आप गर्मी से हो हलाकान या परेशान, पर कम से कम ये गाना तो हमारे साथ गुनगुना सकते हैं। किस फिल्म का है ये गाना, ये बताइएगा। और साथ में ये भी बताइएगा कि जब मौसम सुहाना होता है तो आपके होंठों पर कौन सी पंक्तियां आती हैं।

पतंग की बातें क्या हुई, बहुत सारे श्रोताओं की बचपन की यादें ताजा हो गई हैं, कई श्रोताओं के कमेंट आ रहे हैं और वो सभी अपने बचपन को याद कर रहे हैं। एक श्रोता लिखती हैं, बरखा रानी जरा जम के बरसो हमारे ग्वालियर में भी, इसका मतलब उनके शहर में भी बारिश नहीं हुई है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने अनवर को याद किया है, जिनकी आवाज में ये गाना था मौसम मौसम लवली मौसम। और एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है सचिन और पद्मिनी कोल्हापुरे की आवाजें। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि हमारे जहन में गूंज रहा है गाना छतरी न खोल बरसात में। और इसके अलावा थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये गाना था, ये भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा। एक श्रोता को ये कन्फ्यूजन हुआ कि ये त्रिशूल फिल्म का गाना है, जो कि गलत जवाब है। उसके अलावा एक श्रोता ये हैं जिनका कहना है कि इस तरह के गानों को सुनकर मौसम अपने आप ही लवली हो जाता है। गीतकार का नाम है गुलजार, संगीतकार का नाम है खयाम साहब। तो फिर आगे बढ़कर जरा देखें, एक श्रोताएं लिखते हैं कि हमने कोलकाता में भी पतंग उड़ाई थी, विक्टोरिया मैदान में पतंगबाजी देखी। जवानी में बहुत लंबे लंबे पींच लगाए हैं, पतंग बहुत छोटी सी नजर आती थी जब आसमान में ऊंचाई पर उड़ा करती थी। एक श्रोता लिखते हैं कि दसवीं की बात है, बारिश का मौसम था, शाम का समय था जब मैं कोचिंग जा रहा था। रोड के किनारे काफी गहरी नाली खुदी थी, उसमें पानी भर गया था, बरसात हो रही थी, तो सोचा थोड़ी सी चप्पल इस पानी में धो लेता हूं। लेकिन जब मैं उसमें डूब गया, मेरा रजिस्टर छतरी के ऊपर तान में रखा हुआ था और मैं पूरा भीग गया था, लेकिन मेरी छतरी और मेरा रजिस्टर बच गया।

इसके अलावा कुछ और श्रोताओं की कमेंट है। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मांझे पर हम चावल के आटे का घोल लगाते थे, मराठी में खड़ कहते हैं, इसमें कांच को कूट कर उसमें पाउडर मिलाते थे ताकि पतंग फटाफट काटी जाए। इसके अलावा एक श्रोता ये लिख कहते हैं कि कहाँ गया ये कमेंट। एक श्रोता कहते हैं कि विविध भारती के सुबह से गाने सुने तो जो गाना सुबह सुनाई देता है वही जहन में गूंजने लगता है। एक श्रोता लिखते हैं कि पतंगबाजी के कार्यक्रम के बाद खाने की सामग्रियां खाई जाती हैं, ये शायद संक्रांति को याद कर रहे हैं, तिल के लड्डू और अलग अलग तरह की मिठाइयां, ये सारी चीजें याद की हैं। और इसके अलावा जो बहुत नीचे के कमेंट्स हैं जिनकी तरफ मैं जा रहा हूं पढ़ने के लिए, तो उनमें कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने, अब जैसे ये श्रोता है, इन्होंने कहा है कि हमारे पिताजी बहन भाइयों को पतंग बांट कर देते थे, खरीद कर देते थे, और मेरे बड़े भाई थोड़ी सी चीज़ की लालच देकर मेरी सारी पतंगें अपने कब्जे में कर लिया करते थे। ये बचपन की याद उनको आ गई है। और इसके अलावा कुछ और श्रोता है, एक श्रोता है जो लिखते हैं कि ननिहाल गर्मी की छुट्टियों में बहुत पतंगें उड़ाई हैं और 15 फीट ऊंची छत से गिरकर बगैर चोट खाए खड़े भी हो गए। ओ हो, खतरनाक बात है भाई। एक श्रोता लिख रहे हैं कि 67 साल से ज्यादा की उम्र है और 15 से 20 पतंग और चरखियां एक समय में मेरे घर पर हमेशा होती हैं। आसपास कोई उड़ाता तो नहीं है, लेकिन मैं काफी ऊंची पतंग 1 घंटे तक उड़ाता हूं। ये बहुत ही अच्छा व्यायाम भी है।

ओ भाई, ये श्रोताओं की बातें, और अब अगले गाने की तरफ बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या यही कैफियत आपकी है जो इन साहिबा की है। बारिश का इंतजार है और तमाम बातें हो रही हैं, तो बारिश में की गई किसी रेल यात्रा की यादें हमारे साथ साझा कीजिए।

कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि छुट्टियों के बाद नानी के घर से वापस आते समय पक्का बारिश होती थी, बस या ट्रेन से देखते थे, बहुत सुंदर दृश्य, पेड़ पौधे, धान रोपते किसान, बहुत सुंदर लगता था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं, बचपन में हम 12 सदस्यों का परिवार, पैसेंजर ट्रेन का लंबा सफर, बारिश में खिड़की के पास बैठने नहीं दिया जाता था क्योंकि उस समय खिड़कियों में कांच नहीं हुआ करते थे, टीन वाला शटर डाल दिया जाता था। एक श्रोता और हैं जो लिखते हैं कि कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे, बारिश में भीग कर ट्रेन पकड़ी और टाइम से पहुंचे तब मिली। इसके अलावा एक और श्रोता है, उन्होंने भी इसी तरह से बारिश के एक सफर की याद की है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि रेखा और विनोद मेहरा पर फिल्माएगा ये गाना बहुत ही बढ़िया है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लखनऊ में पतंगबाजी को याद किया है और वो ये लिख रहे हैं कि जब मैं पतंग उड़ाती थी तो लड़की होने की वजह से वो लड़का मुझे डराता था, मैंने उससे पेंच लड़ाया और पता नहीं कैसे मैंने उसकी पतंग काट दी, फिर उसने भैया से शिकायत की। ये तमाम यादें देखिए, पतंग के बहाने कितने सारे श्रोताओं की यादें ताजा हो गई। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। किस फिल्म का है ये गाना, ये

भाई ये गाना खत्म हुआ और कार्यक्रम के आखिरी मकाम तक हम आ चुके हैं। हमारे एक श्रोता का कमेंट आया जिसमें उन्होंने एक सुंदर कविता लिखी है, फटाफट पढ़ देते हैं। रिमझिम बूंदों का खिड़की को खटखटाना, लगता है आया है गुजरा हुआ जमाना, कागज की कश्तियों का वो पुराना, वो दौर पुराना, छत से वो गिरते हुए पानी को चुराना, वो सौंधी सी मिट्टी की खुशबू का आना, बचपन की वो यादें फिर से बुलाएं, कभी मन मुस्काए कभी आंख भर जाए, खिड़की पे बैठकर चाय का प्याला, यादों ने फिर कोई किस्सा निकाला, भीगा है मंजर ये दिल भी है गीला, मौसम ने पहना है ये रंग सुरीला। सुंदर कविता है और आप सभी ने जिस तरह की सुंदर यादें बांटी हैं, कुछ बारिश वाले रेल के सफर की यादें हैं जो कार्यक्रम में शामिल हम भले नहीं कर पाए हों, लेकिन हम इन सभी यादों को आराम से बैठकर पढ़ेंगे और आप सभी के की इन यादों के साथ एक पुराने जमाने का लुत्फ उठाने की कोशिश करेंगे। आपने इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया और इतने सारे कमेंट्स किए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 34वीं कड़ी।

बारिसाल जैसी घटनाएं बंगाल में बार बार घटने लगीं। वंदे मातरम का नारा लगाकर अंग्रेजों का विरोध करना आम लोगों की नजर में एक रोजमर्रा की बात बन गई। यह विरोध अब और अधिक संगठित रूप से होने लगा। बंगाल में ऐसी घटनाएं जगह जगह होने लगीं।

0: 1906 में राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन के लिए भगिनी निवेदिता कार्यरत थीं। सुप्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्य भारती इस अधिवेशन में पत्रकार के रूप में उपस्थित थे। भगिनी निवेदिता के साथ हुई चर्चा के कारण सुब्रमण्य भारती के लेखन और विचारों को एक दिशा मिली। सुब्रमण्य भारती ने उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु माना था।
1: हिंदुस्तान मतलब जंजीरों से जकड़ी हुई दुखी माँ है, ऐसा भगिनी निवेदिता कहा करती थी। सुब्रमण्यम भारती पर भगिनी निवेदिता के शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ा।

0: वंदे मातरम शब्दों का उपयोग करते हुए एक ओर उन्होंने भारत के वैभव, इतिहास, संस्कृति का गौरव किया तो दूसरी ओर जातिवाद जैसी अनिष्ट प्रथाओं पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया। उन्होंने लिखा,
1: भले हो यहाँ हजारों जातियां, पर न हो विदेशियों को यहां स्थान। एक माता के पुत्र हम चाहे लड़ें जितने, हैं फिर भी एक दूसरे के बन

0: ऐ इंसान सुन, यहां आ, यहां कोई ऊंच नीच नहीं है। सुब्रमण्य भारती की ये क्रांतिकारी कविता है। इसमें वो इंसान को पुकार कर कहते हैं कि इस दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। जाति धर्म ऊंच नीच का भेदभाव गलत है।
1: भारत वंदना इस प्रसिद्ध कविता में सुब्रमण्यम भारती लिखते हैं,
2: हमारी भारतीय माताएं बचपन में विवाहित होकर अपना घर बसाती थीं। यहीं उन्हें एहसास होता था मातृत्व के आनंद का, संतान प्राप्ति के गर्व का। जगह जगह स्थापित हमारे मंदिरों ने बड़ों को आत्मा के सत्य की अनुभूति करा दी। काल प्रवाह में उनके विलीन होने पर उनकी संतानों ने वेदी की उनकी जगह ले ली। सत्य की उस स्मृति को मैं वंदन करता हूं। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
1: सुब्रमण्यम भारती ने तमिल भाषा में जो वंदे मातरम के दो अनुवाद किए वे इस प्रकार हैं।

और वंदे मातरम इसी नाम की दूसरी कविता में उन्होंने लिखा,

0: तमिल के जैसे ही दक्षिण की तेलुगु भाषा में भी वंदे मातरम का अनुवाद हुआ। अनुवादक कवि थे लक्ष्मी नरसिंह पंतलु। आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्री में एक बड़ी सभा में बिपिन चंद्र पाल के सम्मुख वंदे मातरम तेलुगु भाषा में गाया गया। वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा, मंद मंद मलयानिल जागृत निर्मल जीवन मधुर फलामृत, शस्य श्यामल कोमल गात्रा वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा, श्यामल नीवे सरलवु नीवे धरणिवि भरणिवि सर्वमु नीवे, प्राण तुलीवे जननी भारतवनी वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा, नीवे विदयक नीवे धर्मक नीवे हृदयक नीवे मर्मक, नीवे प्राणमु नीवे देहमु नीवे प्रेममु नीवे श्रेयमु, वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा। वंदे मातरम ये शब्द अब प्रत्येक भारतीय के हृदय में विराजमान हो गए थे।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 34वीं कड़ी, मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?
3: कौन लाया? कौन लाया?
4: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
5: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।

0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष

0: के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
0: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी 2 दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री

0: पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
1: For our business,
2: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
2: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
0: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाची के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्टार्ट की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 एमसीसी C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्थिदात

0: पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमेरिका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।

0: भारती से बोल रही हैं, आइए सुनिए सदाबहार नगमे।
1: वो जब याद आए बहुत

राजा मेहदी अली खां के बोल थे, मदन मोहन की तर्ज थी और उन्हीं की आवाज साथ में लता मंगेशकर की आवाज, वो कौन थी फिल्म के गाने का ये एक विशेष संस्करण था। इससे पहले कोहरा फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, संगीत हेमंत कुमार का था।

0: बीते हुए दिन
1: किशोर कुमार की आवाज में दूर गगन की छांव में फिल्म का गाना था।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में यह गोदान फिल्म का गाना था। अनजान के बोल थे, संगीत पंडित रविशंकर का था। इसी के साथ अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम खत्म होता है। एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में, वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान।
2: हेलो सहेली।

0: सखियों नमस्कार। इंतजार ऐसी खामोश कविता होती है जिसे हर दिल हर पल बिना शब्दों के लिखता रहता है। ये वो दीप होता है जो विरह की रातों में आशा की लौ जलाए रहता है। इंतजार वो फूल है जो खिलने से पहले ही खुशबू का एहसास कराता है। किसी अपने की राह देखता हुआ मन मानो समय की दहलीज पर उम्मीदों के दीप सजाकर बैठा रहता है। इंतजार वो एहसास होता है जहाँ मिलने की खुशी से पहले यादों की महक दिल के आंगन को महका देती है। चिलचिलाती गर्मी से राहत के लिए हम सभी को झमाझम बारिश का इंतजार है। तो फिलहाल मुझे इंतजार है आपके फोन कॉल्स का। देखते हैं किन किन सहेलियों से आज बातें होगी। और हमारा इंतजार हुआ खत्म और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।

0: सी सहेली ने फोन लगाया है हमारी?
1: शीला सहनी दिल्ली से। हाँ
0: शीला जी, क्या हाल चाल है शीला जी?
1: अपना सही है, आप बताओ अपना हाल चाल।
0: जी हमारे भी हालचाल बहुत अच्छे हैं। बताइए आप क्या करती हैं?
1: जूते लन का काम यहाँ होता है दिल्ली में, वही सब कर रही हूँ ऐसे फैक्ट्री में।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप व्यस्त रहती हैं, काम करती रहती हैं। मुझे एक बात
1: हाँ
0: बताइए,
1: मैं
0: दिल्ली
1: काम
0: के क्या
1: करती हूँ।
0: हाल चाल हैं?
1: दिल्ली में तो अभी थोड़ा गर्मी है और बाकी सब तो वैसे मौसम के हिसाब से चलते ही रहता।
0: गर्मी से तो सभी परेशान हैं, पर मुझे एक बात बताइए कि गर्मी से राहत के लिए आप कौन से उपाय करती हैं? किस तरह से ऐसा कुछ करते हैं जिससे गर्मी कम लगे?
1: गर्मी के लिए क्या करेंगे, अपना सेहत पे ध्यान रखे हैं, धूप धूप का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: यही तो सबसे बड़ी बात है कि हमें खूब पानी पीना है और बाहर
1: हाँ
0: निकलते वक्त छाता
1: पानी
0: लेके
1: पी
0: चल।
1: लो, ठंडा पी लो, जिसका होता है लस्सी पी लेते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और ये बताइए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: मैम नील कमल फिल्म का कोई सा सुना दीजिए।
0: सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: मैं निशा पाठक एयरपोर्ट रोड इंदौर से लगाया है।
0: निशा जी, क्या हाल चाल है
1: हाँ
0: आपके?
1: जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। बस ये मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मैं आपकी बहुत बहुत बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ,
0: क्या बात है,
1: विविध
0: शुक्रिया
1: भारती की खास तौर पर।
0: जी।

0: और मैं सालों से, आप समझ लीजिए, बचपन से विविध भारती सुनती चली आ रही हूँ, और हेलो सहेली भी हमेशा सुनती हूँ। सखी सहेली तो फेवरेट है ही मेरा
1: अच्छा जी, निशा जी आपके बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
0: जी। मैं सीनियर सिटीजन हूँ और दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, दो पोते हैं, उन्हीं के साथ मैं रहती हूँ
1: यानी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
0: जी। हाँ, ये समझ लीजिए कि रिटायरशिप में कर रही हूँ अब
1: ये तो बहुत अच्छी बात है। हाल ही में हम
0: जी।
1: सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, तो क्या आप
0: जी
1: योगा करती हैं? योग से जुड़ी
0: जी
1: हुई हैं?
0: हाँ, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि मैं करीब 2010 से मैंने योगा को अपनाया है और मुझे उस योगा से बहुत बहुत फायदा मिला है।
1: किस तरह से फायदा है वो भी थोड़ा विस्तार से बताइए।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मुझे कमर में तकलीफ हो गई थी और मुझे थोड़ा वो भी है, ब्लॉकेज में भी थोड़ी है दिक्कत, तो उस वजह से फिर मैंने प्राणायाम भी शुरू करा और 3-4 आसन जो मेरे कमर से और स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित हैं वो आसन भी मैं करती हूँ, तो उन सब आसन और प्राणायाम से मुझे बहुत लाभ मिला। तो मेरी दवाइयाँ करीब करीब आप जो चल रही थी सिर्फ वो ही चल रही हैं, उसके आगे नहीं बढ़ी।
1: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यानी आप जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं, साथ साथ अपना भी ध्यान रख रही हैं और पूरे परिवार
0: जी
1: के साथ
0: हाँ,
1: खुशहाल हैं।
0: सारी महिला समाज से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप घर गृहस्थी में भी ध्यान दीजिए किंतु अपनी तरफ भी ध्यान दीजिए, और अपने जो आपके शौक रह गए हों उन्हें आप सीनियर सिटीजन जब आप बन जाती हैं तो आप कम से कम उन शौक को इस समय में आप पूरा कीजिए।
1: ये तो बहुत अच्छा संदेश दिया है। और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: बंदिनी फिल्म का है, जिसको सुनकर मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। अब के बरस भेज भैया को बागुल, सावन में लीजो बुलाए।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत आपने चुना है और हम
0: जी
1: सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो मैम, नमस्कार। पूनम
0: नमस्कार। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: यादव लुधियाना से। हाँ
0: पूनम यादव लुधियाना से।
1: जी मैम, लेकिन
0: पूनम जी क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं तो बस हाउस वाइफ हूँ मैडम
0: हाउसवाइफ होना भी बहुत बड़ी बात है ना पूनम जी। पूरे
1: जी।
0: परिवार का
1: हाँ
0: ख्याल
1: हाँ
0: रखती हैं आप, है ना?
1: जी, हाँ जी मैडम जी।
0: और कौन से शौक हैं आपके?
1: हमारे शौक तो मैडम जी बस सिलाई कढ़ाई।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा शौक है ना, सिलाई करना,
1: हाँ
0: कढ़ाई करना, बुनाई करना। ये तो महिलाओं को इन्हें बचपन से सिखाया ही जाता था पुराने जमाने में। और ये कला जो होती है ना, अद्भुत है
1: जी
0: ये कला, हर कोई नहीं सीख सकता ये, है ना? और अभी
1: हाँ
0: लुधियाना
1: जी,
0: की क्या हालचाल है?
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो से बारिश होके हटी है, थोड़ा गर्माई, थोड़ा हवा, थोड़ा मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का।
0: यानी अभी आप मौसम का लुत्फ उठा रही हैं।
1: सारे मौसम आने बहुत ही जरूरी है मैडम जी। जिंदगी में हर मौसम अगर नहीं आएगा तो हमारी जिंदगी नहीं चलनी है। एक
0: क्या बात है। तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: बरसात फिल्म का गाना है, बॉबी देओल का। मतलब नहीं हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते। कहाँ से फोन लगाया और कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: जी, मैं श्वेता भारती, जिला ग्राम हिंसा से बोल रही हूँ।
0: क्या
1: जी,
0: हालचाल है आपके?
1: बढ़िया है दीदी, आप बताओ कैसी हो।
0: जी हम भी मजे में हैं, और आपसे बात करके और भी हम मजे में हो गए, और भी खुश हो गए, है ना?
1: हम भी बहुत खुश हो गए, कॉल लग गया।
0: वैसे आप बताइए कि
1: सही।
0: आप करती क्या है जिंदगी में?
1: जी दीदी, घर पे रहते, घर के काम करते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी
1: जी
0: बात है।
1: जी
0: और घर के काम करते करते खुद के लिए कभी वक्त निकालते हैं कि नहीं? एक अपने खुद के लिए कभी कभी ऐसा लगता है ना, ये काम करने में मुझे ज्यादा आनंद मिलता है, यानी मुझे सिलाई करने में ज्यादा आनंद मिलता है, या फिर मुझे गीत गाने में आनंद मिलता है, या फिर रेडियो
1: नहीं,
0: सुनने में।
1: मुझे मुझे गाने में आनंद मिलता है। और रेडियो सुनती हूँ, विविध
0: गाती भी है।
1: भारती बहुत ज्यादा सुनती हूँ। बहुत खुश हूँ विविध भारती से। जी दीदी,
0: जी, और गाती भी हैं आप?
1: जी दीदी गाती हूँ। अच्छा,
0: तो गुनगुना के बताइए।
1: गुनगुना के भी सुनाओ। देवी
0: सुनाइए।
1: जी के मंदिर में लट से बाहरी आई, देवी जी के मंदिर

0: से मांगी आई देवी जी की मंदिर में लट शिवा आई।
1: क्या बात है, कितना सुंदर भजन सुनाया आपने। तो ऐसे ही गाते
0: जी दे
1: गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए।
0: जी दे
1: और आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: फिर जीत फिल्म का सुना दीजिए दीदी। कोई
1: तो जीत फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: भी सुना दीजिए।
1: जी ठीक है, जीत फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सई देशपांडे बोल रही हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से।
0: सही जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, स्केचिंग, पेंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब करती हूँ और पब्लिशर भी हूँ। पुस्तकें पब्लिश हुई हैं हमारी। और पहले तो वैसे मैं हाउसवाइफ थी, बट मैंने हॉबीज अपनी डेवलप की और लेखन भी किया, तो लेखिका, कवयित्री, गायिका भी हूँ। और मेरा मेन प्रोफेशन अभी फिलहाल ये है कि मैं पेंटिंग और स्केचिंग करती हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप ऑलराउंडर हैं, सारी
1: जी
0: कलाओं
1: जी
0: में आप निपुण हैं, है ना?
1: जी
0: और आपने संगीत कहा कि आप संगीत सीखी हुई हैं, तो कौन सा संगीत का प्रकार, यानी आप शास्त्रीय संगीत सीखी हैं या सुगम संगीत, किस तरह के गाने आप गाती हैं?
1: जी मैं शास्त्रीय संगीत सीखी हुई हूँ, बट अभी फिलहाल मैं सुगम संगीत गाती हूँ और सेमी क्लासिकल गाती हूँ।
0: और जैसे आपने कहा कि पहले आप हाउसवाइफ थी, तो ऐसा होता है ना कि आमतौर पर महिलाओं को ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ है, हम तो सिर्फ हाउसवाइफ हैं, पर घर संभालते हुए अपने हॉबी के लिए वक्त निकालना और आगे चल के उसी का प्रोफेशन चुन लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप उसी दौर से गुजरी हुई हैं कि आप पहले हाउसवाइफ थी, उसके बाद में आपने धीरे धीरे सारी कलाओं को सीख कर उसमें पारंगत हो गई हैं और आप अब प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। तो हमारी जो सखियां हैं, अन्य सखियां, उन्हें भी आपके बारे में सुनकर अच्छा लगेगा, तो अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: जब मैं हाउसवाइफ थी तो तब मेरे एक्चुअली सास ससुर भी थोड़े एजेड थे और बच्चे भी छोटे थे, तो मैं पूरी तरह से परिवार की सेवा कर रही थी, यानी उनकी तरफ पूरा ध्यान देना। और मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ स्टेशन रहते थे, तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे थी, इसलिए मैंने उस वक्त घर के अंदर रहकर ही जो कुछ मैं कर सकती थी उतना किया। अपनी हॉबीज को डेवलप करती रही, टैलेंट्स को, यानी जैसे स्केचिंग है तो उसमें मैं खुद को डेवलप करती रही। और फिर आगे जाके मुझे उसमें फिर अपॉर्चुनिटीज मिली, बच्चे भी बड़े हो गए और घर से भी सपोर्ट था ही, यानी जहाँ जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती थी मैं करती थी। और अब तो मुझे ऑर्डर्स भी अच्छे आने लगे हैं और काफी प्रसिद्धि मिल चुकी है। तो मेरा ये कहना है सभी सखियों से कि अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी कुछ समय अपने लिए, खुद के लिए अवश्य निकालें, और जो कुछ भी आप में टैलेंट है उसको आप डेवलप करते रहें। भले ही उस वक्त आप बाहर ना भी जा पाए तो भी कम से कम एक

0: 2 घंटा अपने लिए खुद के टैलेंट्स के लिए निकालें और उसको डेवलप करते रहें तो आगे जाके आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलती हैं।
1: ये तो बहुत अच्छा संदेश सारी सखियों के लिए आपने दिया। और एक सवाल आपसे कि ये सब काम करते हुए परिवार का आपको कितना सहयोग मिला?
0: जी, ये जब मैं कर रही थी तो घर में, जब मैं, जैसे अब बहुत से काम हमको करने पड़ते हैं तो घर के सदस्यों ने घर के कामों में थोड़ी मदद अगर की तो हमको खुद के लिए भी टाइम निकालना पॉसिबल होता है। तो ये मेरे घर के सब सदस्य मुझे ये मदद करते हैं। और जब मैं बाहर जाती हूँ या मुझे कुछ ऑर्डर्स रहते हैं या गाने का कार्यक्रम होता है तो भी मुझे घर से बहुत सपोर्ट, मेरे हस्बैंड स्पेशली और बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं। तो घर के लोगों ने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब घर की महिला उसके अंदर का टैलेंट अगर वो डेवलप कर रही है तो उसको आप लोग सपोर्ट करें ताकि वो खुश रहे। फाइनेंशियली भी वो अगर इंडिपेंडेंट रहती है तो भी घर वालों को भी हेल्प उसकी होती ही है ना, तो घर वालों ने भी उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे और अपनी हॉबीज को वो अगर प्रोफेशन में लेके आ रही है तो वो खुश भी रहेगी तो वो नेचुरली परिवार को भी खुश रखेगी,
1: ये
0: ऐसा
1: बहुत
0: मेरा
1: सही
0: मानना।
1: बात आपने कही।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुरीली आपकी आवाज है और बहुत सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते
1: धन्यवाद
0: गुनगुनाते रहिए। और यही
1: धन्यवाद
0: गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, यही गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी, मेरा नाम जयश्री है।
0: कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: मैंने लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा से फोन लगाया है।
0: अच्छा, ये कहाँ पर स्थित है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए इस बारे में।
1: जी, ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में है और ये आपने सुना ही होगा डॉक्टर प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे के बारे में। तो उनका जो लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा में है, वहां पे मैं काम करती हूँ।
0: क्या
1: और
0: बात है,
1: हाँ,
0: ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये हमने
1: जी
0: पढ़ा भी है उस बारे में और सुना भी है।

0: और हमने
1: जी
0: उनके जीवन पर आधारित फिल्म भी देखी है। आप क्या काम करती है वहां पर?
1: यहाँ मुझे जो प्राथमिक कक्षा की जो शिक्षिकाएं होती है उनके साथ मुझे सहायक शिक्षिका करके काम करने का अवसर मिला है।
0: तो
1: हाँ,
0: वहां जाने की इच्छा कैसे जागृत हुई आपके मन में?
1: पहले तो मैंने ये लोक बिरादरी के प्रकल्प के बारे में बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ मुझे पता था और पढ़ा भी था मैंने। मैंने प्रकाश बाबा उनकी ये फिल्म भी देखी थी जिसने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला और तभी से मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मुझे कुछ समय यहाँ आकर काम करने का अवसर मिले। तो मैंने उनसे पूछताछ की तो मुझे ये अवसर अभी मिला है
0: तो कैसा लग रहा
1: और
0: है
1: यह
0: आपको वहां जाकर?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का वातावरण बहुत शांत है और प्रकृति के करीब है। मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है और यहाँ का सेवा भाव और सादगी मेरे लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान है, तो इसलिए मैं यहाँ बहुत खुश हूँ यहाँ आकर।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है,
1: जी
0: क्योंकि जब हम अपनी खुशी से जीते हैं, यानी अपने खुशी का
1: जी
0: काम करते हैं, तो उसमें हमें अलग ही आनंद मिलता है, और आज वो खुशी आपको महसूस हो रही है। तो यहाँ की
1: जी
0: शिक्षा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे आप कि किस तरह से शिक्षा दी जाती है बच्चों को?
1: हाँ, मैं जरूर दूंगी। मेरे विचार से यहाँ पे यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और यहाँ पे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है, ये वो केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं होता है बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास, स्वावलंबन और सामाजिक संवेदनशीलता निर्माण करना, ये भी यहाँ यही की शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो यहाँ जीवनोपयोगी शिक्षा पर ज्यादा ये दिया जाता है, वो शिक्षा ज्यादा दी जाती है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, ये प्रकृति के सानिध्य में बसा हुआ है, तो बच्चों को बहुत करीब से प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलता है, नई नई चीजें सीखने का मौका मिलता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपको भी वहां पर बहुत अच्छा लग रहा है, तो
1: जी,
0: बताइए रेडियो कब सुनती हैं आप?
1: रेडियो में एक्चुअली मैं यहाँ आई तब यहाँ पे टीवी वगैरह कुछ है नहीं, तो ज्यादातर मैं रेडियो सुनती हूँ और सखी सहेली ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी न्यूज भी सुनती हूँ, तो विविध भारती पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो रेडियो तो मैं सुनती रहती हूँ।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सारी जानकारी सुन के। तो बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हमको मन की शक्ति देना, यह प्रार्थना गीत बहुत पसंद है और यह गीत फिल्म गुड्डी का है जिसमें जया बच्चन जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। गीत इसलिए पसंद है क्योंकि यह गीत हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
0: तो यानी हमें मन से समृद्ध बनाता है ये गाना, तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो हमारे मन को हमेशा हमें मजबूत बनाए रखना है। तो चलिए जयश्री जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, कौन
1: हेलो सहेली,
0: सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं कल्पना ठाकरे बात कर रही थी।
0: कहाँ से फोन लगाया?
1: मैं तहसील जुन्नार देव, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं पार्षद रह चुकी हूँ, मेरा पार्लर भी चलता है, और महिला मोर्चा अध्यक्ष रह चुकी हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है ना?
1: जी हाँ, जी।
0: और आज आपकी आवाज में खुशी झलक रही है। क्या पहली बार फोन लगाया आपका विविध भारती में?
1: हाँ, पहली बार ही फोन लगाया है, और बहुत पहले से मैं प्रयास कर रही थी, लेकिन आज मेरा कॉल लगा। बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। जी
0: चलिए, ये मैंने कहा ना, आपकी खुशी आपके आवाज में झलक रही है। वैसे कल्पना
1: हाँ,
0: जी,
1: जी
0: हर किसी की खुशी की एक अलग परिभाषा होती है। तो यानी
1: जी
0: किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है, किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है। तो आपकी खुशी की क्या परिभाषा है?
1: देखिए, खुद की खुशी के लिए तो हर कोई तत्पर रहता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे कारण लोगों के जीवन में खुशियों के पल आए, इसलिए मैं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए हर संभव काम करती हूँ, जानकारी देती हूँ उनको, उनके फॉर्म भरना, बैंक के काम कैसे करना उन्हें बताती हूँ।
0: ये तो बहुत
1: जी
0: अच्छी बात लगी आपकी कि आप दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ लाने की कोशिश करती हो, जिसमें आप हर संभव प्रयत्न करती हैं कि उन्हें हर तरह से मदद मिले। तो इस बारे में
1: जी
0: हर कोई नहीं सोचता है, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है और इसी सोच के साथ आप खूब आगे बढ़िए। अब बताइए, कौन सा गीत आप
1: मुझे
0: सुनना चाहती हैं?
1: संगीत का पहले से ही काफी शौक रहा है, और यहाँ छोटे मोटे फंक्शन में भी मैं गा लिया करती हूँ। मैं अपनी एक खास सहेली के साथ अपने कॉलेज के दिनों में एक गाना गाया करती थी, जो मेरी पुरानी यादों को ताजा कर देती है। मैं वही गाना सुनना चाहती हूँ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा।
0: तो ये गाना
1: जी
0: गुनगुना के बताइए आप।
1: जी

0: तोबारे दिलरुबा दिलरुबा दिलरुबा दिलरुबा।
1: ये गाना लता जी और कमल बारोट का गाया हुआ गीत है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, कैसे हो? मंजू,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें? मंजू जी, कहाँ से लगाया फोन?
1: हाँ जी, हरियाणा हिसार से।
0: हिसार, हरियाणा से मंजू जी से बात हो रही है। बताइए मंजू
1: हाँ
0: जी,
1: जी,
0: क्या करती हैं आप?
1: मेरा सिलाई का काम है। हाँ
0: सिलाई का काम करती है, और सिलाई करते
1: जी,
0: करते रेडियो सुनती है।
1: हाँ जी,
0: कौन से कार्यक्रम सबसे अच्छे लगते हैं आपको?
1: विविध भारती के सुबह से लेकर शाम तक के चलते ही रहते हैं, सारे ही अच्छे लगते हैं।
0: सारे कार्यक्रम पसंद है। और जैसे कि महिलाएं दिन रात काम करती हैं, खुद की ओर ध्यान नहीं दे पाती। 21 तारीख को सभी ने विश्व योगा दिवस मनाया, विश्व संगीत दिवस हम सभी ने मनाया। तो आप योग
1: हाँ जी,
0: करती हैं, व्यायाम करती हैं?
1: थोड़ा बहुत बस घर के कर लेते हैं सुबह। ये
0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: कन्यादान पिक्चर का है, लिखी जो खत तुझे वो फूल बन गई।
0: जी, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, बिहार
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: पटना से इंदु चौबे।
0: इंदु जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया।
0: बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: या तो बहुत कुछ सुना लीजिए, पर अब तो निश्चिंत की जिंदगी, जिम्मेवारी कुछ भी नहीं है, बस आराम से मजे से बीज भारती सुनना, कुछ कुछ अपना किताबें पढ़ना, अपना दिनचर्या मेंटेन करना, लोगों से मिलना जुलना, बस ऐसी जिंदगी।
0: बहुत सुंदर जिंदगी जी रही हैं, यानी यूं कह लीजिए कि जिंदगी का बड़ी खूबसूरती के साथ लुत्फ उठा रही हैं, है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ। और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: बहुत बचपन से, जब
0: बचपन।
1: से मतलब गानों के प्रति शौक हुआ किशोरावस्था से, तब से।
0: और ये बताइए कि अभी हाल ही में हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, साथ ही संगीत दिवस मनाया, तो योग और संगीत का आपके जीवन में क्या महत्व है?
1: संगीत तो रच बस गया है, योग भी मैं करीब 10 साल से कभी कंटिन्यू, ऐसे तो मैं 20 साल से कर रही हूँ। मुझे साइटिका का अटैक हुआ तब से मुझे उस समय योग नहीं करके एक्सरसाइज ही सिखाया गया, और मैंने 3 महीना उस तक कोर्स किया। अब तब से मैं नियमित रूप से घर में या बाहर कहीं भी रहूं मैं जरूर करती हूँ।
0: ये बहुत अच्छी
1: और
0: बात आपने कही।
1: हाँ, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, और आपको सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि मैं 10 साल से थायराइड से पीड़ित थी, और इधर 2 साल से मैं कोई थायराइड का दवा नहीं ले रही हूँ। मेरा वजन भी कम हो गया, और मैं अपना जो दिनचर्या है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उम्र के साथ तो आता ही है, लेकिन मैं आराम से डेली 20 मिनट वॉक करती हूँ।
0: क्या बात है।

0: ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि योग ने आपके जीवन में कितने सारे बदलाव
1: हाँ
0: लाए, सकारात्मक बदलाव लाए, जिसके
1: जी
0: बदौलत
1: जी
0: आप
1: जी
0: तंदुरुस्त जीवन जी रही है। तो हर
1: जी
0: महिला
1: बिल्कुल
0: को ऐसे ही करना चाहिए कि कितने भी व्यस्त जिंदगी क्यों ना हो, योग को महत्व देना है, अपनी सेहत का हमें ध्यान रखना है। अगर हम अपना सेहत का ध्यान रखते हैं तो हमारा परिवार भी तंदुरुस्त रहेगा, और जब
1: जी
0: हम योग
1: बिल्कुल
0: करते हैं ना तो हमारा देखा सीखे बच्चे भी करते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो भी तंदुरुस्त रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: लंबे हाथ का प्यार की राह दिखा दुनिया में, रफी जी की आवाज
0: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये
1: में।
0: गीत।

सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस प्रकार हैं, 400-24662, फिर से 400-24662। दूसरा नंबर है 2867-0288, फिर से 2867-0288। और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी हमसे जुड़ने का मौका मिले। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक नम्र विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आप

0: आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारे संख्याओं के फोन नहीं लग पाते। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है अनुश्री गुप्ता, संपादन नम्रता टिकोड़े का, हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं अरुण शेखर की लिखी गीतों भरी कहानी, उन दिनों की बात है। वाचन स्वर अरुण शेखर का।
2: ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल से इमोजी भेजकर इश्क जाहिर करने का जमाना नहीं आया था। मोबाइल जैसी चिड़िया का उद्भव भी नहीं हुआ था। गूगल नाम का जिन्न भी तब तक अस्तित्व में नहीं आया था। जो भी खोजना हो किताबों से ही खोजना होता था। किताबें लाइब्रेरी में होती थी, साथ ही एक दूसरे को पढ़ती हुई निगाहें भी। रास्ता लोगों से ही पूछना होता था। रास्ते पूछने में कई बार रिश्ता बन जाता था। ये उन दिनों की बात है जब रिश्तों में अलाव थे, जब रिश्तों में ताव थे, जब रिश्तों में हाव भाव थे, जब रिश्तों में जान थी जिसे लोग हथेली पर लेकर घूमते थे, जब शहरों में रिक्शे पर जा रही लड़कियों के पीछे पीछे आशिक उन्हें उनके घर के पास तक छोड़कर आते थे, जब विश्वविद्यालय के नवनियुक्त अध्यापक साइकिल से भी नौकरी पर आते थे, जब लड़के दूर बैठे बैठे मजाक मजाक में लाल वाली, हरी वाली, लंबी वाली, सांवली वाली, गोरी वाली आपस में बांट लिया करते थे, जब अनजाने में ही किसी को अपना बना लेने का चलन था।

मैंने प्यार किया फिल्म की धूम थी, उसका एक संवाद बहुत प्रसिद्ध था। दोस्ती का एक उसूल होता है मैडम, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने प्यार किया कि कैप जिस पर लिखा होता था फ्रेंड फैशन में थी, तो टोपियां तो थीं पर कबूतर नहीं थे जो प्रेम पत्र ले जाते, तो ऐसी मंडली में कोई न कोई कबूतर बना लिया जाता था जो बिना शरारत के जस का तस प्रेम पत्र पहुंचा देता था। यह उस समय की बात है जब कई लड़के शहर में रहने के ठिकाने के चक्कर में वकील बन जाते थे, मतलब विश्वविद्यालय से कोई न कोई कोर्स करते ही रहते थे, कहीं न कहीं एडमिशन लिए ही रहते थे, जिसमें लॉ सबसे सही रहता था क्योंकि 5 साल की छुट्टी, और अगर एक दो बार फेल भी हो गए तो सोने पर सुहागा, जिससे हॉस्टल में रहने की परमानेंट व्यवस्था बनी रहे। जब लाइब्रेरी में जोड़े प्रेम की पींगे बढ़ाते थे, किताबों की अदला बदली होती थी और ये किताबें लिफाफे का काम करती थी। ये बात चल रही है नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ की, हालांकि यहां लक्ष्मण पार्क भी है, जब तब लखनपुरी का जिक्र होता रहता है।

जब सिनेमा हॉल के आसपास से गुजरने पर भी घर में डांट पड़ती थी, जब जय भारत सिनेमा हॉल में पुरानी फिल्मों के टिकट 3 रुपए और साइकिल पार्किंग के 25 पैसे होते थे, जब इश्क करना बड़ी हिम्मत का काम हुआ करता था, उस समय मवाली, कसम पैदा करने वाली जैसी फिल्मों के साथ सरस्वती चंद्र, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में भी हॉल में लगती थी। तो ये कहानी है श्रीमान एक्स की, जो बहुत संघर्षशील कलाकार हुआ करते थे, परंतु प्रेम के मामले में बिल्कुल फिसड्डी थे। वैसे देखा जाए तो कला का मूल प्रेम ही है। अब किशन भगवान को ही ले लो, सबसे बड़े कलाकार और सबसे बड़े प्रेमी।

0: श्रीमान एक्स की 12वीं तक की पढ़ाई लड़कों वाले स्कूल में ही हुई। समझिए, यहां तक का जीवन पूरी तरह सूखे में गुजर गया। जब विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ तो वहां कन्याएं भी थी और हिंदी की क्लास में तो बहुतायत से, यानी हरियाली ही हरियाली। पहली बार कोएड, यानी कि जहां लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, इस बात का अनुभव हो रहा था। अब समझिए कि श्रीमान एक्स की प्रेम कहानी शुरू होने का मौसम बन चुका था। उनके जीवन में अब तक प्रेम की फुहार तक न पड़ी थी, इसलिए बहुत ही खड़ूस टाइप के व्यक्ति बन गए थे श्रीमान एक्स। एक बार एक नाटक में प्रेम का अभिनय करना था। उसमें अपनी प्रेमिका से प्रेम का निवेदन करने वाले दृश्य का रिहर्सल करना था। श्रीमान जी के हाथ पैर सब कांपने लगे अपनी प्रेमिका का दुपट्टा छूने में। इतने में ही श्रीमान एक्स के पसीने छूट गए। तो प्रेमिका का अभिनय कर रही मोहतरमा ने समझाया कि आप आराम से अभिनय कीजिए, इतना घबराने की बात नहीं है। तो श्रीमान जी थोड़ा सहज हुए।
1: बाजू बाबू।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

ये उन दिनों की बात है जब जाड़े का मौसम था, रंग बिरंगे लिबासों से सजे धजे लोग आते थे। हालांकि गरीबों के लिए मौसम बहुत दुखदाई भी होता है, जैसे तैसे रातें कटती हैं। नए साल की शुरुआत होने वाली थी, इस बीच एक कन्या श्रीमान एक्स को अच्छी लगने लगी। जी हाँ, अच्छी लगने लगी। सुंदर सांवली सलूनी, लहराते गेसू, मोरनी सी चाल, सुराहीदार गर्दन, कुल मिलाकर रीतिकालीन कवियों की नायिका सी लगती थी। क्लास में नायिका भेद के वर्णन के दौरान वो सुश्री वाई के सपनों में खो जाते थे। हेलो हाय का कोई अवसर नहीं मिल पाता, कारण कि वो हमेशा अपनी एक सहेली के साथ रहती थी। खैर, मौसम मंगड़ाइयां ले रहा था, हवाओं में ठंड थी पर भावनाओं में पर्याप्त गर्मी थी, जिसका एहसास श्रीमान एक्स को बखूबी हो रहा था।

तो नए साल की आहट से श्रीमान एक्स के दिल में मुशायरे होने लगे, कवि सम्मेलनों की झड़ी लग गई, इश्क मोहब्बत का गाना जो भी सुनते उन्हें लगता उन्हीं के दिल की आवाज है। हालांकि कड़े संघर्ष के दिन थे, घर त्याग चुके थे, इसलिए अपनी पढ़ाई, रहने खाने के खर्च सबकी व्यवस्था करना आसान नहीं था। खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल मुश्किल से मिलता था, राशन कार्ड था नहीं, इसलिए विश्वविद्यालय में जाते समय भी साइकिल में 5 लीटर वाली प्लास्टिक की पिपिया यानी कि डिब्बा बंधा रहता था, जो उनकी अमीरी का ढोल पीटता रहता, उनके संघर्ष की महागाथा का ऐलान कर रहा होता। इसी में से प्रेम के लिए भी कुछ वक्त चुराना था। देखा जाए तो यही एक एहसास था जो ठंडी में भी गर्मी का एहसास बनाए रखता था। इसी के सहारे दिन गुजर रहे थे।

तब नए साल और त्योहारों में ग्रीटिंग कार्ड भेजने का चलन था। उसमें फूल पत्ती बनाने, शेरो शायरी लिखने का फैशन था। कार्ड की तरह तरह की दुकानें रंग बिरंगे कार्डों से सज उठती थी। एक महीने पहले से ही लोग कार्ड खरीदने भेजने में जुट जाते थे। सारे रिश्तेदारों दोस्तों को कार्ड भेजे जाते थे। रिश्ते के अनुसार उसमें हिंदी अंग्रेजी भाषा में शुभकामनाओं का गुलदस्ता भेजा जाता था। 2 रुपए से लेकर 100-200 तक के कार्ड होते थे, एक से एक डिजाइन के कार्ड। किसी में घर बना होता, किसी में क्रिसमस ट्री, तो किसी में दिल को चीरता हुआ तीर भी होता। यानी विभिन्न प्रकार के कार्डों की धूम रहती। श्रीमान एक्स के मन में विचार आया कि यही सुनहरा मौका है सुश्री वाई को हलो बोलने का। अब कैसा कार्ड खरीदा जाए, कुछ सोच नहीं रहा था। ऐसा कोई पूर्व अनुभव भी नहीं था, और दूसरी बात, सुश्री वाई की पसंद नापसंद की कोई जानकारी नहीं थी। हां, कविता लिखने की समझ जरूर आ गई थी, पर दिलभेक शायरी उनके पास नहीं थी जो सीधे सीधे असर कर दे। वो तो अज्ञे, धूमिल, मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार और धर्मवीर भारती के दीवाने थे। इसमें कनुप्रिया काम आ सकती थी। आप गलत समझ रहे हैं, कनुप्रिया उनकी कोई दोस्त नहीं थी, बल्कि धर्मवीर भारती की अद्भुत रचना। इस उधेड़बुन में, इस असमंजस में

मुक्तिबोध की ये कविता बचपन में पढ़ी थी जो अभी तक जस की तस बैठी थी। मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती हैं। मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। इस कविता के भाव जैसा ही था श्रीमान एक्स का भाव, तो सबसे मजबूत हथियार कविता ही थी। कार्ड कैसा भी खरीदा जाए पर कविता शानदार लिखी जाएगी। समस्या ये थी कि कोई ऐसा मित्र भी नहीं था जिसके साथ अपनी भावनाएं साझा की जाएं, तो जैसे तैसे कार्ड खरीदा गया।

कुछ ही दिन बाकी रह गए थे नववर्ष के आगमन में। मौसम भी अपनी रंगत बदल चुका था। छात्र संघ के चुनाव भी कुछ ही दिनों में होने वाले थे, इसलिए नुक्कड़ सभाएं चल रही थी। बाहरी नेताओं का आना जाना भी शुरू हो चुका था, जो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रहे थे। इस मौके पर कई प्रतिनिधि पर्चे और गुलाब के फूल बांट रहे थे। श्रीमान एक्स को लगा ये अवसर भी हो सकता है सुश्री वाई को फूल देने का, लेकिन अपने ही विचार को उन्होंने खंडित कर दिया, ये सोचकर कि ये तरीका सही नहीं है। हालांकि प्यार और वार में सब जायज है कि कहावत सुनी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहते थे। श्रीमान एक्स का मानना था कि हर कहावत तर्कसंगत हो, ऐसा भी नहीं है। कई कहावतें तो परिस्थितियों वश बना ली गई थी, पर हर परिस्थिति में उन्हें लागू करना ठीक नहीं। साथ ही उन्हें किसी नेता के पीछे घूमना पसंद नहीं था। कलाकार मन बहुत विद्रोही और भावुक होता है। उन दिनों बहुत सारे नेता विश्वविद्यालय में इसलिए एडमिशन लिए रहते थे कि उनको चुनाव लड़ना है। पिताजी की उम्र को होने को आए थे, पर प्रण था कि बिना चुनाव जीते विश्वविद्यालय नहीं छोड़ना है, सो अभी तक लगे पड़े थे। इसमें लड़कियां भी पीछे नहीं थीं कि चुनाव जीतने के जितने भी हथकंडे हो सकते थे सब आजमाए, और वो काम भी आए। खैर, ये तो हुई माहौल की। इसी माहौल में बहुत सारे प्रेम प्रसंग हिलोरे ले रहे थे, लेकिन जो खुद भंवर में हो उसे दूसरे का डूबना कहां दिखाई देता है, इसलिए इस मामले में कोई किसी और से कुछ सीखना नहीं चाहता।

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदा दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा।

आखिर वो दिन आ ही गया जब श्रीमान एक्स को सुश्री वाई से हैप्पी न्यू ईयर बोलना था। कार्ड खरीद लिया गया था पर उस पर दिल के जज्बात उतारना बाकी था। सोचा चलो विश्वविद्यालय में ही लिख देंगे। बड़े उत्साह, घबराहट और न जाने कितनी भावनाओं की खिचड़ी के साथ पहुंचे। अब खिचड़ी क्या, तहरी कहना ज्यादा सही रहेगा। कौन सी भावना का प्राधान्य है समझ में नहीं आ रहा था। साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ी की, हिंदी विभाग की तरफ पहुंचे कि कोई दिखाई नहीं दिया। सोचा चलो बरामदे में बैठकर कुछ न्यू ईयर की कविता बनाई जाए। अचानक सुश्री वाई की झलक दिख गई। अब श्रीमान एक्स के हाथ कांपने लगे। कुछ ठीक से लिखा नहीं गया। उन्हें बुलेट मोटरसाइकिल की धक धक सुनाई पड़ने लगी, लेकिन वो उन्हीं के दिल की धड़कन थी जो बेतहाशा धड़क रही थी। जैसे तैसे कुछ सामान्य सा लिखा, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, आप सदा प्रसन्न रहें। मतलब जैसे आशीर्वाद दे रहे हूं। ये लिखने में विरोधाभासी भावनाओं का ज्वार था। हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे बर्फ पड़ रही हो, 4 डिग्री तापमान हो। पसीना ऐसे छूट रहा था जैसे मई जून की दोपहरी हो। इन्हीं भावनाओं को समेटे हिमालय पर जाने जैसा साहस जुटाकर सुश्री वाई को खोजते खोजते श्रीमान एक्स मनोविज्ञान विभाग में पहुंचे। दूसरे तल पर सुश्री वाई अपनी सहेली के साथ खड़ी अपनी ही धुन में बतिया रही थी। पहले तो श्रीमान एक्स को लगा कि बस इनको ऐसे ही खड़े देखते रहें, उसकी मुस्कुराहट को जीते रहें।

0: लेकिन फिर ख्याल आया और सोचा कि बड़ी हिम्मत जुटाकर यहां तक आया हूं, बात आगे बढ़ा ही दी जाए, फिर कब मौका मिले पता नहीं, फिर दोबारा इतनी हिम्मत जुटे न जुटे। आगे बढ़ गए, कांपते गले से कहा, हेलो। वो बोली, जी कहिए। जी जी जी कुछ नहीं, है, है, है, हैप्पी न्यू ईयर। मतलब हैप्पी में इतनी मुर्की थी कि कोई संगीत का उस्ताद सुन लेता तो पूछ बैठता, भैया कितने दिनों का रियाज है। बस इतना ही कह पाए थे श्रीमान एक्स, और बदले में थैंक यू मिल गया था। उस कंपन को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, उसका दोबारा अभिनय भी नहीं किया जा सकता। वो दिन है और आज का दिन, लोग पल भर के साथ में परिवार बना लेते हैं, लेकिन श्रीमान एक्स उन लम्हों को अभी तक किताबों में रखे गुलाब की तरह संजोए हैं।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

उन दिनों की बात है। अभी आप सुन रहे थे अरुण शेखर की लिखी ये गीतों भरी कहानी। वाचन स्वर अरुण शेखर का था, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की।

0: हूँ, पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था। मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर।
3: एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवावाणी।

हौसले दिल में जब मचलते हैं, कुछ नए रास्ते निकलते हैं। हम सफर आप हो गए जब से, गम खड़े दूर हाथ मलते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत करती हूँ आप सभी युवा दोस्तों का आपके अपने ज्ञानवर्धक कार्यक्रम युववाणी में। और आज के इस युववाणी के अंक को लेकर हाजिर है आपकी रेडियो वाली साथी प्रीति सिन्हा। दोस्तों कहते हैं कि सफलता से बड़ा कोई नशा नहीं होता, इसे पाने की चाहत में युवा दिन रात एक कर देते हैं। कठिन परिश्रम, निरंतर प्रयास और अभ्यास से सफलता हासिल की जा सकती है, लेकिन आज के इस युग में कुछ युवा ऐसे नशे की चपेट में हैं जिससे निकल पाना बेहद मुश्किल है। छोटे बड़े शहरों में, तंग गलियों में युवाओं को नशीली दवाओं का सेवन करते हुए देखना या ऐसे करते हुए पकड़े जाना, ऐसी खबरें हम अक्सर ही सुनते हैं और देखते हैं। नशीली दवाइयों के दुष्चक्र में फंसने वाले युवाओं और अन्य उम्र के लोगों को इस दलदल से निकालने के लिए और नशीली दवाओं के अवैध तस्करी यानी कि ड्रग्स के अवैध तस्करी को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को प्रतिवर्ष 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाने का फैसला किया। नशीली दवाओं की समस्या एक जटिल मुद्दा है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। बहुत से लोग जो नशीली दवाओं का उपयोग करते हैं उन्हें कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है जो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को और नुकसान पहुंचाता है और उन्हें आवश्यक सहायता तक पहुंचने से रोक सकता है। नशीली दवाओं और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC मानव अधिकारों, करुणा और साक्ष्य आधारित प्रथाओं पर ध्यान देने के साथ दवा नीतियों के लिए जन केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के महत्व को बताता है। चलिए अब आपको बताते हैं ड्रग्स के दुरुपयोग के बारे में। ड्रग्स का सेवन या ड्रग्स की लत एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्या है जो न केवल पूरे विश्व के युवाओं को प्रभावित करती है बल्कि विभिन्न आयु के लोगों को प्रभावित करती है। मस्तिष्क पर ड्रग्स के असर से कई घातक विकार उत्पन्न होते हैं जिसमें प्रमुख घबराहट, डर, असुरक्षा या अपराध कर देने की प्रवृत्ति शामिल है। ये विकार हिंसा में भी बदल जाते हैं। ड्रग्स यानी नशीली दवाओं में शामिल कुछ नाम निकोटिन, कोकीन, कैफीन, नाइका, मॉर्फिन, कैनबिस, मैरिजुआना, मेथ आदि हैं जो तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक उन्नत साइकोएक्टिव सतर्कता और प्रतिक्रिया होती है। ऐसे ड्रग्स की लत के कारण भूख और वजन में कमी, कब्ज, चिंता या अवसाद का बढ़ना, चिड़चिड़ापन, नींद आना, आलस्य, कामकाज में सुस्ती और हानि जैसे गंभीर नुकसान होते हैं। आइए अब आपको बताते हैं ड्रग्स की अवैध तस्करी के बारे में। नशीले पदार्थों की तस्करी एक अंतर्राष्ट्रीय अवैध व्यापार है जिसमें मूलभूत कानूनों के अनुसार निषिद्ध पदार्थों का उत्पादन, खेती, प्रसार और बिक्री शामिल है। ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC इस खतरे का अधिक व्यापन अध्ययन करने के लिए अवैध अंतर्राष्ट्रीय दवा बाजारों की निगरानी और शोध कर रहा है। दोस्तों वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार यदि पहले भारत की स्थिति की बात करें तो इसके अनुसार भारत के बाजार और यूजर्स की बढ़ने की संभावना अधिक है। भारत उपयोगकर्ताओं के मामले में दुनिया के सबसे बड़ी अफीम बाजारों में से एक है और संभवतः बढ़ी हुई आपूर्ति के प्रति संवेदनशील है। इसका कारण यह है कि अफगानिस्तान में उत्पन्न होने वाले अफीम की तस्करी की तीव्रता पारंपरिक बाल्कन मार्ग के साथ दक्षिण और पश्चिम के अलावा पूर्व की ओर हो सकती है।
परिणाम स्वरूप इसके उपयोग में विस्तार, तस्करी और इससे जुड़े अपराधों में भी बढ़ोतरी संभावित है। अफीम, अफीम की बात करें तो वर्ष 2020 में 5.2 टन अफीम की चौथी सबसे बड़ी मात्रा भारत में जब्त की गई और तीसरी सबसे बड़ी मात्रा में मॉर्फिन भी जब्त की गई। 3.8 टन हीरोइन, जो कि दुनिया में पांचवी सबसे बड़ी मात्रा है, ये भी 2020 में भारत में जब्त की गई। भारत में अधिकारियों ने पहली बार 2020 में डार्क वेब पर गैर चिकित्सा ट्रामाडोल और अन्य साइकोएक्टिव पदार्थों की तस्करी करने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने की घोषणा की थी। दोस्तों, यदि विश्व स्तर पर नशीली दवाइयों के दुरुपयोग पर बात करें तो 15 से लेकर 64 वर्ष की आयु के लगभग 284 मिलियन लोगों ने 2020 में विश्व भर में नशीली दवाइयों का इस्तेमाल किया, जो पिछले दशक की तुलना में 26% अधिक है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में भी जान लीजिए। वैश्विक ड्रग समस्या के हर पहलू को संबोधित करने के लिए आवश्यक संसाधनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें इसकी आवश्यकता वाले सभी लोगों के लिए साक्ष्य आधारित चिकित्सा का प्रावधान शामिल है। और हमें इस ज्ञान के आधार में सुधार करने की आवश्यकता है कि अवैध दवाएं अन्य तत्काल चुनौतियों जैसे संघर्ष और पर्यावरण क्षरण से किस प्रकार संबंधित है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं इसके अवैध तस्करी जैसी जटिल समस्या की भयावहता को पहचानना और इसकी शुरुआत में ही इसे रोकने का प्रयास करना अति आवश्यक है। नशीले दवाओं को अपने पास रखना या इसके साथ पकड़े जाने पर जुर्माना और दंड शामिल है। इसे अपराध की श्रेणी में ही रखा जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों से इस विषय पर अवश्य बात करें, इसके हानि और गंभीरता पर चर्चा करें। यदि कोई ऐसी लत का शिकार है तो ये न समझें कि इसका इलाज नहीं है। इसके इलाज से वंचित लोग अपनी जिंदगी तक गंवा देते हैं। दोस्तों, सतर्क रहें और ऐसी किसी भी लत से दूर रहें। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर चर्चा बस यहीं तक।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: स्वागत है आप सभी युवा दोस्तों का आपके अपने कार्यक्रम ये वो वाणी में। और अब लीजिए सुनिए ये वार्ता। विषय है नशा मुक्त राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। वार्ताकार हैं शिवम।
5: नमस्कार दोस्तों। किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा पीढ़ी होती है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि युवा वह है जो लोहे की मांसपेशियों और फौलाद की नसें रखता हो। लेकिन क्या होगा अगर यही फौलादी नशे की जहर से खोखली होने लगें? दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं नशा मुक्त राष्ट्र निर्माण में हम युवाओं की भूमिका इस विषय पर, और मैं हूं आज आपके साथ शिवम। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। यह डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें वैश्विक शक्ति बना सकता है, लेकिन इसके सामने नशा एक ऐसा दीमक बनकर खड़ा है जो हमारे भविष्य के नींव को कमजोर कर रहा है। नशा मुक्त राष्ट्र का निर्माण कोई सरकारी योजना मात्र नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक आंदोलन है जिसका नेतृत्व युवाओं को ही करना होगा। नशे की समस्या पर

अक्सर यह सवाल उठता है कि युवा नशे की ओर कदम क्यों बढ़ाता है। इसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण हैं, जैसे दोस्तों के बीच कूल दिखने की चाहत अर्थात मित्रों का दबाव, तनाव और अवसाद, करियर प्रतिस्पर्धा और टूटते संयुक्त परिवारों के कारण पैदा हुआ अकेलापन, और फिल्मों और सोशल मीडिया पर नशे को एक स्टाइल स्टेटमेंट के रूप में पेश करना, जिसका युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन युवाओं को यह समझना होगा कि नशा समस्याओं का समाधान नहीं बल्कि समस्याओं का अनंत द्वार है। यह न केवल शरीर को नष्ट करता है बल्कि सोचने समझने की शक्ति और आत्मसम्मान को भी खत्म कर देता है। नशा मुक्त राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका को हम तीन स्तरों पर देख सकते हैं। जैसे व्यक्तिगत स्तर पर, सबसे पहले बदलाव खुद से शुरू करें। युवा नशे से दूर रहें और ना कहने की क्षमता विकसित करें और अपने लक्ष्य जैसे करियर, हेल्थ, फैमिली को प्राथमिकता दें। जब एक युवा खुद नशा नहीं करता तो वह अपने आसपास के लोगों के लिए उदाहरण बन जाता है और लोग उससे प्रभावित होते हैं, जिसका हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। जबकि सामाजिक स्तर पर देखें तो युवा समाज के भीतर जागरूकता फैलाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। दोस्तों और परिवारों को नशे के नुकसान समझाना, नशा करने वाले व्यक्ति को मजाक या तिरस्कार नहीं बल्कि सहयोग देना, स्कूल कॉलेज गांव में जागरूकता अभियान चलाना, समाज में सकारात्मक माहौल बनाना ही सबसे बड़ा योगदान है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो युवा देश की ऋण है, इसलिए उनका योगदान राष्ट्र निर्माण में सीधे जुड़ा है। सरकार की नशा मुक्ति योजनाओं में भाग लेना, सामाजिक संगठनों जैसे NGOs के साथ जुड़ना, नशे के खिलाफ आवाज उठाना जैसे रैलियां, सोशल मीडिया कार्यक्रम के माध्यमों द्वारा, क्योंकि जब युवा जागरूक होते हैं तो पूरा देश मजबूत होता है। ऐसी स्थिति में युवाओं को क्या करना चाहिए? पहली चीज है, सही दिशा में ऊर्जा लगाएं। खेल, योग, जिम, संगीत, कला और अन्य कार्यों में रुचि बढ़ाएं और खाली समय को प्रोडक्टिव बनाएं। ध्यान देने वाली बात है कि व्यस्त और लक्ष्य केंद्रित युवा नशे से दूर ही रहते हैं। वहीं शिक्षा और जागरूकता के प्रसार द्वारा नशे के दुष्प्रभाव जैसे शारीरिक दुष्प्रभाव, मानसिक और आर्थिक को समझें और दूसरे को जानकारी भी दें, क्योंकि जानकारी ही बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। आजकल की युवा सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग भी कर सकते हैं। नशा विरोधी संदेश, वीडियो, पोस्ट साझा करें। आज के समय में सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार है। दोस्तों के दबाव में आकर गलत आदत न अपनाएं। ऐसे में सही दोस्तों का चयन करें, क्योंकि सही संगत ही सही रंगत लाती है। वहीं जरूरतमंदों की मदद भी करना। जो युवा नशे में फंसे हैं उन्हें रिहैब या काउंसलिंग के लिए प्रेरित करें। उन्हें अकेला महसूस न होने दें, क्योंकि सहानुभूति और समर्थन बहुत जरूरी होती है। सामुदायिक पहल करना भी चाहिए युवाओं को, जैसे नशा मुक्ति अभियान, रैली, सेमिनार आयोजित करें और गांव शहर में क्लब या समूह बनाएं। सामूहिक प्रयास से असर कई गुना बढ़ता है। हम कुछ प्रभावशाली नारे का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे नशे को ना, जिंदगी को हाँ, युवा जागे देश आगे, स्वस्थ युवा सशक्त राष्ट्र, नशा छोड़ो समर्थन जोड़ो। कुल मिलाकर नशा मुक्त राष्ट्र का निर्माण केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी का सबसे बड़ा भार युवाओं के कंधों पर ही है। यदि युवा अपने जीवन में अनुशासन, जागरूकता और सकारात्मक सोच अपनाएं तो नशे जैसी बुराई को जड़ से खत्म किया जा सकता है, क्योंकि एक जागरूक युवा एक सुरक्षित समाज का निर्माण करता है और एक सुरक्षित समाज एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए भारत का एक मजबूत, सशक्त और प्रभावशाली बने रहना अत्यंत आवश्यक है, और इसकी जिम्मेदारी आज की युवा पीढ़ी के ऊपर है। दोस्तों, नशा वह दीमक है जो हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ देता है और राष्ट्र की जड़ों को खोखला कर देता है। लेकिन जहां समस्या गहरी है वहीं समाधान हमारी युवा शक्ति के पास है। मेरे ऊर्जावान युवा साथियों, किसी भी राष्ट्र की असली पूंजी युवा शक्ति होती है। यदि यह युवा शक्ति नशे के अंधेरे गलियारों

0: में खो जाए तो देश का भविष्य कैसा होगा? यह भारत के विकास की गति को प्रभावित करेगा। इसलिए आज यह चर्चा अनिवार्य है कि हम कैसे इस अभिशाप से मुक्त होकर विकसित भारत का सपना साकार करें। युवाओं के पास वह जुनून है, वह ताकत है जो समाज की दिशा बदल सकता है। जब हम नशा मुक्त भारत की बात करते हैं, तो हमारा अर्थ एक ऐसे समाज से है जहां अस्पताल बीमारियों से कम और खेल के मैदान युवाओं से ज्यादा भरे हों, जहां कलम की ताकत नशे की पुड़िया से बड़ी हो। श्रोताओं, नशा मुक्त भारत का निर्माण केवल सरकारी नीतियों या कानूनों से संभव नहीं है। इसके लिए एक जन आंदोलन की आवश्यकता है और हर जन आंदोलन की रीढ़ युवा ही होते हैं। युवाओं को यह समझना होगा कि स्वतंत्रता का अर्थ व्यसनों की गुलामी नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और सजग जीवन जीना है। आज के इस दौर में जहां चुनौतियां बहुत हैं, वहीं युवाओं के पास असीम संभावनाएं भी हैं। नशे के विकल्प के रूप में नवाचार और कौशल को चुनना होगा। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यह एक चुनौती जरूर है, लेकिन हमारे युवा इस चुनौती से अच्छी तरह से निपट सकते हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि राष्ट्र निर्माण की ईंटें हमारी युवाओं के चरित्र से बनती हैं। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि न तो हम स्वयं नशे की जाल में फंसेंगे और न ही अपने समाज को इसमें धंसने देंगे। एक सशक्त, समृद्ध और नशा मुक्त भारत की नींव रखना हम सभी की जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी का निर्वहन हम ईमानदारी पूर्वक करेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप स्वस्थ और अच्छे रहें। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे नशा मुक्त राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, इस विषय पर वार्ता। वार्ताकार थे शिवम, प्रस्तुतकर्ता थे सचिन कुमार वर्मा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में, और अपनी चर्चा के अंतर्गत अब आपको बताते हैं क्या है विशेष 26 जून को। दोस्तों, हर वर्ष 26 जून को अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर मनाया जाता है। यह दिन लोगों को ये याद दिलाने के लिए कि मानव अत्याचार न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि यह एक अपराध भी है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह दिन हर वर्ष 26 जून को मनाया जाता है। इसके पीछे उद्देश्य साफ है कि इस दिन की स्थापना यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार या सजा के खिलाफ कदम उठाने के लिए की गई थी। दुनिया भर में ऐसे असंख्य लोग हैं जो शारीरिक या मनोवैज्ञानिक यातना का सामना कर रहे हैं। हालांकि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक अपराध है, फिर भी ऐसी कई घटनाएं हैं जो दर्ज नहीं हो पाती हैं। इसलिए सभी हितधारकों से उन लोगों के लिए एकजुट होने का आग्रह करने के लिए जिन्होंने दुर्व्यवहार और यातना का सामना किया है और जारी रख रहे हैं सामना करना। हर वर्ष 26 जून को यातना के पीड़ितों के समर्थन में यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का दावा है कि यह हिंसा के चक्र में बदल सकता है और आने वाली पीढ़ियों पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। 12 दिसंबर 1997 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें आज का दिन 26 जून को यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। दोस्तों, यातना शब्द को भी समझें। इसका अर्थ ऐसा कोई भी कार्य जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को जानबूझकर गंभीर पीड़ा या पीड़ा पहुंचाई जाती है, चाहे वह शारीरिक या मानसिक, ऐसे उद्देश्यों के लिए जैसे कि उससे या किसी तीसरे व्यक्ति से जानकारी या स्वीकारोक्ति प्राप्त करना, उसे दंडित करना, ये सभी यातना की परिभाषा में शामिल है। दुनिया भर में इसके आंकड़ों में अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको आगे हैं। वहीं भारत और चीन की बात करें तो भारत और चीन में बहुमत में लोगों का कहना है कि यातना कभी कभी आवश्यक होती है। दोस्तों, किसी के साथ भी अमानवीय व्यवहार, अपमानजनक भाषा, बिना सहमति के कार्य कराना, उसे दंडित करना अपराध ही है। ये मनुष्य को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। उम्मीद है आपको आज की ये चर्चा अच्छी लगी होगी। अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर चर्चा बस यहीं तक।

दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं क्या है विशेष आज के दिन यानी 26 जून को। 26 जून को हम मना रहे हैं मुहर्रम। इस्लामी कैलेंडर का पहला और सबसे पवित्र महीना है। इस महीने को सब्र, इंसाफ और कुर्बानी का प्रतीक माना जाता है। ये अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और मानवता के मूल्यों को याद करने का अवसर है। दोस्तों साथ ही 26 जून को हम मना रहे हैं छत्रपति शाहू महाराज की जन्मतिथि। कोल्हापुर रियासत के महान समाज सुधारक और दूरदर्शी शासक छत्रपति शाहू महाराज का जन्म 26 जून 1874 को हुआ था। उन्हें सामाजिक न्याय का प्रणेता और पिछड़े वर्गों के उत्थान का जनक माना जाता है। इनका जन्म

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम घरनी।

सब बहन लोगन के राम राम। बहन लोगन, हम आपके आपन जलेबी भौजी। और देखें, इतना दोपहरिया में भी आपन नींद खराब करके आप सबके बीच समय से हाजिर हो गए हैं। बहन लोगन, देखें, कहल जाला ना कि जौने घरे में दुन्नो परानी बात विचार करके आपन घर के गृहस्थी के गाड़ी चलावेलन, वहां हमेशा खुशहाली और हरियाली बन रहेला। मगर कुछ बहिन लोगन के ई बात के शिकायत रहेला कि मनसेधु बहरे कितना कमात हवन, कहाँ घूमत हवन, कुछो उनके नाही बतौतन। और घर चूल्हा के साथ साथ बहिन लोगन के खेती घरवारी भी करे के संभाले के पड़ेला। और दुर्भाग्य देखा कि इतना कर ले पर भी एक पैसा का नाम एहसान नहीं, बल्कि अलगे से घरे में कलह। बहन लोगन, देखें, हम सब जवन समाज में हाई जा, वहाँ नशा बड़ी तेजी से फैलत बा। और कहल जाला ना कि नशा नाश के जड़ बा। ऐसे न केवल परिवार के शांति भंग होवेला, बल्कि समाज में भी तमाम तरह के गंदगी फैलेला। जहाँ एक तरफ घरे में पूरा परिवार, बड़ बूढ़, लड़का लड़की सब एक दूषित वातावरण में होवे के कारण शिक्षा और संतुलित आहार से भी अलग रहेलन, वहीं आवे वाली पीढ़ी भी गलत संस्कार में पड़ले के कारण ऊ सब भी बड़ी आसानी से नशा के गिरफ्त में आ जाएलन। आज हमार सरकार कानून नशा के सेवन करे वाला और नशा के सामग्री में लिप्त व्यवसाय वाला लोगन के अपराधी मानते हुए उनके खातिर दंड के कुछ प्रावधान बनाए ले हमन। एक छोटा सा आंगन के इस समस्या कैसे पूरा शासन प्रशासन खातिर चिंता के विषय बनल बा, यही सब बात बतकही खातिर देखें कुछ बातचीत हम अपने जनपद के अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक महोदय से चर्चा करल चाहत है। तो हम पहुंच गए है पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ, और हम कहब ना कि जौन बात बतकही हुए वो आप लोगन भी सुने। हो सकत बा ऐसा समस्या से आप लोगन भी रोज दुचार होत हुए, तो हम लोगन ये समस्या सुनल जाई अभी कप्तान साहब से जौन बातचीत बा। मगर हम कहब कि बैठकी के शुरुआत काहे ना एक फिल्मी गीत से करल जाए, और ओके सुनले के बाद हम लोगन के बैठकी तो जारी ही रही, बातचीत भी सुनल जाई, संदेश भी सुनल जाई, मौका मिलल तो मन मनसायन भी होई।

0: बहन लोगन देखा मन मनसायन तो भइल, और देखा जब मन बढ़िया करे का ना कई तरीका होला, मगर आज जो नशे में लिप्त लोग हमन ना, उन लोगन के अपन मन फ्रेश करे खातिर, खुश रहे खातिर, मौज मस्ती खातिर ना नशा की जरूरत पड़ेला। अरे भाई कौन सा ऐसा आनंद बा, तू भजन कर, पूजा कर, बढ़िया बढ़िया खा पहना घूमा। नशा ऐसा कौन सा चीज है कि पी के खाई के एक कोने में पड़ल रहा, समाज में बुरा दृष्टि से देखल जा, परिवार खातिर एक परेशानी के वजह। तो देखा नशा नाश के जड़ है, ये हम सबके पता बा, और हम यही खातिर आज अपने पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ पहुंचल है कि कैसे नशीली दवा के जो दुरुपयोग होत बा और अवैध तस्करी होत बा ऊपर लगाम लगावल जात बा प्रशासन द्वारा। तो चला सुनल जाए, मगर उसे पहले संदेश भी सुन लिया जाए। अच्छा संदेश के बाद पहले ही महत्वपूर्ण बात। साथियों आज 26 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ दिवस, यह दिन महज एक तारीख नहीं बल्कि हम सब के लिए एक चेतावनी भी है और संकल्प भी। युवाओं को नशे के जाल से बचाना और ड्रग्स के अवैध कारोबार को जड़ से उखाड़ फेंकना एक चुनौती है, और इस चुनौती पर खुद को साबित करते हुए आज चर्चा में हमारे साथ सोनभद्र पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक वर्मा जी हैं। सर नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम।
0: सर सबसे पहले तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपकी नजर में सोनभद्र में नशे का सेवन, अवैध तस्करी और लिप्त युवाओं को आप मतलब कितना जानते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस पे?
1: देखिए जैसे कि आपको पता होगा जनपद सोनभद्र हमारा अलग अलग राज्यों से जुड़ा है और चार अन्य राज्यों से हमारी सीमा लगती है। जो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आती है उसमें देखा गया है कि हमारे पास झारखंड उड़ीसा साइड से बहुत ज्यादा मात्रा में अवैध नशीला पदार्थ और अवैध तरीके की दवाइयाँ भी आती हैं। लगातार जनपद सोनभद्र की पुलिस निगरानी रखते हुए कई ऐसे बड़े गैंगों को भी हमने गिरफ्तार किया है और कई ऐसे लोगों को अरेस्ट भी किया है जो इस गोरख धंधे में लिप्त हैं। ना कि सिर्फ इस लोगों को गिरफ्तार करना, उनके ऊपर हमने फाइनेंशियल रूप में भी प्रहार किया है। हम लोग उनके ऊपर धारा 68F जो NDPS एक्ट है उसमें अधिकार दिया गया है अभियुक्त की संपत्ति को जब्त करने का। हम लोग वो जब्तीकरण की भी कार्रवाई करते हैं और इनको हर तरीके से चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिससे इनका जो अवैध धंधा है इस पर रोकथाम लगाई जा सके। जहां तक बात है युवाओं की, जनपद में ऐसे कई मामले देखे गए हैं जहां लोग हीरोइन, अफीम और गांजे का सेवन करते थे, परंतु जब हम लोगों ने इस पर रोकथाम लगाना शुरू करी है और इस पर कार्रवाई करी है, धीरे धीरे हम इसका सेवन भी और लोगों को सही दिशा में ले जाने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भी भेजते हैं और लगातार इस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, सोनभद्र की भौगोलिक स्थिति बेशक अन्य जनपद से भिन्न है, इसकी सीमाएं अलग अलग राज्यों से मिली और निश्चित रूप से हमारे सोनभद्र पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। और विगत दिनों में आप लोगों की कई ऐसी कामयाबी देखने को मिली है, पर सर अक्सर यह देखा जाता है कि जो छोटे छोटे पेडलर्स होते हैं उनको तो आसानी से पकड़ लिया जाता है, मगर जो बड़े सिंडिकेट्स हैं, मास्टरमाइंड है, उनको पकड़ने के लिए भी सोनभद्र पुलिस काफी हद तक कामयाब है। तो आप कैसे इनको पकड़ते हैं, कैसे, क्या रणनीति है आपकी?
1: जब हम किसी को भी पकड़ते हैं तो जैसा आपको पता होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, DGP साहब की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है ऐसे अपराधों के खिलाफ, और उनका सख्त निर्देश है कि सभी अपराधों में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज करना अति आवश्यक है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज से अभिप्राय है कि ये माल कहाँ से आया और स्रोत क्या था इसका और डेस्टिनेशन इसकी क्या थी, कहाँ जा रहा था, गंतव्य स्थल क्या था। उन दोनों लिंक्स को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं और बैंक के भी ट्रांजैक्शंस, बैंक एनालिसिस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और कई सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं, टोल को चेक करना कितनी बार गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी, जब हम सभी चीज़ों पर एनालिसिस करते हैं तब जाकर हम इसके मुखिया तक भी पहुँच जाते हैं। ऐसे कई अभी हाल फिलहाल में मामले आए हैं जिसमें जो बड़े बड़े सिंडिकेट्स हैं जो अवैध तरीके से जो सिरप थी उसको भी ये लोग तस्करी कर रहे थे, उसमें भी हम लोगों ने कार्रवाई करी और हम लोग ने मदद भी मांगी है इंटरपोल से, जो विदेश में बैठे हुए लोग हैं उनको भी अरेस्ट करने के लिए।
0: जी जी, अभी आपने सिरप की बात कही तो निश्चित रूप से आजकल पारंपरिक नशे के सामग्रियों के साथ साथ युवाओं में सिंथेटिक ड्रग्स, नशे की गोलियां और कुछ कप सिरप का चलन भी देखने को मिल रहा है, जो मेडिकल स्टोर पर आसानी से भी और कुछ लुक छिपके भी उपलब्ध हो जाता है। तो इनको रोकने के लिए हमारे पुलिस विभाग द्वारा कैसी योजना है, कैसे उनको रोक लगाने के लिए प्रयास कर रही है?
1: जहाँ तक बात है सिंथेटिक ड्रग्स की, ओपन मार्केट में तो इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ टेलीग्राम और डार्क नेट और इंटरनेट के माध्यम से लोग इसको कई बार ऑर्डर करते हैं, मंगाते हैं। बड़े शहरों में इसकी खपत ज़्यादा देखी जा रही है और इसके लिए हम लोग डार्क वेब पे, टेलीग्राम पे, जो तमाम तरीके के चैनल्स हैं इसमें हम लोग घुस करके काम कर रहे हैं, डिकॉय लगाते हैं, चेक करते हैं।

0: को भी हम लोग चेक करते हैं। और जो ये सिरप जैसी जो चीज़ें थी, जैसा कि गवर्नमेंट ने इसको शेड्यूल्ड कैटेगरी में भी रखा हुआ है, तो ओवर द काउंटर मेडिसिन के रूप में जो ये सिरप्स मिलती हैं, इसमें सख्त निर्देश है सरकार की तरफ से कि सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही इसको दिया जाए। इसके लिए हम लोग समय समय पे ड्रग विभाग से समन्वय स्थापित करके जो ये मेडिकल स्टोर्स हैं इस पर भी रैंडम चेकिंग करवाते हैं और ये देखते हैं कि कहीं भी कोई कफ सिरप ऐसा तो नहीं है या कोई ऐसी दवाई तो नहीं है नशीली जिसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के दिया जा रहा है। यदि ऐसा दिया जाता है तो संबंधित विभाग द्वारा भी इसमें कार्रवाई की जाती है।
1: जी बिल्कुल, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके नजर में आती हैं और आप अपने तरीके से उनको पकड़ लेते हैं, पर कई बार ना आम लोग या पड़ोसी यह जानते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है, पर इस खौफ में सूचना नहीं देते हैं कि अमुक तस्कर कहीं हमसे भी किसी प्रकार का धमकी, प्रतिशोध या कि अपने को खतरे में देखते हुए इसकी सूचना नहीं देते हैं। तो ऐसे में आप क्या भरोसा देने चाहेंगे अपने जनपद वासियों को कि वो बेखौफ इस चीज के लिए आपको सूचित करें, कोई नंबर किस तरह से वो संपर्क करें?
0: देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसा कई बार होता है कि लोग सोचते हैं कि किस तरीके से हम सूचना देंगे। सबसे अच्छा तरीका अभी हमारे बनारस जोन की पुलिस द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया एक पुलिस सतर्क मित्र करके व्हाट्सएप चैट बॉक्स है। इसमें आप अपनी कोई भी सूचना देते हैं वो गोपनीय रहती पूर्णतः रूप से और उसमें हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। उसका डैश एक ऑटोमेटिक डैशबोर्ड है जो सीधा मेरे कंप्यूटर पर भी खुलता है और हम उसको देख सकते हैं कहाँ पर किस प्रकार की कंप्लेन आ रही है। और दूसरा तरीका जैसे 112 के नंबर पर कॉल करके सूचना देने का भी एक तरीका है, उसमें भी अगर आप बता देते हैं कि मेरा नाम गोपनीय रखा जाए तो बिल्कुल पूर्ण रूपेण उसको गोपनीय रखा जाता है। और अगर कैसी भी कोई समस्या है आप हमारे जो अलग अलग CUG नंबर है उसमें भी आप दे सकते हैं सूचना और वो पूर्ण तरीके से वो आपकी जानकारी को हम लोग गोपनीय रखते हैं और ऐसे कई बार हमको अच्छी सूचनाएं मिलती हैं जिस पर हम लोग कार्रवाई भी कर चुके हैं।
1: जी श्रोताओं, यह थे हमारे जनपद सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक वर्मा जी, और आपने जिस तरह से हमारे श्रोताओं को, हमारे समस्त जनपद वासियों को इस गंदगी से निकालने के लिए प्रयास बताएं और लोगों को बेखौफ सूचना देने के लिए उत्साहित किया, उससे निश्चित रूप से हमारा सोनभद्र सुरक्षित रहेगा, क्योंकि अपराधियों के लिए सोनभद्र में ऐसी कोई जगह नहीं है, बल्कि जो भटक गए हैं उन्हें राह दिखाना भी पुलिस की प्राथमिकता है। आप भी जागरूक बने, नशा मुक्त समाज में अपनी सहभागिता निभाएं। इन्हीं बातों के साथ हम आपको इस रेडियो के लिए, सुंदर बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
2: धन्यवाद। नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपना ही नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
3: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपना ही नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
3: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: बहन लोगन, देखा है, बात बात का ही हम लोगन सुन ली जा और हम कहत रही ना कि संदेश भी बा। देखा, संदेश भी मद्य निषेध से ही जुड़ल बा। मतलब ये समझा कि समाज में ये मद्यपान, नशा के जौन प्रचलन बढ़त बा, कितना गलत चीज बा। जहां एक तरफ नशा के आदि व्यक्ति अपने शरीर के स्वास्थ्य बर्बाद करेला, वहीं परिवार के आर्थिक स्थिति जर्जर हो जाला और कलह हर तरफ व्याप्त हो जाला। तब नशा एक ऐसन बीमारी है जौन पूरी तरह से व्यक्ति के तन, धन और मन सबसे नाश करेला। तो जे भी हम लोगन के संपर्की होए, दुर्भाग्य से परिवार में होए, ओके ए बात से अवगत करावे के बाद कि नशा छोड़ के हम लोगन कोनो और तरह से अपन शौक पूरा किया जाए। जब हम लोग अपन विचार बनाई, नशा पर अंकुश लगाई, तबे तो देखा सरकार के जौन रणनीति बा स्वस्थ समाज के निर्माण के, वो पूरा हो। बहन लोगन, देखें, सरकार हम सब के स्वच्छ जल, ईंधन खातिर गैस, खेती खातिर किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत पैसा, राशन।

और आवास के साथ शौचालय जैसन सुविधा भी मुहैया करावत बा। अब हम सबके रोज कमाए खाए का जिम्मेदारी बा। अगर सूझबूझ के साथ योजनाबद्ध तरीके से काम करल जाए तो गृहस्थी के गाड़ी बगैर कोनो रुकावट के बड़ी आराम से आगे बढ़ी। अब देखा है परिवार जहाँ शादी ब्याह के बाद नई दुल्हन आयल बा, परिवार बढ़त बा, उनके खातिर भी प्रधानमंत्री आवास योजना में पंजीकरण शुरू हो गल बा। लाभार्थी जागरूक रहे और जरूरत बा अपने के उमे पंजीकृत करावे के। देखा हम लोगन का चर्चा तो आगे चलत ही रही, मगर हम कहब कि एक और मन मनसायन के साथ अपने अधीक्षक पुलिस अधीक्षक महोदय के धन्यवाद दिहल जाए।

बहन लोगन देखा, अभी हम लोगन फिर एक बार फिल्मी गीत के साथ मनमन सायन कैली जा। और हम देखा का कहीं कुछ बात इशारे इशारे से करल जाला। हम लोगन के बीच में कुछ ऐसन बहन भी हैं जौन नशा में रुचि रखेलिन, तो नशा बढ़िया बात नहीं बा। देखा अपने तो छोड़े दें, अपन परानी के भी घरे में जे भी बा लैका बा परानी बा, अगर वो नशा में रुचि रखत हुए तो उनकर लगाम कसे के जरूरत बा। और देखा अब तो बड़ा भइल नशा नशा के बाद, अब जौन जरूरी बात बा वही है कि मौसम के जौन तापमान बा ना, उमे तो दिन दूनी रात चौगनी बरकत होत बा, और बीमारी उसे तेज रफ्तार पकड़ ले बा। तब बहन लोगन मौसम के गर्मी के देखते हुए पानी के तलब भी हर केहू में बा। दिन भर कहीं ना कहीं से भी हर से आवत ओहर से आवत आदमी पानी पी लेत बा, मगर यहाँ थोड़ा सावधानी की जरूरत बा कि स्वच्छ पानी के सेवन करल जाए। जहाँ पानी रखल जात बा ओके ढाँक तोप के रखल जाए, और आजकल ताजा पानी अब जब पगल से निकलत बा चाहे मशीनी से आवत बा। अब तो देखा अपन सरकार हर घर जल योजना के अंतर्गत हर द्वार पर टोटी वाला नल लग गल बा, तो हम लोगन के वो पानी के मतलब साफ स्वच्छ पानी के सेवन करे के बा, कहे कि दूषित जल से शरीर में तमाम तरह के बीमारी होला। एक साथ साथ ही जैसे कि हर घर जल मिशन वाला टोटी जो हर द्वार पर लगल बा, तो हम लोगन के ही ध्यान रखे के बा कि नल से पानी उतना ही निकालें जो जितना हमके जरूरत बा। ये नहीं कि अब टोटी लग गल बा तो ओके खुला छोड़ दें। हाँ, जहाँ वो पानी के निकासी होत बा, नाली होत बा, वहाँ थोड़ा सा गड्ढा करके पानी एकत्र होए, तो वो पानी से अगर हम लोगन चाहें तो अपने फूल क्यारी में पौधा में पानी डाल सकीला। और ऐसे भी बढ़िया रही कि जौन हमारे छोट मोट हम लोगन का मवेशी हवन कुकुर हा बछवा हा, ई लोगन जब इहर उहर घूमेलन तो हमें जाके पानी पी सकेलन। और सबसे अच्छा बात ये बा कि जब सुनसान रहेला ना तो अपन पक्षी चिड़िया चुनमुन भी आके वहाँ से पानी पियेलन। तो कहे का मतलब ई बा कि जैसे हमके अपने शरीर के महत्व के समझे के बा, वही तरह से जल से जीवन बा, तो जल के भी संरक्षित करे के जरूरत बा। जल बा तो जीवन बा, और जीवन बड़ा अनमोल बा, तो हम अपने जीवन के ए तरह से संभाल के रखें कि खुद भी स्वस्थ रहें और समाज के भी एक स्वस्थ और शक्तिशाली योगदान प्रदान करें। यही बातचीत के साथ देखा अपने बैठकी का आज के दिया विराम। अगली बैठकी में फिर मुलाकात हुई, तरह तरह के बात हुई, तो चलत चलावत सब बहन लोगन के राम राम।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम घरनी एफएम 102.7 पर। हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ एक क्षणों में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सभी समाचार। नमस्कार, समाचार के साथ हम सुकेत त्यासाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवरिया में 456 करोड़ रुपया से बेसी लागत वाला कई गो विकास परियोजना का लोकार्पण कैले नई धैले। ये मौका पर श्री योगी कहले कि डबल इंजन का सरकार जवन सुरक्षा आ विश्वास का वातावरण बनौले हवे वही का नतीजा हो कि देवरिया, गोरखपुर आ कुशीनगर के साथ ही पूरा प्रदेश में निवेश आ रहा हो, उद्यम लाग रहा बा और हमरे प्रतिभावान नौजवानन के रोजगार मिली रहा हो।
1: देश ही नहीं दुनिया के अंदर सबसे युवा ताकत किसी के पास है तो हम गौरव के साथ कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के पास है। हमारी ये युवा शक्ति प्रतिभावान है, ऊर्जावान है। आज उस युवा की स्किलिंग के लिए हम कार्य कर रहे हैं, उस युवा को रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं। 9 लाख नौजवानों को हमने नौकरी दी है। परंपरागत उद्यम को पुनर्जीवित करते हुए 3 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार की सुविधा वहां उपलब्ध करवाई है।
0: कार्यक्रम के दौरान अयोध्या प्रकरण पर मुख्यमंत्री कहले कि अयोध्या भारत के सनातन आस्था का प्रतीक हो, हमारी आस्था से खेलवाड़ कैले का छूट केहू के नहीं दिया जाए।
1: ने कहा था SIT की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी और आपने देखा होगा SIT की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं, सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा।
0: यूपी पुलिस श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान मामला में दर्ज पहला FIR में नामजद 8 लोगों के गिरफ्तार कई के उनसे पूछताछ कर रहा हवे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल SIT के सिफारिशन के बाद FIR दर्ज कैल गई रहे। ट्रस्ट का सदस्य कृष्ण मोहन के लिखित शिकायत पर श्री राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कैल गई रहे। FIR में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमा शंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टीनू के सतही अवरियो अज्ञात आरोपित लोगिन का नाम शामिल हवे। लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत के अध्यक्षता वाला SIT मंगर के सरकार के आपन प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दियालस। एमए मामला में कड़ेर सिफारिश कैल गई रहे। एक बाद काली FIR दर्ज कैल गई और आज उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश कैल गई। स्वास्थ्य मंत्रालय दवाई के नियम में संशोधन का मसौदा जारी कैले हवे। एमे आयात कैल जाए वाला दवाई का बचल वैधता अवधि यानी सेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीना होखल जरूरी बाटे।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतवार के आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोग इनसे अपन विचार साझा करी हैं। ई मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां कड़ी हुई। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन का सज्जो चैनल, AIR न्यूज का वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर कैल जाये। सतही AIR न्यूज, DT न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर एक सोझे प्रसारण हुई। हिंदी प्रसारण के जुड़ते बाद क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण कैल जाये। आज आशुराए मुहर्रम हो। ई दिन पैगंबर मोहम्मद का नवासा हजरत इमाम हुसैन का शहादत का प्रतीक हो। हजरत इमाम हुसैन और उनकर साथी लोग कर्बला में सत्य अन्याय के रक्षावधि अपन प्राण का आहुति दिया ले रहा। आज के दिन ने प्रदेश का राजधानी लखनऊ के सतही कई गो शहरन में शहीद लोगिन के याद में ताजिया निकाल जा रहा हो। एक लेके प्रदेश भर में यातायात के बारे में चेतावनी जारी कल गई हो और

0: सुरक्षा के पुरहर इंतजाम कल गई हो। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौका पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नशा मुक्ति समाज के दिशा में हर मने के जागरूक कई के एगो बेहतर कल की ओर बढ़ने का आह्वान कर लिया हमें। एगो सोशल मीडिया पोस्ट में श्री योगी कहले कि नशा मनई समाज आ देश के विकास में बाधा हो। ई मनई का सोच स्वास्थ्य और भविष्य तीनों के कमजोर करेला। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।
1: एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उभरे केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब
1: कंचन के राम राम।
0: बघेलू भैया आपके भी राम राम।
1: और जीरा बहन देखा तोरों के राम राम हो। और बतावा पंचायती हम लोगन के लगे गए और बतावा का हाल चाल बा।
0: देखा हाल चाल तो सब ठीक है बा। गांव ग्राम में काहे से कि मौसम जोन बदल रहा बा ना, ऐसे में कहल गया ना कि कभू खुल के घाम उत बा और कभी हवा बयार चले लगा था। और देखा उमस वाली गर्मी भी है। और भगेलू भैया हम आपके एक बात बता दें कि जोन कल गल की न कि बाढ़ हो चाहे उमस हो चाहे माने कि कोनो तरह के माने जोन परेशानी ये समय चला था जिके हीट स्ट्रोक भी बोलल जाता है ना, इससे बचे खातिर लोग जो है ना कि कोशिश यही करें कि ज्यादा से ज्यादा दोपहर में घर में रहें, सांझी सवेरे काम करें। लेकिन कुछ लोग ऐसा न कि ना उनके माने ये गर्मी से मतलब है ना सवेरे ना सांझी से। हमार मतलब ये बात कहेगा कि जो नशा वाले लोग वो कौनो भी समय शुरू हो जाता है उनके ही नहीं पता कि हमारे शरीर पे कर का असर पड़ी।
1: तो देखा जब नशा के बात कही देहलो तो आज देखा 26 तारीख बा, छठवां महीना 26 सन बा। तो आज के दिन देखा एक दिवस मनावल जा रहा बा जौन की नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जौन अंतर्राष्ट्रीय दिवस बा देखा मनावल जा रहा बा। अब देखा ई दिवस मनावे के बात का बा कि हम लोग देखा नशा तो करत है लेकिन उसे हम लोगन के पीढ़ी भी आवे वाला जोन बा वह देखा नशा के लत पकड़ लेत हुआ हर तरह से उनके दिक्कत परेशानी होत बा। पहला काम तो ये होत बा कि देखा रुपया पैसा खराब होत बा, ओकरे साथ साथ देखा स्वास्थ्य खराब हो रहा बा,
0: अब घर परिवार में कलह होता।
1: घर परिवार में कलह के साथ समाज से भी हीन भावना के दृष्टि से लोग देखेलन।
0: बिल्कुल।
1: तो ये तरीके से हम लोगन के नशा से दूर रहने के जरूरत बा। और ओके साथे साथे देखा नशा हम लोगन के कई तरह से दिक्कत पहुंचावेला, जैसे कि देखा लीवर खराब हो जाला और ओकरे साथे जोन हम लोगन के दिल दिमाग बा देखा जब नशा करब अपन शरीर सही नहीं रही तो जोन स्वाभाविक बा कि अपन मस्तिष्क खराब रहबे करी। और ओकरे साथे साथे देखा अब जैसे कुछ भैया लोगन के ये देखल गेल बा कि दिन भर पान चबावत होन सुरती बीड़ी लेत होन तो उसे देखा कैंसर के भी बीमारी होखे के डर बा।
0: बिल्कुल भगेलू भैया। और देखा हमार तो कहे मतलब ये उद्देश्य बा कि नशीली दवा का जोन माने दुष्प्रभाव से होए वाली जोन बीमारी है और समाज पे पड़े वाला जोन नकारात्मक प्रभाव के प्रति है, एकरे प्रति हम लोगों के देखा जागरूक होना बहुत जरूरी है। कल गल की जब तक जागरूक न हो जाए थी एक जैसे कल गल की कलंक के मिटाना होला। एक लक्ष्य यही बा कि नशा के आदि लोगन के साथे भेदभाव समाप्त करके उनके साथे सहानुभूति बरते और चिकित्सा में ले जाएं और जहां तक कोशिश करें कि नशा मुक्ति भी जो जगह है मतलब ऐसा ऐसा जगह जाए कि जैसे जो कि उनका नशा छूट जाए और घर में खुशहाली आ जाए। अगर एक व्यक्ति घर में नशा वाले हैं तो कल गला ना कि पूरे परिवार के जो है कि माने मन दुखी होला कि दिन में तो सही सलामत गेलन काम धंधा पे सांझी के करके आ गेलन, पता चलल बनल बनावल चूल्ही का खाना भी वैसे ही पड़ल लगल और ओकरे बाद लड़ाई झगड़ा शुरू
1: और ओकरे साथ साथ देखा

0: आज जितना भी सड़क दुर्घटना हो रहल बा
1: हाँ।
0: नशा के चलते होत बा, काहे कि जो नयका लड़का लोग हवन,
1: बिल्कुल
0: नवयुवक हवन, देखा ये ढेर नशा के लत पकड़ लेते हवन और नशा कैले के बाद गाड़ी देखा चलावत हवन, जैसे कि दुर्घटना हो रहल बा। तो इस सबसे हम लोगों के बचले के जरूरत बा और सबसे पहले तो अपने आप के सुधरले के जरूरत बा। जब हम सुधरब तो घर सुधरी, घर सुधरी तो जग सुधरी, तो यह तरीके से हर तरह से सुधरले के जरूरत बा।
1: तो बघेलू भैया देखा, अगर हम लोगन के जैसे बातचीत तो चलत रही लेकिन आज माने अपने चर्चा में का बा, अगर एक बारे में बता दे तो।
0: तो देखा नेकी और पूछ आज यही से मिलल जुलल बात भी हम लोग पंच भैया लोगों के बीच शामिल कैले है कि नशा से शरीर के दीर्घकालिक क्षति के तरीके से बा और एकरा से हम लोगों के कैसे बचे के बा। जयचंद सिंह भैया जोन जागरूक ग्रामीण हवन, भोला भैया इनसे बातचीत कैले हवन और देखा ओकरे साथे हम लोगन के जोन पाती रहेला एक आंख खेत में और एक आंख बाजारे में रहेला, तो टटका बाजार भाव उहो मिली गई बा जोन रावर्सगंज मंडी के जोन के बाबूलाल मौर भैया भेजले हवन। और ये समय देखा हम लोगन के अब समय आवत बा खेती बारी के,
1: बिल्कुल।
0: तो खेती बारी में हम लोगन के हर तरह से ध्यान रखले के जरूरत बा कि हम लोगन के सस्ता कहाँ से होए और रुपया पैसा कम लगे और हम लोगों के फायदा ढेर हो,
1: मतलब कि लागत कम लगे और मुनाफा ज्यादा हो।
0: हाँ, तो वही विषय से देखा सस्ता भूमि सुधारक एगो जिप्सम बा।
1: हाँ।
0: तो यह विषय पर भी बातचीत हुई जो उनकी तकनीकी सहायक कृषि विभाग दुद्धी के हवन श्री प्रकाश मौर भैया।
1: हाँ।
0: इनसे जानल ले और भोला भैया एकदम फरिया फरिया के पूछले हवन। हाँ। और बतावा मन मनसान के कर कराओ।
1: देखा मन मनसान के बात करी तो जो अपन नंदू भैया माने नंद किशोर शर्मा हैं, उनका संगाती लोग वो मन मनसान करेंगे, उनके भी सुनल जाये। तो अब तो हम कहब कि बिना देर कैले बघेलू भैया जो आप कहते हैं कि नशा से शरीर के दीर्घ कालिक मतलब क्षति जोन बा ओकरे बारे में जयचंद सिंह जोन जागरूक ग्रामीण हन उनसे अपन बोला भैया का बातचीत के लिए कहा तो हम लोग भी सुनियो पंच भैया।
2: श्रोताओं, वैसे तो व्यक्ति जब आपस में बैठता है हालचाल के दौरान या संगति के वजह से तो यही कहता है कि चलो भाई कुछ सुरती बनाओ, गजा भांग सिगरेट बनाओ और ऐसे में जो है कि पार्टी मनाया जाए कुल करके। तो लेकिन इसका दुष्परिणाम कितना होता है, धीरे धीरे करके आदि हो जाता है व्यक्ति और नशा के वजह से शरीर की क्षति होने लगती है, घर समाज भी टूटने लगते हैं और एक स्थिति ऐसा भी आता है कि वह कहीं का नहीं रह जाता है, उसे देखते ही समाज के लोग घृणा करने लगते हैं कि देखो वह नशेड़ी आ रहा है। तो ये बहुत ही एक हानिकारक चीज है। लेकिन एक अनुभवी जो बहुत दिनों से लोगों को देखे हैं, लोगों को बनते भी देखे हैं, बिगड़ते भी देखे हैं, तो क्या उनका अनुभव रहा है। तो आज ऐसे ही एक वयोवृद्ध से मुलाकात कर रहे हैं श्री जयचंद सिंह कुशवाहा जी। आप सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुद्धी ब्लॉक के रजखड़ से हैं, आपका क्या जानकारी है कि नशा लोगों को कैसे कैसे पकड़ में आ जाता है और किस प्रकार ये नुकसानदायक है, आपसे ही बातचीत होगी। तो जयचंद सिंह जी आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद आपका।
2: ये जो हम लोग नशा की बात करते हैं क्योंकि ग्रामीण अंचल है, स्वाभाविक भी है, लोग कहीं बैठकी भी जमाते हैं तो कहते हैं कि भाई चलो गजा रगड़ो या सुरती ही बनाओ।
3: हाँ, हाँ, कुछ करो भाई।
2: हाँ, ऐसा तो अक्सर देखने को मिलता है।
3: अक्सर मिलता है। हाँ,
2: आप भी देखे होंगे लोग।
3: अरे भोगे हैं, देखे क्या है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। तो ये मतलब कितना हानिकारक समझ में आता है नशा?
3: नशा वैसे साहब बहुत हानिकारक है। बना हुआ घर को
2: जी
3: विभाजित कर देता है। घर के ही नहीं समाज से भी विभाजित करता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: समाज जब विभाजित कर देता है तो समझ लीजिए कि जिंदा आदमी मुर्दा के बराबर हो जाता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल। देख के घृणा होने,
3: देख के घृणा होता है।
2: जी जी जी, जी।
3: हे उत्पन्न हो जाता है दूसरे व्यक्ति को कि फलरवा देखिए आ रहा है अभी और ये नशेड़ी आदमी है तो गांजा पीता है, दारू पिया है।
2: जी जी जी जी।
3: दारू वालों से तो आदमी दूर भागता है।
2: अच्छा, ये अपने अंचल में चूंकि ये दुद्धी क्षेत्र के रजखड़ है या दुद्धी क्षेत्र में लगभग चारों तरफ जिधर भी बढ़ा जाए चाहे वृंदावन तरफ जाए जाए, चाहे तो इधर
3: कहीं भी जाए
2: चल जाए, चाहे तो इधर चल जाए बभनी बचरा सरयू चारों तरफ लगभग एक जैसा मिलता जुलता क्षेत्र है।
3: हाँ, क्षेत्र से मिलता जुलता है।
2: इसमें यहाँ पर कौन चीज के नशा करने के आदि लोग जाते समझ में आते हैं?
3: यहाँ तो ज्यादा शराब के नशेड़ी मिलते हैं,
2: महुआ वाला,
3: महुआ का। अब पीने के बाद
2: जी
3: वो अपने घर में ही पहले कोहरा मचाते हैं।
2: हाँ।
3: अब ये लती बन जाते हैं।
2: जी जी,
3: पहले थोड़ा में अपने संगी साथियों में थोड़ा ले लो, थोड़ा ले लो।
2: हाँ।
3: और जब आदत बन जाता है
2: जी
3: तो लती बन गए। अब लती हो गए तो घर का सामान बेच करके,
2: हाँ,
3: जगह जमीन इधर उधर करके
2: जी,
3: रेहन गहन रख करके अब पी जाते हैं।
2: घर में विवाद भी होता
3: है। अब घर में इसी चलते विवाद होता है कि आपने इतना कर दिया, ऐसा कर दिया।
2: जी, जी।
3: अब अभी हम अब आपको क्या बताने साहब।
2: हाँ।
3: एक हमारे हाथ है पोस्टमैन।
2: हाँ। जी जी। हाँ।
3: वो शराब के ही आदि बन गए।
2: हाँ।
3: आदि के बाद हुआ कि रिटायर हो गए। रिटायर के बाद पोस्ट ऑफिस में थे।
2: हाँ।
3: बड़े बाबू के पद पर।
2: अच्छा,
3: यही दुद्धि से ही।
2: हाँ।
3: रिटायर हुए।
2: हाँ।
3: तो 24 घंटा इसमें डूब गए।
2: ओ, शराब में।
3: शराब में नतीजा ये हुआ कि अंतोगत्वा उनका किडनी खराब हो गया, पेट खराब हो गया।
2: स्वर्गवासी बन गए। अब चूंकि जाना तो सबको है, इतना समय चल जाए।
3: हाँ, समय चल जाए।
2: अच्छा, अभी दूसरी बात यह है कि इलाज में बहुत खर्च हो जाता है।
3: वो तो खैर भाई पैसा वाला थे तो कुछ खर्चा किए, लेकिन ये बहुत बड़ा समाज के लिए दुष्परिणाम घोषित कर रहा हूँ।
2: अच्छा, इसमें आप चूंकि बहुत पुराने व्यक्ति भी हैं और जानकारी भी रखते हैं
3: जी,
2: हम आज तक जो देखने में हमें जो मिला कि पैसा कितना भी हो लेकिन अगर शरीर के जो अंग हैं,
3: हाँ,
2: वो घायल हो जाए।
3: हाँ, घायल हो
2: तो उसको संभाल पाना बड़ा मुश्किल
3: हो जाता है।
2: ऐसा है ना?
3: हाँ हाँ, एकदम है।
2: अच्छे अच्छों को देखा गया है,
3: अच्छे अच्छे लोगों को 100% लोगों को जो है ये देखा गया है कि धन जायदाद सब कुछ के बावजूद भी
2: जी,
3: लती बनने के बाद
2: जी
3: उनका धन जायदाद भी छिन्न हो जाता है।
2: हाँ,
3: और शरीर तो जाता ही है,
2: जाता ही जाता।
3: और समय से पहले काल के गाल में चले जाते हैं।
2: और इसका मूल कारण नशा है।
3: नशा है
2: जी जी। अच्छा, वैसे आदत कैसे पड़ जाता है?
3: आदत कहिए, आदत के ही बात है। तो आदत तो हमारा ही लीजिए, हम अपनी बात कर रहे हैं।
2: अच्छा,
3: हम गांजा पीने लगे।
2: हाँ।
3: और गांजा इतना पिए कि आज 4 साल से हम उसको छोड़ दिए हैं।
2: जी जी जी।
3: जबकि उसका प्रतिक्रिया आप देखने को मिल रहा है कि अगर खांसी वगैरह हुआ तो मुंह से गलाज टाइप के निकलेगा,
2: बलगम
3: अब काफी मात्रा में निकलेगा।
2: अच्छा।
3: हाँ, अब ये नहीं है कि मतलब एक दो बार हो गया तो ठीक हो गया। ये 24 घंटे में कम से कम 5 बार 6 बार बाहर निकलता है।
2: हाँ, हाँ।
3: तो यकृत ये हमारे फेफड़े को कमजोर न कर रहा है,
2: कमजोर कर रहा है।
3: जब ये कमजोर जब कर लेगा, जब अपने कस में कर लेगा तब तो हमारा भी वही डेरा लग जाएगा।
2: मतलब इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि आज पिए तो आज ही नुकसान कर।
3: नहीं नहीं नहीं, ये तो कहना स्वाभाविक सोच गलत है।
2: हाँ।
3: कि आज हम पी रहे हैं तो आज हमको नुकसान करेगा, इसका दीर्घकालीन असर पड़ता है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा।
3: अब बता रहा हूँ ना कि मैं 4 साल पहले छोड़ दिया।
2: हाँ, हाँ, हाँ।
3: लेकिन फिर भी उसका
2: असर आज है।
3: असर है।
2: क्या बात। तो ये कितना दिन तक सेवन हो गया ऐसा जो है?
3: ये करीबन हम इसको सेवन 20 साल से ऊपर किए।
2: 20 साल से। चूंकि जो व्यक्ति करके मतलब अनुभव किया हुआ है
3: जी,
2: वो और अच्छा बता सकते हैं
3: जी।
2: तो इसमें चूंकि कई तरह की चीजें हैं, जैसे मान लीजिए अभी गाजा माने धूम्रपान हो गया
3: जी, धूम्रपान,
2: चाहे सिगरेट हो, चाहे गाजा हो, चाहे बीड़ी हो।
3: हाँ, धूम्रपान वगैरह है तो
2: ये धूम्रपान वाला हो गया, इससे फेफड़ा,
3: हाँ, फेफड़ा जाता है,
2: फेफड़ा की नुकसानी है।
3: और जो शराब पीते हैं उन लोगों का जो है आमाशय,
2: हाँ हाँ हाँ, तो किडनी
3: आमाशय, इसके बाद किडनी हो गया
2: जी जी,
3: बिक जिसको कहते हैं बिक आमाशय, ये दोनों को नुकसान करता है।
2: ओह, लेकिन लोग जान नहीं पाता है,
3: नहीं जान पाते
2: हैं। जब समझ में आता है कि जो है कि हम मजबूत हैं,
3: मजबूत हैं, जब शरीर छीण होने लगता है, अवस्था ढलने लगती है, या फिर जो है इसका जब दबाव अधिक हो गया, सेवन अधिक कर लिया
2: जी,
3: तब
2: जी,
3: जो है आमाशय जब काम करना बंद करता है तो कहे हम तो बीमार हो गए। भाई बीमार काहे हो गए, इसको तो सोचो
2: जी जी जी।
3: तो इसको न सोच करके अपना क्रिया बताएंगे कि हम ऐसा कर लिए इतना पी लेते हैं। अब यही पीने में होड़ लग जाता है,
2: मतलब हम इतना पचा पाते
3: हैं। हाँ, होड़ लग जाता है, इसी होड़ में अपने को वहाँ का रास्ता बना लेते हैं।
2: अच्छा, ये नहीं जानते हैं कि हम पचा पा रहे हैं तो बचपन में जो हमारे माता पिता खिलाए पिलाए उसके वजह से ताकत है,
3: ताकत है,
2: लेकिन जब हमारे ऊपर आया
3: तब महसूस होता है
2: हम मुस्कान करने करके जो है कि उसमें

0: नुकसान कर रहे हैं शरीर को। तो चूंकि वास्तव में ये एकदम हर जगह देखने को मिल रहा है, तो इससे चूंकि बर्बादी की जो बात आती है, हमको लगता है कि आप भी बहुत नजदीक से देखे होंगे,
1: जी
0: कुछ लोग घर परिवार ऐसे भी होते हैं कि जिनके पिताजी बाबा बहुत धनाढ्य रहे
1: हाँ,
0: हों,
1: धनाढ्य रहे,
0: लेकिन उनके बच्चे जो होते हैं तो जो नशेड़ी हो जाते हैं,
1: जब इसका
0: गड़बड़ हो
1: लत
0: जाते
1: पड़
0: हैं, तो
1: जाता है उनको
0: नुकसान होने लगता है घर
1: नुकसान
0: परिवार
1: का,
0: में।
1: सब घर परिवार नुकसान होता है, घर में आपस में कलह होने लगता है।
0: हाँ
1: कभी मान लीजिए पैसे की जरूरत पड़
0: जी
1: गया,
0: जी जी
1: आकर के पैसा मांगेंगे। अब घर में तो आपने जो बाप दादा था उसको खेवरा दिया,
0: जी जी जी
1: अब मांगेंगे तो घर में वो कहाँ से
0: कहाँ
1: देगी?
0: से देंगे,
1: अब तो
0: बिल्कुल।
1: दाल रोटी चलाने के लिए ही सोच रही है कि हम साज को क्या खिलाएंगे, अब आप आके पैसा मांगेंगे तो इसमें विवाद हो जाता
0: तो ऐसा कोई घर
1: है।
0: परिवार टूटते देखे हैं
1: बहुत
0: आप?
1: लोगों को देखे हैं, एक
0: हाँ,
1: कहीं नहीं कहीं बहुत लोगों का, अगर नाम जानना चाहेंगे तो नाम ही बता सकते
0: नहीं
1: हैं।
0: ऐसे
1: लेकिन
0: बता दिया जाए
1: ये
0: कि मतलब जो धनाढ्य रहे हों,
1: हाँ
0: पर जो
1: हाँ
0: है बाद में
1: हाँ
0: नशा के चलते टूटे हों, ऐसे ही
1: नशा
0: कुछ?
1: के चलते टूट गए हैं,
0: हाँ।
1: ऐसा एक नहीं बल्कि दो तीन है ऐसे
0: अच्छा, आपके नजर में है?
1: नजर में ही
0: जी, बहुत हानिकारक है, क्योंकि
1: बहुत
0: रेडियो के
1: रहे
0: माध्यम
1: हैं।
0: से बहुत लोग सुन रहे हैं।
1: जी
0: ऐसे लोगों से अपना अनुभव थोड़ा बता दें कि मतलब ये करने से कितना नुकसान है और इसको छोड़ देने से कितना लाभ है। जी
1: भैया, हम यही आग्रह करेंगे
0: जी
1: कि इस सेवन से नुकसान तो खैर हम पहले बोल चुके
0: हाँ
1: हैं
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: क्या
0: हाँ
1: क्या करता
0: जी
1: है।
0: जी जी जी
1: अब हम आग्रह यही करेंगे
0: हाँ
1: कि इसको, जो इसके आदि हो गए हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके दृढ़ संकल्प ले, आत्मिक संकल्प स्वयं ले, किसी से लेवा न गवाह न खोजें,
0: जी जी जी जी
1: अपने आत्मा से उसका त्याग करने का संकल्प लें।
0: जी हम नहीं करेंगे।
1: अब इस चीज का हम सेवन नहीं करेंगे, हमारा जीवन और शरीर स्वस्थ रहे,
0: जी,
1: इस उद्देश्य से अगर करेंगे तब तो छूट जाएगा।
0: अरे छोड़ने में भी बड़ा दिक्कत होता होगा
1: हाँ,
0: है
1: होता है
0: भाई, उसमें
1: कभी
0: जिसे बार बार अगर याद करे आदमी कि हमका सेवन नहीं करना है, तब तो संभव है,
1: संभव है।
0: नहीं कहे कि आज भर फिर मार लेते
1: हाँ,
0: हैं।
1: मार लेते हैं, ऐसा होता है। हाँ कि चलो आज मार लेते हैं, फिर देखा जाएगा,
0: जी जी
1: आगे
0: जी
1: दिन छोड़ देंगे।
0: जी जी
1: इस तरह से हमारे यहाँ एक काश्तकार नाम करके हैं,
0: हाँ
1: यही कहते हैं आज छोड़ देंगे,
0: हाँ
1: आज भर पी लेते हैं।
0: अच्छा
1: ऐसे करते करते उनका जो है न छूट रहा है, न वो
0: हाँ
1: अपने आदत से बाज आ रहे हैं,
0: जी
1: आए दिन उनके घर में कलह का रूप ले लिया।
0: अच्छा, जो नशापाती कर रहे हैं उनके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: बच्चों के ऊपर उनका विकास रुक जाता है, शिक्षा रुक जाता है,
0: जी
1: और जब भी आते हैं घर में तो यही केवल लड़ाई झगड़ा की बात सुनते हैं, तो उनके ऊपर भी मानसिक असर पड़ता है,
0: हाँ, चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो
1: चिड़चिड़ापन हो
0: गया।
1: जाता है कि हमारे
0: बिल्कुल
1: माए बाप इस तरह से लड़ रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: ऐसा बात
0: बिल्कुल,
1: नहीं है।
0: निश्चित रूप से जो बच्चों का अपना ईगो है, चाहे वो है मतलब स्वाभिमान,
1: स्वाभिमान,
0: वो एकदम बिल्कुल होता है कि हमारे पिताजी कितने अच्छे, हमारी माताजी कितने अच्छे,
1: हाँ
0: अगर उसके विपरीत कहीं दिख रहे
1: हाँ
0: हैं
1: जी,
0: तो उतना ही ग्लानि भी होती
1: उनको
0: है,
1: आत्मग्लानी होती है।
0: आत्मग्लानि
1: हाँ,
0: होती
1: चाहे
0: है।
1: समाज में बोल नहीं पाता है
0: जी
1: वो
0: जी अगर
1: बच्चा
0: कहीं
1: कि तुम्हारा बाप ऐसा कर रहा
0: हाँ
1: है,
0: जी, अगर बोलने भी लगे तो
1: हाँ
0: क्या बात करोगे आज, जो है
1: हाँ
0: तुम्हारे पिताजी
1: तुम्हारे ऐसा
0: जैसे
1: घर में
0: ये
1: है,
0: सब।
1: ये है, खुद है, तुम हमसे शिक्षा दे रहे हो, ऐसा होता है।
0: वास्तव में बहुत ही जो है कि दयनीय स्थिति है,
1: जी
0: और नशा समझ जाए कि ये अपने अंचल का, हालांकि हर जगह है,
1: हाँ, लेकिन
0: लेकिन
1: यहाँ
0: जो
1: पर
0: अज्ञानता जहाँ है, हमको लगता है वहीं से नशा की उत्पत्ति
1: जहाँ
0: होती है।
1: शिक्षा की कमी है,
0: जी जी जी
1: अशिक्षित हैं
0: जी
1: या ज्यादा धन के घमंडी
0: हाँ
1: हैं,
0: हाँ हाँ
1: यही लोग इसको सेवन करते
0: यही
1: हैं,
0: यहाँ से जो है कि उत्पन्न होता है
1: यही से उत्पन्न हो
0: और
1: जाता
0: फिर
1: है,
0: वहीं से बर्बादी
1: उनका
0: शुरू
1: बर्बादी
0: होती।
1: शुरू होता है।
0: जी
1: वो
0: जी
1: उत्पन्न करते हैं लेकिन बर्बादी होता है उनके भविष्य का।
0: संयम बहुत जरूरी है।
1: संयम बहुत जरूरी है, आज के परिवेश में हर मनुष्य को सोचना चाहिए
0: जी जी जी
1: कि
0: जी
1: हम नशे से दूर रहें, चाहे वो किसी प्रकार का नशा हो,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उससे दूर रहना चाहिए।
0: बहुत तो ताश
1: उससे
0: जुआ
1: हाँ,
0: भी खेलने लगते हैं लोग।
1: जुआ भी खेलते हैं, यहाँ दो चार दस जने का ग्रुप होता है जो
0: हाँ।
1: बैठ करके सारी दिन उसमें समय खो देते
0: जी
1: हैं। अरे
0: जी
1: किसी की मजदूरी भी करने जाते तो तीन
0: हाँ
1: सौ 400 रुपया
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बनाते,
0: बिल्कुल
1: लेकिन यहाँ बैठ करके अपना घर का संचय किया हुआ धन बांट करके खत्म कर देते
0: बिल्कुल
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: तो इन
0: बिल्कुल।
1: लोगों का विकास भी रुक जाता है
0: तो
1: और
0: निश्चित
1: समय
0: रूप
1: का भी।
0: से वास्तव में बहुत अच्छी बातें चल रही हैं,
1: जी
0: और इसको जो है कि समाज को, हर लोगों को जानना चाहिए,
1: जानना
0: सुनना
1: चाहिए। जी
0: चाहिए,
1: हाँ हाँ
0: तब जाकर के कहीं विकास की संभावना हो पाएगी।
1: जी
0: तो पंच भाइयों लोग देखिए, ये हर घर के, हर गांव की स्थिति है, अगर आप भी सुन पा रहे हैं जयचंद सिंह कुशवाहा जी को, तो ये इनका बात बिल्कुल स्मरण रखने के लायक है कि अगर आपका दृढ़ संकल्प है तो आप नशा छोड़ सकते हैं और नशा को त्याग करके और जो है

0: कि अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करें और जो है कि अच्छा समाज के निर्माण करने का काम करें। इतना अच्छा जानकारी देने के लिए श्री जयचंद सिंह कुशवाहा जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जीरा बहन देखा कितना बढ़िया हम लोगों के बात सुने के मिलल, नशा से शरीर के कैसे हम लोगों के लंबा समय तक बचावल जाए।
2: हाँ।
1: जयचंद सिंह भैया इतना बढ़िया जानकारी दिलन और भोला भी एकदम फरिया फरिया के पूछले रहलन।
2: बिल्कुल।
1: तो अब भैया लोगों के धन्यवाद दिहल जाए।
2: हाँ।
1: तो नंद किशोर शर्मा उनका संगतिया भैया देखा एकदम उतावला हो गई हवन। तो इनकर सुनल जाए, लेकिन देखा उससे पहले भी कुछ संदेश बा वो सुन लिया जाए, तब फिर गीत गौनाई सुनल जाए।
3: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
4: याद रखिए, शौक सोबत या फैशन के तौर पर अपने ही नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
3: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
4: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
3: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
4: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: जीरा भाई,
1: हाँ भगेलू भैया,
0: देखा कितना बढ़िया हम लोगों के नंद किशोर शर्मा और उनका संगतिया भैया के एक दहेज गीत सुने के मिलल।
1: बिल्कुल।
0: और दहेज गीत जब सुन लिया जाला तो देखा हम लोगों के भी अंदर एक बात हो जाला कि देखा हम लोगों के दहेज के लालच में नहीं पड़े के चाहिए, काहे कि दहेज से कई तरह के दिक्कत परेशानी हो जाला। आजकल देखा बचिया लोगन के दहेज के चलते कितना दिक्कत परेशानी हो रहा बा।
1: बिल्कुल, हम तो यही कह बगेलू भैया, दहेज की जोन बात आप कह लेना तो दहेज देखा एक तरह से तो अभिशाप है ही होला, और साथे साथे कल गला ना कि जे माई बाप के पास अगर नहीं भी है और शादी अपने बिटिया अगर तय करत हन तो उनमें कहल गला ना कि जोन मांग होला उन लोगन के वो के पूरा करे बदे ना कुछ भैया लोग जो ना कि अपन आर्थिक स्थिति सही ना होते हुए भी अपन खेत खरियान तक भी बेच देलन, तो ऐसा नौबत ना आवे। देखा उन लोग के भी समझिए कहे से देखा अगर आप अपने बेटा के पढ़ोले हैं तो हम भी अपने बिटिया के पढ़ोले लिखोले ला सब कुछ करके देते ही लड़की आज का नहीं करती और इस चीज के तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी चाहिए। लेकिन अब अपने समाज में कुछ लोग ऐसा है जो लोभी टाइप के वो देखा इससे माने निजात नहीं मिला था, लेकिन हम लोगों के देखा कहल गला ना कि ये दहेज का प्रथा कब खत्म हुई तो नहीं पता है। लेकिन साथे साथे आपके भगेलू भी एक चीज और बता दी कि हमान के जोन माने खेती किसानी का काम में जोन हम लोग लगल रही ला अपन पंच भी है लोग और बहन लोगन वो मैं सबसे ज्यादा आपके बता दें कि जोन किसान भाई अगर कोई भी किसान भाई अगर फसल विविधीकरण के अपनावा चाहत हो तो अपना ले, कहे से कि कहल गल ना कि देखा बहुत लाभदायक हो और देखा मोटे अनाज का खेत जोन होला तो कम पानी और कम लागत में उगेला और ई देखा जलवायु माने जल के अनुकूल अनाज जिसे जेके श्री अन्न कहल जाला कहे मतलब कि भूमि के उर्वरा माने कि उर्वरा शक्ति के बढ़ावेला और माटी के कटाव के भी रोकेला और किसान भैया की आय में भी देखा मुनाफा होला और सुरक्षित होला।
0: तो यही से देखा कहल जाला कि हम लोगों के फसल चक्र अपनौले के जरूरत बा।
1: बिल्कुल,
0: कहे कि देखा जब मोटा अनाज हम लोग उत्पादन करब
1: हाँ।
0: तो उसमें हर तरह से हम लोगों के फायदा ही फायदा होला, कहे कि देखा पानी देवे के पड़े नहीं और वो हमें देखा खाद बीज हम लोग खाद भी हम लोगों के
1: हाँ।
0: कम देवे के पड़ा ला जैसे और खाद भी हम लोग देवत है
1: तो जैविक,
0: हाँ जैविक गोबर आधारित खाद।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ऐसने में हम लोगों के विविधीकरण की और नजरिया दौड़ोले की जरूरत बा
1: हाँ।
0: और अपन जीवन बा की सुपाच्य भोजन जो है पौष्टिकता की ओर
1: एकदम सही बात कथन बगेलू भैया, सुपाच्य भोजन का बात केलन तो आपके बताने कि बिल्कुल सही बात है। गेहूं चावल के खैले से माने कल गल की पाचन शक्ति उतना ना बढ़िया होला, जोन मोटा अनाज में जोन प्रमुख फसल है आपका जैसे ज्वार बाजरा रागी मडुआ कोदो कुटकी सावा कंगनी और चीना बा अगर ये फसल के हम लोग देखा मोटे अनाज के महत्व देवल जाये तो उसे कहा ना कि हम लोगों के देखा पानी के भी बचत हुई और कल गलो जो धान गेहूं के पारंपरिक जोन माने हम लोग फसल उगाई ला इसमें भी देखा पानी की आवश्यकता तो बहुत ही होला, लेकिन कम पानी के आवश्यकता क्या है मतलब ये कि देखा ये जोन खेती हाँ आपके मोटा अनाज के ये देखा वर्षा आधारित खेती है और एक माने कल गल कि हम लोगों के फसल के अगर संचित करे के है तो कल गल कि अत्यधिक तापमान जैसे अगर 46 डिग्री का भी है तो उसमें भी देखा सूखा का सामना भी मोटा अनाज कर लेला और एक चीज और होला कि भूमि की उर्वरता बदे अगर हम लोग जोन कर जड़ बा वो के अगर गहरा माने जुताई कर दे थी ला ओकरे बाद बुआई कर थी ला तो उनमें कहा कि हम लोगों की कल गलत की लागत भी कम लगी और उत्पादन भी ज्यादा मिली।
0: तो जीरा बहन देखा जब मौसम के बात कह लो
1: हाँ,
0: तापमान के
1: बिल्कुल
0: तो देखा आज के जोन तापमान न्यूनतम बा वो देखा 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान देखा 38 डिग्री सेल्सियस बा।
1: अच्छा,
0: ये हिसाबे से हम लोगन के अपन खेती बारी में काम करने के जरूरत बा और
1: हाँ।
0: देखते हुआ कि मौसम बदल रहल बा
1: ऐसे हाँ।
0: में कहूँ देखा धूप उगल बा और
1: हाँ।
0: कहीं देखा आंधी और पानी दोनों चलत बा।
1: बिल्कुल,
0: तो वो हिसाबे से हम लोगन के भी एकदम सतर्क रहले के जरूरत बा और
1: हाँ।
0: देखा जब मौसम बदला ला ना
1: हाँ।
0: तो इसमें हम लोगन के छान छप्पर के भी और ध्यान दिहल जरूर
1: और छान छप्पर के तो ध्यान देवल जे और साथे साथे देखा मौसम बदले पे अपने स्वास्थ्य पे

0: ध्यान देवे बोला और कहल गए कि स्वास्थ्य के हिसाब से अगर देखल जाए तो जो ये मोटा अनाज भकेलू भैया ये बहुत ही पौष्टिक और पोषण से भरपूर होला। जोन चीज ऐसे हम लोगों के मिल जाए वो देखा आपके जो है कि गेहूं चावल में ना मिली।
1: और जब स्वास्थ्य की बात कह लो तो देखा अपने स्वास्थ्य कब सुधरी जब हम लोग अपन माटी माई के स्वस्थ रखा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अब जब माटी हम लोगों के स्वस्थ रही और जोन भी हम लोग अनाज वो हमें लगाए उत्पादन करब तो देखा वो स्वस्थ रही और स्वस्थ कब होगी जब हम लोगन रसायन से नाता धीरे धीरे तोड़ब और जैविक के तरफ नाता बढ़ाए।
0: बिल्कुल सही बात कहते हैं। कहे का मतलब ये है कि हम लोगों के बुआई से पहले जो माने बीज हो के जैविक तरीका से गौमूत्र से या टाइकोडर्मा से हम लोग उपचारित अवश्य कर ले और बुआई के समय अधिकांश मोटा अनाज जिससे खरीफ के मौसम आपके जून से जुलाई में होला इनमें देखा रबी और जायद भी इस मौसम में उगावल जा सकला। और देखा अगर अंतर का बात कर रही हम लोग फसल के तो इनमें विविधीकरण के तहत कतार में भी हम लोग जो है मतलब कि बीच बीच में मेड़ में भी अपने दलहन जैसे मूंग हो गया अरहर के साथ मोटे अनाज जो बाजरा के उगा सकीला। और देखा भगेलू भैया बातचीत तो हम लोगों के होबे करी
1: काहे नहीं
0: और लेकिन यही से संबंधित अगर देखा ये जो जानकारी हमन के पास बा ये की भी सुनल जरूरी बा कि माने सस्ता भूमि सुधारक जिप्सम इस श्री प्रकाश मौर्य जो तकनीकी सहायक कृषि विभाग दुद्धी से है इनसे आपन भोला भैया बातचीत के लिए सुनल जाए। और हम तो यही कबला कि अगर कहें तो एक सुन लेवल जाओ ओकरे बाद जो है कि बाजार भाव भी है मन मनसायन भी है अब जैसा आप कहें
1: तो नेकी और पूछ पूछ जब हाँ? सुने के बाद तो जानकारी जो बहुत जरूरी बा।
0: हाँ तो चला सुनल चला
2: दुधी बला के कृषि विभाग से तकनीकी सहायक श्री प्रकाश मौर्य जी से मुलाकात हो रही है। आप खेती में अच्छा उत्पादन हो इसके बारे में बहुत ही अच्छा जानकारी रखते हैं और लोगों से बताते भी हैं कि किस प्रकार से उपयोग किया जाए कौन कौन सा जीवांश डाला जाए कौन कौन सा उसमें खाद या अन्य दवा कीटनाशक किसका किसका प्रयोग किया जाए कि अच्छा खासा उत्पादन हो जाए। ऐसे में आज हम लोग जिप्सम के बारे में जानेंगे क्या कुछ आपका सलाह है क्या कुछ जानकारी है। तो श्री प्रकाश मौर्य जी आपको आकाशवाणी उबरा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ साथ ये सर देखते हैं कि गर्मी के मौसमों में अक्सर लोग जो है कि वो भूमि का समतलीकरण करते हैं और इसके बाद जिधर से मिट्टी के कटाव हो जाती है तो वो अगले बार जब बोएंगे उसमें फसल तो एक साल के लिए आदमी को संतोष करना पड़ता है कि उत्पादन नहीं हो पाता है। तो क्या समतलीकरण के बावजूद भी कोई ऐसा विकल्प है जिससे कि हम लोग लगातार फसल उत्पादन करते रह सकते हैं क्या?
3: जो जिप्सम है रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट है इसमें 23.3% कैल्शियम होता है और 18.5% इसमें सल्फर होता है
2: जी।
3: और किसान भाई अपने खेत में जब भी प्रयोग करता है तो यूरिया यानी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास कभी कभी प्रयोग कर में लेता है
2: जी।
3: तो यही मुख्य भोजन पौधों को मिल पाता है। जब जिप्सम के खेत में प्रयोग करता है किसान भाई तो उसे कैल्शियम और सल्फर की भी प्राप्ति होती है
2: जी।
3: मिट्टी के कठोर परत को ये तोड़ता है।
2: अच्छा जिप्सम जी जी।
3: इसकी जुताई उताई करके जैसे भूमि कठोर होने लगती है तो उसकी जुताई उताई करके दो तीन बार जुताई करके इसको डाल दिया जाए तो मिट्टी को भुरभुरी बना देती है। यह क्षारीय भूमि के सुधार के काम में आता है। सामान्य भूमि में इसका 2.5 से 3 या 2 से 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है
2: जी जी।
3: और हमारे राजकीय बीज भंडार दुधी पर खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए यहाँ पर आया था सब किसान उपयोग किए और बहुत ही इसके किसानों के लिए लाभ आया जो
2: अच्छा,
3: कि
2: अच्छा।
3: इसके बिना प्रयोग के जब खेत में लोग इसका प्रयोग करते थे तो लागत अच्छा। खर्च ज्यादा आता था और जो फसल की गुणवत्ता होनी चाहिए पैदावार देने के लिए दाने और उसके जो गुणवत्ता होना चाहिए था उतना बढ़िया नहीं होता था
2: जी, जी, जी।
3: अब हमारे यहाँ जब ये जिप्सम उपलब्ध हुआ तो उसको बताए 75% अनुदान पर है तो उसको किसान को सस्ता भी पड़ा उपयोग करने से उनकी फसल की लागत खर्च घटी और गुणवत्ता में भी सुधार हुआ।
2: ये जिप्सम का प्रयोग कब करते हैं?
3: जिप्सम का प्रयोग करने का सही समय फसल बोने

0: से पहले खाली खेत में फसल बोने से पहले इसको दो तीन बार पहले खेत की जुताई कर लीजिए।
1: हाँ।
0: जुताई करने के बाद इसको समान रूप से खेत में बिखेर करके
1: अच्छा
0: जुताई करके पाटा मार दीजिए, ठीक, और इसमें पानी भर के मेड़बंदी करके पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद 5 सेंटीमीटर उसको लीचिंग कराइए, रिसाव कराइए।
1: अच्छा।
0: हाँ, जो इसमें मिट्टी में जो क्षारी भूमि अगर जहाँ पर आता है
1: जी,
0: तो उसके लिए ये फायदेमंद होता है, जो मिट्टी के कण के ऊपर सोडियम आयन्स हो जाते हैं उसके स्थान को कैल्शियम आयन्स मिट्टी के क्ले कणों पर आवेशित हो जाते हैं, जिससे कि मिट्टी के कणों पर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक आ जाती है, जिससे हमारी मिट्टी में वायु संचार अच्छा जाती है, मिट्टी भुरभुरी जाती है, पौधों की जड़ों का विकास होता है, मिट्टी में मतलब नमी संचय की क्षमता बढ़ जाती है, और इसकी वजह से हमारे मिट्टी में जो लाभदायक बैक्टीरिया होती है उसके लिए अनुकूलता हो जाती
1: है,
0: जिससे कि हमारी फसल बड़े आसानी से अच्छी पैदावार देती है।
1: कुछ ऐसे मिट्टी है जिसमें पानी की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्या जिप्सम के प्रयोग से कुछ पानी टिकाऊ हो पाता है क्या?
0: नहीं नहीं, जिप्सम के प्रयोग से पानी के टिकाऊ से वो नहीं है, बट ये है कि जैसे कि फसल के उगाने के लिए, पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए, जड़ के विकास के लिए
1: जी,
0: बस एक रंध्राकाश जो होती है वो बढ़िया बन जाता है
1: जी,
0: जो पर्याप्त नमी होती है उसके लिए अनुकूलता हो जाती है। ये नहीं कि आप जैसे बाढ़ग्रस्त एरिया है, पानी डूबा है तो वही डाल देंगे तो पानी सूख जाएगा, ऐसा नहीं है
1: जी, जी,
0: मने कि एक अनुकूलता बना देती है, मने कि वातावरण के जो मिट्टी के अंदर होना चाहिए जड़ विकास के लिए, ग्रंथि विकास के लिए सब अच्छी हो जाती है। हाँ, किसान भाई जैसे कि प्याज है, लहसुन है, सरसों की खेती अगर करना चाहते हैं तो जिप्सम का प्रयोग कर देंगे तो समझ लीजिए कंद वाली फसलें बड़े बड़े पड़ती हैं, मिट्टी भुरभुरी होगी।
1: अच्छा, जी, जी।
0: हाँ, सरसों की खेत या तिलहनी फसल में अगर प्रयोग करते हैं तो इसमें सल्फर की वजह से उनकी जो सुगंध होता है बढ़िया
1: जी,
0: एक प्रकार की सरसों में गंध आता है जो होती है, उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है। हाँ हाँ,
1: अब अच्छा उसमें उसका बीज भी होता है।
0: हाँ हाँ, उसके बीज के दाने चमक अच्छे आ जाते हैं और दाने बड़े साइज के होते हैं
1: जी जी जी।
0: हाँ हाँ, कोशिका पौधों का जो विभाजन होता है उसमें भी कैल्शियम का बड़ी भूमिका होती है, हरित बनाने में भी सल्फर, ये समझ लीजिए इसके प्रयोग से कई फायदे हैं, समझ लीजिए
1: जी,
0: ये नहीं कि केवल भूमि सुधारक के।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: पौधों में परहरित बनाने में भी इसकी सुविधा है।
1: अच्छा।
0: पौध संरक्षण में भी इसका प्रयोग में लाया जाता है
1: जी जी, जी।
0: हाँ हाँ, ये सस्ती भी है और बहुत ही कारगर है।
1: क्या प्रत्येक फसल में इसका प्रयोग आवश्यक है या एक बार कर लिया गया तो फिर
0: एक दो फसल ले सकते हैं? मतलब विशेष रूप से ये भूमि सुधार क्षारी भूमि के लिए होता है
1: जी जी,
0: जिस भूमि का पीएच मान मतलब लीजिए 6 से 6.5 होना चाहिए वो तो फसल अच्छी उत्पादन देती है। अब इसके ऊपर मैंने 8 हो गया 9 हो गया तो इस वैसी भूमि में क्षारीयता को कम करने के लिए ही इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है
1: जी,
0: और सामान्य भूमि में करेंगे तो आपको बताएं जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और सल्फर होता है, जिसकी वजह से पौधों को सूक्ष्म तत्वों की जो द्वितीय सूक्ष्म तत्व है कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है
1: जी,
0: तो उसकी पूर्ति करता है, इसमें कैल्शियम और सल्फर की भी प्राप्ति हो जाती है, तो एक साथ कई चीजों की पूर्ति होती है।
1: अब जैसे ये दुधी बला के अंतर्गत कई गांव ऐसे आते हैं जहाँ के कंकरीली पथरीली भूमि है, उबड़ खाबड़ भी है, जैसे मान लीजिए कटौली हो गया, मझौली हो गया, करहिया हो गया या कुर्गी डुमरा हो गया, बहुत तो जगह समतल है नीचे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ढालू हैं और उसमें जो है कि कंकरीली मिट्टी है, तो क्या ऐसे जैसे टेढ़ा हो गया, दिघुल के भी कुछ जगह ऐसे ऐसे हैं, बघाड़ू बघाड़ू बघाड़ू भी है, दिघुल के साथ साथ नगवा वगैरह, तो कहें कि बिल्कुल रेतीली भूमि है, कहें जो है कि पथरीली है, और कहें जो है कि पानी के बिल्कुल ही स्रोत कम है, तो ऐसे जगह में भी लोग भूमि सुधार करना चाहें तो ये उसमें कुछ उपजाऊ बढ़ाने में सहयोग कर सकता है क्या जी?
0: हाँ, जैसे भूमि में आपको समतल करिए हैं, पानी की थोड़ी बहुत व्यवस्था होनी चाहिए।
1: जी
0: तो ये दो तीन बार जुताई करके इसको डाल करके जब बारिश की पानी या सिंचाई जैसे हो तो उसमें ये जो है कैल्शियम और सल्फर की प्राप्ति करती है। सामान्यतः बहुत ज्यादा क्षारियता है तो उसके लिए सुधार में भी काम आता है। और इसके बाद किसान भाई ढैचा का प्रयोग करे खेत में, अगर पानी के पास जिसके पास व्यवस्था है, पानी के अभाव में भाई ढैचा उग नहीं पाएगा। अगर ढैचा कर दें इसमें

0: अपने खेत में गोबर की खाद डालें, जैसे पशुपालन भी करते होंगे, तो अगर हम खेत में अपने गोबर की खाद का भी प्रयोग करते हैं तो हमारा नमी संचय भी हो जाएगा, मिट्टी के कटाव को भी रुकेगा और कुछ समय बाद हमारी भूमि भुरभुरी और मुलायम हो जाएगी, पौधों की जड़ों के विकास अच्छा होगा। मतलब कि हमारी जो बेकार भूमि है हम अगर ऐसे प्रयोग कर लेते हैं, मेड़बंदी कर लेते हैं, जिप्सम का प्रयोग कर लेते हैं, गोबर की खाद डाल लेते हैं और ढैचा का उसमें बुआई कर लेते हैं, तो समझ लीजिए हमारी वो भूमि बेकार नहीं होगा, उससे हम बहुत अच्छी खेती करके अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: ये उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सनई का भी कुछ उपयोग है क्या?
0: जी सनई है, ढैचा, हरी खाद का ही सब काम करता है। हरी खाद का
1: हाँ जी जी, खरपतवार में भी नियंत्रण आता है, जैसे सनई वगैरह बहुत
0: जैसे ये बहुत तेज से बढ़ता है
1: जी जी,
0: तो जो छोटे खरपतवार वाले पौधे हैं उसी में दब के नीचे चले जाते हैं और वो सूख जाते हैं या सड़ जाते हैं, उसी के नीचे सनई या ढैचा तेजी से बढ़ता है
1: जी जी,
0: और ये उसके नीचे चले जाते हैं और इसको जब आपका पौधा 2 फीट 1.5 फीट का हो जाता है
1: उसको
0: पाटा मार के गिरा देते हैं और खेत में नमी रहने की अवस्था में इसकी जुताई कर देते हैं, मिट्टी में ढक जाता है और ये जितने भी हरी फसलें हैं जैसे सनई है, ढैचा है, उर्द है, मूंग है, अब उसी में सड़ के खाद बन जाता है।
1: किसान भाई आपको सुन रहे हैं और लगभग उन लोग के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि अब हम लोग अपने खेत में जो है जिप्सम का प्रयोग करें, तो क्या इसका फिर उपलब्ध होने की संभावनाएं हैं क्या कुछ दिन बाद?
0: देखिए कृषि विभाग में अनुदान पर जिप्सम उपलब्ध रहता है, किसान लोगों को बताते हैं, यहाँ तो किसान लोग को बताने के बाद भी उनको समझ में आते हैं माटी है
1: जी जी जी,
0: और ये माटी समझकर वो कहेंगे हम हमारे खेत में तो माटी है ही और ये माटी हम पैसा पर ले जा करके और धो करके ले जाए
1: जी जी जी,
0: तो उनको मतलब माटी समझकर नहीं लेना चाहते हैं। बहुत समझाने के बाद तो यहाँ पर देखिए आया था बहुत पर्याप्त मात्रा में
1: जी जी,
0: तो जागरूक किया गया, बताया गया, एक दो लोग को किसान के लाभ उनको खेत में दिखाया गया तो और लोग ले रहे उपयोग में लाए और यहाँ पर समझ लीजिए बहुत बढ़िया कारगर है जिप्सम का खेत में डालने से। बस किसानों की अज्ञानता है, वो नहीं जान पाते हैं, जब तक प्रयोग नहीं कर पाएंगे, प्रयोग करके देखते हैं तो उनको विश्वास होता है
1: जी जी। तो ये जिप्सम जिसे लेकर के घर पर रख लिया जाए फिर अगले फसल में प्रयोग करने के लिए कितना दिन तक उसको टिकाव रखा जा सकता है?
0: तो जिप्सम रख सकते हैं, बस वो नमी वाले जगह पर ना रहे, शीत तो ना पाए उसमें,
1: अच्छा
0: छाए वाले जगह पर सुरक्षित सूखे स्थान पर रख लीजिए
1: जी जी,
0: और खेत में फसल बोने से पहले इसकी एक दो जुताई करने के बाद खेत में डाल करके जुताई करके मिला देंगे, ये काम करेगा, ये सुरक्षित इस तरह से रखा जा सकता है, कोई खराब नहीं करेगा।
1: चलते चलाते किसान भाई लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे?
0: हाँ भाई, किसान से कहेंगे भाई देखिए आज के वैश्वीकरण युग में किसान भाई देख रहे हैं कि खेती में लागत खर्च किसानों का बहुत ज्यादा बढ़ा है और लागत के साथ साथ उसमें गुणवत्ता युक्त पैदावार नहीं होता है, जिससे कि उस उपज को हम खाकर बीमार हो रहे हैं, दवाओं में पैसे खर्च कर रहे हैं। तो भाई जिप्सम का प्रयोग कर देने से, या हम कार्बनिक खाद की तरफ प्रयोग करें या हरी खाद की तरफ प्रयोग करें, भूमि को शोधित करके ट्राइकोडर्मा से, इस प्रकार से हम प्राकृतिक खेती की तरह अगर हम जाए, गोबर की खाद सब प्रयोग करके रहें, उत्पादन भी अच्छा होगा और उसकी उत्पाद को हम खाकर स्वस्थ रह सकते हैं, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा लागत खर्च जो होगा उसका हमको लाभ मिलेगा
1: जी जी,
0: अपने बच्चों में वो पढ़ाई पैसे को खर्च कर सकेंगे
1: जी जी। तो आप दुधी ब्लॉक के कृषि विभाग से तकनीकी सहायक श्री प्रकाश मौर्य जी थे, आपसे बातचीत हो रही थी जिप्सम का प्रयोग और किस प्रकार इसे लाभ लिया जा सकता है। किसान भाई लोग इतनी अच्छी जानकारी थी, आप लोग इसका प्रयोग करें और साथ साथ तकनीक सहायक श्री प्रकाश मौर्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद किसान।
2: प्रिय किसान बहनों और भाइयों, ये धरती हमारी माँ है, ये खेत केवल अन्न और फल सब्जी नहीं देते, ये हमें जीवन देते हैं, लेकिन अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के और पेस्टिसाइड के असंतुलित उपयोग के कारण ये धरती माता बीमार हो रही, इसकी उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जा रही है, और इसलिए हमारे विजनरी और समय के बहुत पहले और बहुत दूर तक की सोचने वाले प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है खेत बचाओ। 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। इस अभियान के तहत आपके गांव में कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के विद्वान, केवीके के लोग, कृषि विज्ञान केंद्रों के केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, जन प्रतिनिधि जन नेता

0: और प्रगतिशील किसान गांव-गांव जाएंगे और हमारे खेत की आवश्यकता के हिसाब से संतुलित कितना खाद डालना चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। नकली पेस्टिसाइड के बारे में बताएंगे, कैसे पहचाने, खाद्य तेल का कम उपयोग करें और अलग अलग योजनाओं के पात्र लाभार्थी भी चिन्हित किए जाएंगे। आप सबसे मेरी अपील है, इस अभियान में भाग लीजिए और वैज्ञानिक जो कहें उनकी सलाह मानकर खाद का संतुलित उपयोग कीजिए। धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़िए। धरती कहे पुकार के कि अपनी माँ के साथ अन्याय मत करो। हम खेत बचाएं तभी खेती बचेगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचेगा। धन्यवाद।
1: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: जीरा बहन, देखा कितना बढ़िया, हम लोगों के कुछ संदेश भी सुने के मिलल और जानकारी भी हम लोगों के सुने के मिलल।
3: बिल्कुल।
2: और जब ये सब कुछ हो जाला तो अपन भी एक जौन पंचायती के बैठकी के क्रम रहला,
3: हाँ,
2: जैसे कि खेती बाड़ी करीला तो ओकर भाव भी हम लोगों के जानब जरूरी हो।
3: बिल्कुल, हम आपका मतलब समझ गए। और देखा हमारे हाथे में आज बाबूलाल मौर्य भैया का पाती भी लग गलो आपके रावट्सगंज मंडी का बा, और कुंतल में बा कहा था बाच दी
2: तरने की और पूछ नहीं। देखा जल्दी से भैया लोगों के बताओ काहे की टकटक की लगल बा।
3: बिल्कुल, आलू देखा लाल वाला 1100 से 1200 रुपया कुंतल बा, सफेद आलू आपका 900 से 1000 रुपया बा, टमाटर आपका 2500 से 2800, परवल आपका 5000 से 6000 रुपया बा, बोड़ा 1500 से 1800 और बैगन लंबा वाला 1200 से 1500, गोल बैगन आपका 2200 से 2500 रुपया, मिर्चा 3000 से 3500, धनिया आपका 10000 से 12000 रुपया,
2: अच्छा,
3: अदरक आपका 9000 से 10000, और आपका प्याज है 2000 से 2200 रुपया, लहसुन भी आपका 10000 से 11000 रुपया बा, भिंडी आपका जो ना कि 800 से 900, करेला आपका 1800 से 2000, नेनुआ 800 से 1000, लौकी 300 से 500,
2: अच्छा,
3: कोहड़ी भी आपका 300 से 500 बा भैया, और सूरन आपका 5000 से 6000 बा, कटहल 1200 से 1500 है, चौराई 1000 से 1200 बा, पालक आपका जो ना कि साग 2000 से 2200 रुपया बा, खीरा 3000 से 3200, कच्चा आम 3000 से 4000, चुकुंदर 1500 से 2000 और कच्चा केला 1800 से 2000 बा, और सैकड़ा में बा देखा फूल गोभी 2200 से 2500,
2: अच्छा,
3: पत्ता गोभी भी 2200 से आपका 2500, और नींबू आपका जो ना कि 200 से 2500 रुपया बा। ये आज के ताजा रावर्सगंज मंडी के बाजार भाव बाबूलाल मौर्य भैया भिजले लेना, तो इन्हों के धन्यवाद देवे के बा।
2: तो धन्यवाद के जब बात करूँ तो देखा नंद किशोर शर्मा उनका संगतिया भैया के एक किसानी गीत बा,
3: हाँ,
2: तो यह से भैया लोगन के धन्यवाद दिहल जाए,
3: चला सुनल जाए।

0: हाँ बगे लुबी
1: हम लोगों के बाद गीत दोनों ही होते बा और लेकिन हम यो कल चाहते कि अब देखा आगे वाला समय जोन बात हम लोगों के खेती पाती के बाद ये हमें देखा हम लोगों के माटी के भी शोधन करब जरूरी बा और बीज के शोधन भी करब जरूरी बा।
0: बिल्कुल
1: काहे कि देखा जब माटी के हम लोग शोधित करीला तो उसे हम के जोन बीज के नुकसान करे वाला फफूद हवन कर किरौना हुआ उसे
0: छुटकारा मिल जाए
1: और देखा बीज शोधन के बाद
2: जब होला तो बीज शोधन में से भी हम लोगन के जोन पौधा को नुकसान करे वाला फफूद हवन उसे भी हम लोगन के निजात मिलेला। और जब इस हवन के कई विधि होला जैसे देखा जैविक विधि बा, जैविक विधि से देखा ट्राइकोडर्मा बा और गौमूत्र आधारित बा और रसायन विधि में देखा कार्बन डी कार्बा कार्बेडा जीम बा या थीरम बा इस सब से हम लोगन के उपचार करके शोधित करके अपन माटी
0: खेती बाड़ी के अपने आगे बढ़ावल जाए
2: करे से हम लोगन की खेती बाड़ी बढ़िया होला। अब यही बात के साथ अब हम लोगन के बैठकी के समय भी पंचायती के पूरा हो गई बा और पंच भैया लोगन से विदा लेवल जाए
0: तो सब पंचन के राम राम, राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं लोकगीत। इसमें आज के कलाकार हैं नंद किशोर शर्मा और साथी। सबसे पहले सुनते हैं इनका गाया ये देशभक्ति लोकगीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण कार्यक्रम लोकगीत में आज के एक कलाकार हैं नंदकिशोर शर्मा और साथी। एक बार फिर आइए सुनते हैं इनका गाया ये देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकगीत और कलाकार हैं नंदकिशोर शर्मा और साथी। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं इनका गाया विकास गीत।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। समय है स्थानीय सूचना और कार्यक्रम विवरण का। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रीति कुमारी पुत्री बैजनाथ चंद्रवंशी निवासी ग्राम असनाबांध कचरनरवा थाना कोन जनपद सोनभद्र जो दिनांक 13 मई 2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है। उम्र 18 वर्ष लगभग लंबाई 5 फीट 3 इंच हुलिया गोरा रंग गोल चेहरा इकहरा बदन है। पहनावा नीले रंग का जींस गुलाबी रंग की कुर्ती तथा पैर में हवाई चप्पल

पहने हुए हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। खोए व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार सुशीला कुमारी पुत्री लक्ष्मण जायसवाल निवासी ग्राम पड़रच टोला घडार थाना कोन जनपद सोनभद्र जो दिनांक 23 मई 2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है। उम्र 19 वर्ष लगभग, लंबाई 5 फीट। हुलिया गोरा रंग गोल पतला चेहरा इकहरा बदन है। पहनावा नीले रंग की टी शर्ट और जींस पैंट तथा पैर में सैंडल पहने हुए हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई। आइए हम आपको इस सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा रात्रि 9:30 पर करंट अफेयर्स। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का राग गुनकली में ख्याल गायन। समय रहेगा रात्रि 10:30 का। पुराने गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का समय रहेगा रात्रि 9:15 का। सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे और रात्रि 8:30 पर। सबरस का आनंद आप लेंगे शाम 7:31 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 8:15 पर। रात 10 बजे शमा रोशन होगी कार्यक्रम रसधारा से। तो ये थी जानकारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। एफएम 102.7 पर ये आकाशवाणी का उभरा केंद्र है। कृपया प्रतीक्षा करें हमारे अगले प्रसारण की।

गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 106 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अयोध्या दान प्रकरण पर कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। श्रीराम मंदिर दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपी आज स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने हुए पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी, प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशुरा पर आज गमगीन माहौल में दफन की

0: किए गए ताजिए इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को किया गया याद। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र दान मामले में पहली बार एफआईआर दर्ज होने के बाद कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू हो गई है। देवरिया में 465 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो भुक्त भोगी होगा।
1: जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने देवरिया में विकास की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश का नौजवान जो पहले नौकरी के लिए पलायन करता था, आज वो अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ अपने क्षेत्र को दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षित माहौल के चलते निवेश आ रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को आज स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को कल गिरफ्तार किया था। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित जांच दल एसआईटी की सिफारिश के बाद ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज कराई थी। एफआईआर में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। एसआईटी मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है, जिसके बाद कल ये मामला दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 12 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं।
1: भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्र जो तबके छूटे हुए थे, उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं।
0: रुस्तमपुर रोड पर स्थित ये आधुनिक अस्पताल मरीजों को कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और ट्रांसप्लांट जैसी जटिल बीमारियों के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी तथा प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने वाले की व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले अगले चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। याचिका में राज्य सरकार के 25 और 26 मई 2026 को जारी उन आदेशों को चुनौती दी गई है, जिसके तहत यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) का हवाला देकर चुनाव टाल दिए गए और प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं।

0: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
1: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संयुक्त राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 500 पदों पर भर्ती के लिए 27 जुलाई तक आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा किए जा सकेंगे, जबकि आवेदन पत्र में संशोधन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 3 अगस्त निर्धारित की गई है। आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने सोलर रूफ टॉप स्थापना में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। जून 2026 में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 6 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का लाभ दिया जा चुका है। यूपी नेडा के डायरेक्टर रविन्दर सिंह ने बताया कि देश में कुल सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 17% है और ये देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशूरा का जुलूस आज प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में गमगीन माहौल में निकाला जा रहा है। जगह जगह मजलिसों का आयोजन भी किया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। लखनऊ में मुस्लिम समुदाय के लोग घरों में रखे ताजियों को कर्बला में ले जाकर दफन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: सुबह से ही लोग ताजियों को जुलूस की शक्ल में कर्बला तक ले जा रहे हैं और दफन कर रहे हैं। जुलूस में लोग नौहा खानी और मातम करते हुए चल रहे हैं। लखनऊ की तालकटोरा की कर्बला में लाखों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर इमाम को पुरसा दिया। बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित फूल कटोरा की कर्बला में सुन्नी समुदाय द्वारा ताजियों को जुलूस के रूप में ले जाकर दफन किया जा रहा है। यह सिलसिला देर रात तक चलेगा। प्रदेश सहित पूरे लखनऊ शहर में विभिन्न कर्बलाओं के आसपास सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। जुलूस मार्गों पर PAC पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। फिर कुछ देर बाद रात में 8:30 बजे लखनऊ के ऐतिहासिक शाम गरीबा मजलिस उफरामाप इमामबाड़े में होगी, जिसे मौलाना कल्बे जव्वाद संबोधित करेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, हमीरपुर सहित विभिन्न जनपदों में मुहर्रम का जुलूस अकीदत के साथ निकालकर कर्बला में ताजियों को दफन किया गया। उधर एटा के अलीगंज कस्बे में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। प्रदेश में आगामी 2 दिनों तक गर्मी का सिलसिला अभी जारी रहेगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले 4 दिनों में मॉनसून प्रदेश के कई हिस्सों तक पहुंचेगा। इसकी शुरुआत पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया और आसपास के जिलों से होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 106 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अयोध्या दान प्रकरण पर कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। श्रीराम मंदिर के दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपी आज स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने हुए पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी। प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशूरा पर आज गमगीन माहौल में दफन किए गए ताजिए इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को किया गया याद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

करूँ न कोई चोरी, आँख झपकते खोल दूँ ताला या तिजोरी। जादू की छड़ी घुमाऊँ करूँ न कोई चोरी, आँख झपकते खोल दूँ ताला या तिजोरी। गिल गिल पाशा सुन मेरे राजा, 1 2 9 11 सर पे चढ़ के बोले जादू वे मिसाल है।

0: लव लव लव। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म में आशा भोसले और बेनेडिक्ट को। गीत लिखा था अंजान ने और संगीत दिया था बापी लहरी ने।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपना नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
4: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
3: अरे वही अपना 60 रुपया।
4: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
3: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
4: और दूसरा?
3: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
4: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
3: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: 9 गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
8: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
9: हेलो,
7: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
8: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
7: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
8: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक, योर स्टाइल,
7: ओनली ऑन AIR ओबरा।
0: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण, कार्यक्रम है सबरस। और अब आइए सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज में तेजाब फिल्म का ये गीत, शब्द रचना जावेद अख्तर की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
10: नमस्कार।
11: नमस्कार।
10: कहिए क्या सुनेंगे आप?
11: अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप?
10: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
11: कौन है वो?
10: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार, और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
11: कैसे?

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपना यह नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपना यह नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे कार्यक्रम सबरत। समय हो गया है शाम के 7:51 और 18 सेकेंड। और अब आइए सुनते हैं फिल्म हत्या से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत। गीत लिखा है इंदेवर ने और तर्ज बनाई है बापी लहरी ने।

श्रोताओं, हीट वेव से बचने के लिए आप निम्नलिखित उपायों को कर सकते हैं। हाइड्रेशन और खान पान का ध्यान जरूर दें। प्यास न होने पर भी हर थोड़ी देर में पानी पीते रहें। ORS, नींबू पानी, लस्सी और छाछ जैसे पेय पदार्थों का सेवन करें। सही भोजन जरूर करें, जैसे हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन लें। मौसमी फल जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज और खरबूजा खाएं। ज्यादा चाय, कॉफी, शराब और अत्यधिक मीठे पेय पदार्थों का सेवन से बचें, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी करते हैं। घर में ही रहें, यानी चिलचिलाती धूप में विशेषकर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर जाने से बचें, और अगर जाना हो तो खुद को कवर करें। धूप में बाहर निकलना बहुत जरूरी हो तो पूरे शरीर को ढकने वाले हल्के रंग के ढीले कपड़े पहने। सिर ढके हमेशा, जैसे टोपी, छतरी या सूती गमछे से अपना सिर और चेहरा ढक कर रखें। आंखों के लिए धूप का चश्मा और सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करिए। और

बात में ध्यान रखें कि घर आने के तुरंत बाद ठंडा पानी पीने से बचें। सामान्य तापमान का पानी पिए और जरूरत पड़ने पर ठंडे पानी से स्नान करें या गीले तौलिए से शरीर को पोंछे, क्योंकि सावधानी ही आपकी सुरक्षा है। आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं फिल्म आग ही आग से, जिसे गाया है मेघना, शैलेंद्र सिंह और शबीर कुमार ने। गीत लिखा है अनजान ने और संगीत बापी लहरी का है।

आज कहा मैंने कल जमान कहेगा प्यार से है दुनिया हसी प्यार में ही तो कुछ नहीं वही वही वही।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें सुनिए चंद गैर फिल्मी गीत। सबसे पहले आइए सुनते हैं मिलिंद इंगले की आवाज में ये गीत।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उबरा का प्रसारण। कार्यक्रम है सुगम संगीत और इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीत। अगला गीत

कार्यक्रम के आखिर में आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज में ये गीत, और इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत समाप्त हुआ। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उभरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: हम आपके दिल में रहते हैं। अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में समीर के लिखे इस गीत को। संगीत दिया था अनु मलिक ने।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपना नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी उबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। हद कर दी आपने, आइए सुनते इस फिल्म में उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति को। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत निर्देशन है आनंद राज आनंद का।

श्रोताओं, हीट वेव से बचने के लिए आप सावधानी कर सकते हैं, यही सावधानी आपकी सुरक्षा होगी। जी, हाइड्रेशन और खान पान का बहुत ज्यादा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि प्यास लगने पर ही हर थोड़ी देर में पानी पीते रहें और AORS, नींबू पानी, लस्सी और छाछ जैसे पेय पदार्थों का सेवन आप करते रहें। हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन ले, मौसमी फल जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज और खरबूजा खाएं। और किन चीजों को परहेज करना है? ज्यादा चाय, कॉफी, शराब और अत्यधिक मीठे पेय पदार्थों के सेवन से बचें, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी करते हैं। और साथ में अगर धूप और गर्मी से बचाव आप कर सकते हैं, जैसे घर में रहें, चिलचिलाती धूप विशेषकर दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच में बाहर जाने से बचें। अगर जाना भी हो तो खुद को कवर करें। धूप में बाहर निकलना बहुत अगर जरूरी हो तो पूरे शरीर को ढकने वाले हल्के रंग के ढीले कपड़े ही पहने। सिर ढके, जैसे टोपी, छतरी या सूती गमछे से अपना सिर और चेहरा ढक कर रखें। आंखों के लिए धूप का चश्मा और सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। घर आने के बाद ठंडा पानी पीने से बचें। सामान्य तापमान का पानी पिएं और जरूरत पड़ने पर ठंडे पानी से स्नान करें या फिर गीले तौलिए से शरीर पोछें।

और जो घर का वातावरण है ना उसको भी ठंडा रखे। दिन के समय खिड़की और दरवाजों के पर्दे बंद रखे ताकि धूप अंदर ना आए। रात या सुबह के समय खिड़कियां खोलकर ताजा और ठंडी हवा आने दें। घर के अंदर कूलर या पंखे का उचित इस्तेमाल करें। यदि घर में वेंटिलेशन कम है तो एयर कंडीशनर वाले स्थानों पर कुछ समय बिताने की कोशिश करें, क्योंकि सावधानी ही आपकी सुरक्षा है।

जानवर फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और मनहर उदास को। गीत लिखा था समीर ने, संगीत आनंद मिलिंद का था और इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त हुआ।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। चिराग हसन हसरत की लिखी ये गजल आई सुनते ही मिताली सिंह की पुरकशिश आवाज में।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं अहमद नदीम काजमी की लिखी ये गजल गुलाम अली की आवाज में।

कार्यक्रम के आखिर में आप सुन रहे थे अहमद नदीम काजमी की लिखी गजल गुलाम अली की आवाज में। इसी गजल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत समाप्त हुआ।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को, जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों

0: जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज्ड कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
2: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10,00,000 रुपए और घायलों को 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकीन जब्त कर 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकीन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देशभर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले तीन से चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं पूर्वोत्तर भारत पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है एक रिपोर्ट
3: मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के दौरान बिहार छत्तीसगढ़ ओडिशा तटीय आंध्र

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का
0: ही नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
4: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
5: हेलो,
3: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
4: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
3: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
4: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक, योर स्टाइल,
3: ओनली ऑन AIR ओबरा।
4: आकाशवाणी उबरा से इस वक्त आप सुन रहे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। समय हो गया है रात्रि के 9:20 और 34 सेकेंड।

काला बाजार फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी को। गीत लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। आकाशवाणी उबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। समय हो गया है रात्रि के 9:25 और 12 सेकंड। कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए सुनते हैं शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा हुआ। आवाज एक बार फिर मोहम्मद रफी की और फिल्म है लव इन टोक्यो।

के तूफान कैसे छुपाऊं, आंखें क्या क्या देख रही है, दिल पे जो गुजरे कैसे बताऊं। आजा रे आ जरा आ, लहरा किया जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा।

0: जरा लहरा के आ जरा।
1: मोहम्मद रफी की गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत समाप्त हुआ। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। इसमें रात्रि के 9:30 होने वाले हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

FM 102.7 पर यह आकाशवाणी का उग्र केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रसधारा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विशाल शेखर के संगीत निर्देशन से। गीत लिखा है समीर ने, आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की। फिल्म है शुक्रिया।

0: आकाशवाणी उबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा। अब आइए सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण के स्वर में जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को। धुन तैयार की है संजीव दर्शन ने और फिल्म है हमारा दिल आपके पास है।
1: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया मैं

आकाशवाणी उभरत से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा। समय हो गया रात्रि के 10:11:35। अगला गीत आइए सुनते हैं अनु मलिक की बनाई तर्ज पर। गीत लिखा है समीर ने, आवाजें हैं बाबुल सुप्रियो और प्रिया की। फिल्म है सात रंग के सपने।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

इंटरनेशनल खिलाड़ी, अभी आप सुन रहे थे। इस फिल्म में गीत लिखा था समीर ने और संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में प्रवीण भारद्वाज के लिखे इस गीत को। संगीत दिया है अनु मलिक ने और फिल्म है तुमसे मिलकर रॉन्ग नंबर।

कार्यक्रम के आखिर में आपने सुना अनुराधा पौडवाल की आवाज में प्रवीण भारद्वाज के लिखे इस गीत को संगीत दिया था अनु मलिक ने और फिल्म थी तुमसे मिलकर रॉन्ग नंबर। इसी गीत के साथ कार्यक्रम रसधारा अब समाप्त होता है।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उभर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इसमें आज लीजिए सुनिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का राग गुनकली में ख्याल गायन।

अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का राग गुनकली में ख्याल गायन। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11 बजने वाले कुछ क्षणों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बी एल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य

0: प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के उभर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अभी ही संपन्न होती है। कल सुबह 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।